0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य

FM 35.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 11वीं तिथि तदनुसार 3 अक्टूबर 2026 प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सेवा प्रारंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन, सुप्रभात।

FM बैंड 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी

0: से क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी है। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर जैन से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हो चुके हैं और अब सुनिए आज का चिंतन।

यदि दुख हमारे कर्मों का ही परिणाम है तो सुख भी हमारे कर्मों से ही कमाया जा सकता है। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि सुख दुख का जोड़ा है और यदि आज हम दुख में हैं तो कल सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। यह बात उम्मीद जगाती है जीवन के प्रति। वास्तव में सुख और दुख हमारी मानसिक अवस्था है और हम उन कठिन परिस्थितियों से कैसे तालमेल बैठा पाते हैं जब जीवन हमारे अनुकूल न चल रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज हमें प्राप्त नहीं, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं, वही दुख है। यदि हम थोड़ा और विचार करें तो हमें महसूस होगा कि दुख या सुख की अनुभूति हमारे कर्मों के साथ साथ हमारे मानसिक स्तर को भी प्रभावित करती है। कई लोग भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव को दुख मान लेते हैं। अच्छे मकान, धन की लालसा, वाहन, अच्छी कमाऊ नौकरी और इसी प्रकार की अन्य भौतिक साधनों के अभाव को दुख मानने की गलती इंसान कर लेता है, जबकि इन्हीं सब भौतिक या सांसारिक साधनों की उपलब्धता को सुख माना गया है। इसके अलावा भी किसी घर में अकाल मृत्यु दुख का कारण बन जाती है, जबकि सुख दुख की तरह ही जीवन मृत्यु का भी साथ है। अगर जीवन है तो मृत्यु अवश्य होगी, इसलिए हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए। ईश्वर की मर्जी से भी हम सुख दुख को जोड़ देते हैं और यही भगवान की मर्जी हमें सांत्वना देती है। वास्तव में सुख और दुख हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का ही परिणाम है। उम्र के अलग अलग पड़ाव पर सुख दुख की परिभाषा बदलती रहती है। मनुष्य मन चंचल है और उसकी यही चंचलता उसके मन को भटका देती है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त

है उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उपभोग करना चाहिए। बाकी सुख और दुख तो आती जाती परिस्थितियां हैं और सत्य तो यह है कि आज दुख है तो कल सुख अवश्य होगा।

0: musuna Ajka Jintan.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

आपने सुना मेरा भजन। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अगली भक्ति रचना सुनिए समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम चिंतन और वंदना, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस का आज का एपिसोड 207।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नानादि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिनी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

अभियापसुंदरी थे रामचित मानसकान आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में हम आपको जानकारी देंगे आज के प्रातःकालीन सभा और सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर यानी कि प्रातः 6:45 पर वागड़ी कार्यक्रम खेती निपात, प्रातः 6:50 पर आदिवासी लोक संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे गोपाल पंड्या और साथियों की आवाज में गाए लोक भजन। प्रातः 7:20 पर वातायन, जिसमें आज आप वार्ता सुनेंगे संगीत और कला का मानव जीवन में महत्व, वार्ताकार प्रभा नगावत। प्रातः 7:30 का समय विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। प्रातः 8:00 दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

प्रातः 8:15 का समय उद्घोषक के अपने कार्यक्रम कुछ दिल से। आज का विषय है भोर। राजस्थानी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:45 पर। 9 बजे सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे अनूप जलोटा की आवाज में गाए लोक गजल्स। प्रातः 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 11 बजे सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें आज आप डॉक्टर प्रेम भंडारी की आवाज में कुछ चुनिंदा कसले। 11:30 का समय फिल्म संगीत। 12 बजे सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

यह थोड़ी जानकारी प्रातःकालीन सभा की। अब एक नजर सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सायंकालीन सभा 5 बजे प्रारंभ होगी। 5:05 पर राजस्थानी लोक संगीत। 5:30 का समय विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। दोबारा विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। 6:30 का समय रोजाना की तरह जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे किसान श्रोताओं का अपना कार्यक्रम किसान वाणी जयपुर केंद्र से। 7:30 पर जयपुर केंद्र से ही प्रसारित कार्यक्रम होंगे। रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स। 10:20 पर फिल्म संगीत। रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाई ने मांझी भाई नो राम राम। किसान भाइयों, आपने सब जानो कि फसल नी अच्छी पैदावार बल्ले आपड़ी जो खेतर नी मिट्टी है इनमें पोषक तत्व है ये बहुत जरूरी रहे। और जैसे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और आवाज सूक्ष्म तत्व है इन्हें अगर कमी थी जा तारे आपने खेतर में खाद या जो उर्वरक है इन्हें नाखवानी आवश्यकता पड़े है। पर अगर आपने आनो ज्यादा या कम उपयोग करो तो ये आपकी फसल और खेतर की जो मिट्टी है इन्हें बेने बल्ले नुकसानदायक साबित है। अटले आनो संतुलित उपयोग करो बहुत आवश्यक है। संतुलित उपयोग ने अगर आपने बात करो तो फसल की जो जरूरत है और मिट्टी की जो स्थिति है इन्हें अनुसार खातर या उर्वरक अपने खेतर में नाखवो जुए। आने बल्ले सप्ती के पहले तो अपने मिट्टी यानी जो मृदा है इन्हें जांच करावी देवी जुए जेने अपना जे मृदा परीक्षण ने नाम थी कि जाना है। आना मृदा परीक्षण थे कि आपने खबर पड़ेगा कि आपने खेतर में कई कई पोषक तत्व कम है और कितनी मात्रा में इन्हें आलवानी आवश्यकता है। क्योंकि किसान भाई अगर आपने खाद या उर्वरक जो है इन असंतुलित उपयोग करेंगे तो इन्हें थी कि नुकसान थाएगा। वधारा नाइट्रोजन अगर आपने फसल में आल देंगे तो फसल देखागा तो हरी भरी पर धीरे धीरे ही पड़वा लगेगा और इन वजह से कि फसल नो अपने जो उत्पादन है ये कम थी जाएगा। पोटाश की जो कमी है इन्हें थे कि पौधे ये कमजोर थाए ने इनमें रोग है ये जल्दी पकड़ी ले है। वधारे रासायनिक खाद नाखवाते कि मिट्टी जो उर्वरा शक्ति है ये भी धीरे धीरे कम थाती जाएगा और वधार खातर नाखी ज रहा तो अपनी जो खेती की लागत है इनमें भी बढ़ोतरी थी जा तो खेती में लागत बढ़ी जाए। अटले कुल मलाई ने अगर आपने उर्वरक या खातर नो संतुलित उपयोग करेंगा तो आपने आ सब जो नुकसान है इन्हें थेगा और आना जो लाभ है ये आपने मिलेगा। और लाभ ने अगर आपने बात करो तो आना थे कि यही फसल ने पूर्व पोषण मिलेगा इन वजह थे कि आपने उत्पादन है ये ठीक मिलेगा। खेतर की जो मिट्टी है इनकी सेहत है ये बनेली रहेगा। लागत भी कम आवेगा तो इन्हें थी कि आपने लाभ है मुनाफो है ये वधारा मिलेगा। आज ये पर्यावरण है या जे भूजल है भूमिगत जल है ये वधारे खातर ने दवाई आपने नहीं नाखेगा तो ये प्रदूषित नहीं थागा। तो आ जे रासायनिक खाद है इन अगर आप संतुलित उपयोग

अरे भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड।

प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: नाता
1: तुझे सुख शांति नेश्वर्यलाता तो पारो प्रजा ने रंक राय बधाने
0: बधाने
1: जानी बाल को चाहो बधाने
0: बधाने।

0: फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो।
1: हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर

0: देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: आप सुन रहे थे गोपाल पांडे और साथियों की आवाज में आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत लोक भजन। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। विषय है संगीत और कला का मानव जीवन में महत्व। वार्ताकार प्रभा नगावत।
1: संगीत और कला का मानव जीवन में अत्यंत गहरा संबंध है। सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य ने अपने भावों, अनुभवों और संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए विभिन्न कलाओं का सहारा लिया है। कला और संगीत केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, विचार और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। एक संतुलित मन, शांत भावनाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण, यह सब किसी न किसी रूप में संगीत और कला के संपर्क से ही संभव होते हैं। संगीत को मन की औषधि कहा जाता है। जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारी मस्तिष्क तरंगे, लय और सुर के साथ तालमेल बनाती है। इससे मन में शांति और सुकून की अनुभूति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब हम संगीत सुनते हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोजोन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो प्रसन्नता, उत्साह और स्फूर्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। थकान, तनाव या उदासी के समय मधुर संगीत तुरंत हमारे मन को शांत कर देता है। धीमी लय वाले गीत हमारी धड़कनों को नियंत्रित करते हैं, रक्तचाप को संतुलित रखते हैं और नींद में भी सहायता करते हैं। दूसरी ओर संगीत हमें जोश, प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य का मन बहुत संवेदनशील होता है। रोजमर्रा की भागदौड़, पढ़ाई का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी और सामाजिक चुनौतियां अक्सर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ऐसे समय में संगीत और कला हमारे मन को संभालने, शांत करने और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक युग तक हर संस्कृति में संगीत और कला को मानसिक शांति का साधन माना गया है। संगीत ऐसी भाषा है जिसे हर व्यक्ति समझ सकता है। जब हम कोई मधुर धुन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक खुशी का हार्मोन बढ़ता है, जिससे मन प्रसन्न होता है। धीमा और हल्का संगीत तनाव को कम करता है। पसंदीदा गाने सुनने से गुस्सा और चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। पढ़ाई के बाद थकान महसूस हो तो कुछ समय संगीत सुनने से दिमाग फिर से तरोताजा हो जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संगीत सुनने से दिल की धड़कन सामान्य रहती है और मानसिक दबाव कम होता है। कई बार हम अपनी भावनाएं किसी से कह नहीं पाते, ऐसे में चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला, लेखन या अन्य कलाएं हमारे भीतर की भावनाओं को बाहर लाने का माध्यम बनती है। पेंटिंग बनाने से मन में शांति का अनुभव होता है, नृत्य से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन खुश हो जाता है। किसी भी प्रकार की कला हमें अपने विचारों की सकारात्मक दिशा देती है। कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को बेहतर समझ पाता है और मन की उलझनें कम होती है। जब हम कोई कला सीखते हैं, जैसे गायन, वादन, चित्रकला या नृत्य, तो हमें अपने अंदर एक नई क्षमता का एहसास होता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मंच पर प्रदर्शन करने से डर और हिचक कम होती है। नई कला सीखने से दिमाग सक्रिय और उत्साहित होता है। आत्मविश्वास बढ़ने पर मानसिक तनाव अपने आप कम हो जाता है। संगीत और कला सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ाता है। यह लोगों को जोड़ता है। एक साथ गाना गाने या ग्रुप में नृत्य करने से दोस्ती और टीम वर्क की भावना बढ़ती है। कला, प्रदर्शनी, संगीत

कार्यक्रम या नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने से व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय हो जाता है। सामाजिक जुड़ाव मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है और अकेलापन दूर करता है। संगीत मानसिक बीमारियों में भी सहायक है। आजकल कई डॉक्टर म्यूजिक थेरेपी और आर्ट जैसी कला का भी उपयोग करते हैं, जिसमें अवसाद, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं कम होती है। संगीत दिमाग को शांत करके नकारात्मक विचारों को कम करता है। कला मन में छिपे तनाव को बाहर लाने में मदद करती है। यह उपचार बिना दवाइयों के एक स्वाभाविक और सुरक्षित तरीका है। आज के समय में बच्चे और बड़े दोनों को एकाग्रता की समस्या होती है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया और तनाव के कारण दिमाग जल्दी थक जाता है। ऐसे में संगीत और कला दिमाग को फिर से केंद्रित करने में मदद करते हैं। हल्का वाद्य संगीत पढ़ाई के समय एकाग्रता बढ़ाता है। चित्र बनाना या कोई रचनात्मक कार्य करना दिमाग को आराम देता है, जिससे नई पढ़ाई याद रखना आसान हो जाता है। इसलिए स्कूल और कॉलेज में भी कला संगीत की कक्षाएं जरूरी मानी जाती है। कला और संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये हमारी रचनात्मक सोच को बढ़ाते हैं। जब हम नई धुन बनाते हैं, रंगों का चुनाव करते हैं या कोई नृत्य सीखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अलग तरह से काम करता है। इससे समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। दिमाग नए विचार सोचने के लिए प्रेरित होता है। यह गुण जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। पढ़ाई, नौकरी और आत्मविश्वास। कई बार जीवन में कठिन समय आता है, जैसे परीक्षा का दबाव, परिवार की परेशानी या अचानक आने वाले बदलाव। ऐसे में संगीत और कला एक भरोसेमंद साथी की तरह हमारा सहारा बनते हैं। दुख के समय मधुर संगीत मन को संभालता है। अकेलेपन में लिखना, पेंटिंग करना या गाना गाना मन को हल्का करता है। कला हमें अपने अंदर की भावनाओं को पहचानने में मदद करती है। इस तरह ये दोनों जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। जो लोग नियमित रूप से संगीत सुनते हैं या कला से जुड़े रहते हैं, उनमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। वे चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, समस्याओं को शांत मन से हल करते हैं। उनमें सहनशीलता और संवेदनशीलता अधिक होती है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ, मजबूत माना जाता है। संगीत का कला के छात्रों के लिए भी विशेष लाभ है। छात्र जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई का बोझ बहुत अधिक होता है। इसलिए संगीत और कला छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गाना गाने या पेंटिंग करने से दिमाग तरोताजा होता है। इससे पढ़ाई में दोबारा ध्यान लगाना आसान होता है। गतिविधियों में भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कई बार स्कूल में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग भी कराई जाती है, जिससे पढ़ाई भी रोचक हो जाती है। संगीत व कला से परिवार और समाज में सौहार्द बढ़ता है। यह केवल व्यक्ति को नहीं, समाज को भी जोड़ता है। त्योहार में गीत संगीत का माहौल खुशी बढ़ाता है। कला प्रदर्शनी और संगीत कार्यक्रम से लोगों में सहयोग और समझ बढ़ती है। घर में बच्चे जब नृत्य या संगीत सीखते हैं, तो वातावरण सकारात्मक और आनंदपूर्ण बनता है। एक खुशहाल माहौल सीधे सीधे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। अब हम जानते हैं कि कला और संगीत किस तरह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाते हैं। आज के समय में भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत आवश्यक है। इसका मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरीके से संभालना। संगीत सुनने या बजाते समय हम अपनी भावनाओं से गहराई से जुड़ जाते हैं। चित्रकला या नृत्य हमें गुस्सा, चिंता और दुख जैसी भावनाओं को एक सुरक्षित तरीके से व्यक्त करने का अवसर देते हैं। इससे व्यक्ति शांत, समझदार और संतुलित बनता है। एक भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। मानसिक थकान की अगर बात की जाए, तो यह थकान दूर करने का प्राकृतिक उपाय है। दिन भर की पढ़ाई, काम या घर के कामों से दिमाग थक जाता है। कई लोग इस थकान को दूर करने के लिए मोबाइल या टीवी का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे दिमाग और ज्यादा थक जाता है। इसके मुकाबले हल्का संगीत, कोई वाद्य यंत्र बजाना, रंग भरना, नृत्य करना, ये सभी दिमाग को वास्तविक आराम देते हैं, क्योंकि कला और संगीत हमारी भावनाओं को शांत करके दिमाग को ताजा कर देते हैं। इससे नींद भी बेहतर आती है और मन स्थिर रहता है। कला और संगीत

0: हमारे जीवन में आत्मानुशासन व नियमितता को भी बढ़ाते हैं। कला व संगीत सीखते समय अभ्यास जरूरी होता है। जब कोई व्यक्ति रोजाना थोड़ा अभ्यास करता है तो उसमें अनुशासन व नियमितता की आदत विकसित होती है। रोज 20 से 30 मिनट गाने का अभ्यास या रोज थोड़ा समय इसके चिन्ह और ड्राइंग को देना चाहिए। कला व संगीत जीवन में उद्देश्य का एहसास दिलाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि वे किस काम में अच्छे हैं या उन्हें क्या करना पसंद है। कला व संगीत इस बात का जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। किसी कला में कुशल होने से व्यक्ति को अपने जीवन में एक दिशा मिलती है, उसे अपने लक्ष्य और समझ आने लगते हैं। इससे जीवन में उद्देश्य और उत्साह बढ़ता है। जीवन में उद्देश्य होना मानसिक स्वास्थ्य को बहुत मजबूत बनाता है। काउंसलिंग सेंटर्स व पुनर्वास केंद्रों में म्यूजिक थेरेपी और आर्ट थेरेपी का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर संगीत और कला हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी दवा से कम नहीं है। ये न सिर्फ तनाव घटाते हैं बल्कि मन को खुशी, शांति और संतुलन भी देते हैं। आज के तेजी से बदलते जीवन में हर व्यक्ति को चाहिए कि वो रोज समय थोड़ा संगीत सुने, किसी कला में बिताए। इससे हमारा मन शांत और मजबूत बनता है और हम जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता संगीत और कला का मानव जीवन में महत्व। वार्ताकार थी प्रभा नागावत। इसी के साथ वार्ताएं यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। रिजी सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। गीतों के तराने तब और खूबसूरत बन जाते हैं जब इनमें शामिल हो जाते हैं युगल गीत। युगल गीतों का यही कार्यक्रम हम है राही प्यार के गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर।

0: संगीत की मीठी मीठी तान लिए गीत फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: दिल के तारों को छेड़ता मस्ताना फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: प्यार से दिल भर दे,
2: नहीं नहीं
1: हम पे करम कर दे,
2: कभी नहीं
1: प्यार से दिल भर दे, हम पे करम कर दे,
2: कभी नहीं
1: वरना हम मर जाएंगे ओ जालिम, नाम तेरा ले ले।

0: कभी नहीं।
1: कब, क्यों और कहाँ इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें? इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज ही 3 अक्टूबर 2:30 बजे आप सुन सकते हैं ये विशेष कार्यक्रम विविध भारती से। इस वक्त आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। कुछ और गीत सुनवाएंगे आपको बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: जी हाँ श्रोताओं, खबरदार तो रहना होगा क्योंकि आज है 3 अक्टूबर और आज बहुत सारे विशेष कार्यक्रम हैं हमारे रेडियो सेट पर, हमारे विविध भारती में, जिसके बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं। साथ साथ सावन भादो फिल्म का फिलहाल ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल थे, सोनिक उमी की तर्ज थी।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

0: में ओ सनम जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे के होने लगी जी में टिक।
1: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में हम जूली फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: रम्य सुहानी रुत मस्तानी शाम ये सुहानी रुत मस्तानी धूम जवानी ओ के दीवानी मेरे पास न आ ओ हसीना
1: प्यार की बराती।

आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और यही थी आज के कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के की आखिरी पेशकश। लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में

0: किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमरीका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
1: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमरीका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका

0: निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
1: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
2: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रूपए तक की इनकम कर ली।
1: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मित मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिन्दुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मित, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मित, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मित बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपाय

0: उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शाइक्योनों में भारत की कुमकुम मोहित ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है उत्कोषक का अपना कार्यक्रम कुछ दिल से।

श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ दिल से मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन और आज आपके साथ आपकी आवाज मैं प्रेरणा उपाध्याय। नमस्कार, सुप्रभात।

दोस्तों, बोर का ये वक्त, जी हाँ, ये जो वक्त है ना, ये बड़ा ही जादुई होता है। आसमान का वह हल्का गुलाबी रंग और अभी तो ठंडी ठंडी हवा के झोंके और मन में किसी के प्रति खास ख्याल। दोस्तों, ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद प्यार की भाषा बोल रही हो। जी हाँ, कुछ ओस की बूंदे जो हमारे और भी हमें सुखद बना रही है। किसी ने क्या खूब कहा है भोर पे, सुंदर सुखद है भोर ये, खिलने दे आनंद, हर पल लेते हम चले जीवन का मकरंद। जी हाँ श्रोताओं, ये भोर जो है ना, वो अत्यंत सुखद, सुखन और आनंद से भरी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि सुबह अपने साथ आशा, उल्लास और जीवन की ताजगी लेकर नहीं आती। जैसे ही हम सुबह उठते हैं ना दोस्तों, तो एक चेहरे पे अजीब सी खुशी होती है। जब हम सामने दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है हमें। कवि कहते हैं कि जीवन का कोई भी पल व्यर्थ न जाए, हमें हर क्षण इसको पूरी सजगता, प्रसन्नता के साथ जीते हुए, आनंद के साथ, सौंदर्य और मधुर अनुभवों के साथ इसे आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी भोर में हम सभी आज संकल्प लेकर चलते हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं इस गीत के साथ।

पुस्तक पर भी स्वागत है कार्यक्रम कुछ दिल से मैं और आज का विषय है भोर। दोस्तों कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधेरे के बाद उजाला, लेकिन सुबह से अब सूरज के निकलने का नाम नहीं, सुबह तो उस एहसास का नाम होता है जो मन कहता है चलो आज फिर से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सुबह उठ के हम रोज सोचते हैं। दोस्तों भोर यानी कि रात और दिन के बीच का वो खूबसूरत पल जब आसमान पर उजाले की पहली लकीर दिखाई देती है, साथ ही में पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, प्रकृति जैसे धीरे धीरे से कहती है उठिए एक नया दिन आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, और उस नए दिन के स्वागत के लिए हम तैयार हो जाते हैं और साथ ही में हवा की सरसराहट और कहीं दूर मंदिर की घंटियां बजती हैं। इन सब के बीच अगर कोई मधुर गीत बज उठे तो यह सुबह और भी खूबसूरत हो जाती है। जी हाँ श्रोताओं, तो चलिए सुनते हैं फिर एक ये गीत।

0: को कल से थोड़ा और बेहतर बना सके। भोर कहती है, जो बीत गया उसे जाने दो, जो सामने है उसे मुस्कुरा कर अपनाओ। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें किसी बड़े बदलाव की नहीं, बस एक नई सुबह की जरूरत होती है। एक ऐसी सुबह जो मन से कहे, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद इसलिए सुबह की पहली किरण इतनी खास होती है। वह सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वह उम्मीद लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, भोर की पहली किरण सिखाती है हर दिन नई शुरुआत है। जीवन की राह में मुस्कुराना ही सबसे बड़ी बात है। जो मिला उसे स्वीकार करे और जो नहीं मिला उसे जाने दे। तो हर सुबह को उम्मीद बनाकर जीवन को खुलकर जीना है। इसलिए कहते हैं ना कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, भोर को आना ही होता है। जो दिल उम्मीद से भरा हो उसे मुस्कुराना ही होता है। जी हाँ, और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगले संगीत यात्रा की ओर। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें। तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना एफएम माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन एआईआर बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन एआईआर। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन एआईआर। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
5: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? मैडम
7: जी,
6: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा इसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर

0: केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

करोगे तो मौज करोगे, हंसते गाते जिंदगी देगा मस्त रहोगे। हो, देता है जितना कोई

벌써 कितना खूबसूरत संदेश। जी हाँ दोस्तों, इस गीत में यही कहा गया है कि आपका एक दिन खराब नहीं हुआ है या एक दिन खराब हुआ है, जिंदगी नहीं। इसलिए सुबह की जब सूरज आपकी खिड़की पर दस्तक दे तो एक बार मुस्कुरा कर उसका स्वागत कीजिए। जी हाँ, ये पूर आपके लिए एक कोरा कागज लेकर आती है जिसमें बीते हुए कल की शिकायतें मत लिखिए, आने वाले कल की, आने वाले दिन की मुस्कुराहट लिखिए, उम्मीदें लिखिए और अपने प्यार की दास्तां लिखिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और ये एक नई सुबह सबसे खूबसूरत अमूल्य होती है। दोस्तों भोर का समय कितना खूबसूरत होता है, प्रकृति का सबसे शांत चेहरा दिखता है, पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदे ठहरी हुई सी, ठंडी हवा और आसमान की तरफ देखते हैं तो बदलता हुआ रंग, और साथ ही में पक्षियों की पुकार। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति कह रही हो, जागो, तुम्हारे हिस्से की रोशनी आ चुकी है, मुस्कुराओ। और सच पूछिए दोस्तों, ये हमारे जीवन में भी भोर आती रहती है, तो कभी किसी अच्छे इंसान के रूप में, कभी किसी नए अवसर के रूप में, या कभी किसी छोटे से निर्णय के रूप में, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। दोस्तों बस चेहरे पर मुस्कान बना रखिए, और कौन आया जिससे चेहरा चमक जाता है, ये खुशी चेहरे पर बनाए रखिए।

तो दोस्तों आज के इस वर्ड से बस इतनी सी बात अपने साथ लेकर जाइए। रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, भोर अपना रास्ता खोज लेती है। इसलिए जिंदगी में अगर कभी अंधेरा महसूस हो तो उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जलाए रखिएगा और हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं अपने सपनों को भी जगाए रखिएगा। और दोस्तों चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगी कि उम्मीदों से सजी इस पोर में एक नया ख्वाब बुनते हैं। शिकायतें जमाने की छोड़ चलो, दिल की धड़कन सुनते हैं। जी हाँ, हर रोज सुबह मुस्कुराती हुई आए एक नई उम्मीद के साथ, नए एहसास के साथ और नए गीत के साथ। तो आज मुझे दीजिए प्रेरणा उपाध्याय को इजाजत। कार्यक्रम कुछ दिल से मैं

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदने में।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो।
5: हाँ हाँ,
4: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के

0: पास में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में?
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पंचायती राज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रमों की घोषणा आज संभव। प्रदेश में आज नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के चार प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विकास कार्यों के लिए 51 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के पारे में गिरावट का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रमों की आज घोषणा की जा सकती है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग जाएगी। चुनाव में करीब 1,59,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। इनमें 14,403 सरपंच, करीब 1,30,000 वार्ड पंच, 1,403 जिला परिषद सदस्य और 8,245 पंचायत समिति सदस्य शामिल हैं। प्रदेश में आज राज्य स्तरीय नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद 2026 आयोजित किया जाएगा। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत करेंगे। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिकारों से जुड़े विषयों पर संवाद होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अजमेर के जवाहर रंगमंच पर जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा, जहां जयपुर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में महिला जनप्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं, स्वयंसेवी तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही जिले में महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। पाली में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कुल 126 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 100 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 89 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हो चुके 59 कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 47 करोड़ 40 लाख रुपए के 41 नए कार्यों की आधारशिला रखी गई। मंत्री जोराराम कुमावत ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष कम बारिश के कारण किसानों और पशुपालकों के सामने आने वाले समय में पानी और चारे की समस्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए पेयजल और चारा डिपो खोले जाएंगे।
1: निश्चित रूप से फसलों का नुकसान हुआ तो किसानों को भी नुकसान हुआ, तो इस संबंध में जैसे पीने के पानी और पशुओं को पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था करें, किसी तरह के पीने के पानी की समस्या नहीं रहे, टैंकर शुरू करना टैंकर करे, वो बावड़िया यदि मीठे पानी की है तो उनको भी ठेके पर लेकर के उनके पीने के पानी की व्यवस्था करे, सारे जो जल स्रोत है सरकारी जल स्रोत है उनको भी कंट्रोल करके उनको शुरू करने के लिए व्यवस्था करे। साथ ही चारा डिपो खोलने के लिए भी निर्देश दिए और स्पेशल गिरदावरी निर्देश दिए।
0: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के परकोटे की स्थिति पर चिंता जताते हुए पिंक सिटी का विश्व विरासत स्थल का दर्जा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

0: हाईकोर्ट रजिस्ट्री को मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज कर 26 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले एकलपीठ ने परकोटे में अवैध और अनियमित निर्माण, अतिक्रमण तथा ऐतिहासिक भवनों में बदलाव को लेकर संबंधित विभागों से कार्ययोजना और जवाब मांगा था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के पश्चिम क्षेत्र के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों से श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार होगा और धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रामदेवरा, मां देगराय, मेहोजी मांगलिया और पाबूजी राजस्थान की लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थलों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार विकास भी विरासत भी की सोच के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं के साथ राजस्थान की लोक परंपराओं और विरासत का संरक्षण कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का नया तंत्र विकसित होगा। बूंदी में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम जुड़े आवास और वन्य जीव विकास रखी गई है। सप्ताह के शुभारंभ पर स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं को वन्य जीव और प्रकृति संरक्षण की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों को रामगढ़ टाइगर रिजर्व में विचरण करने वाले वन्य जीवों और उनके व्यवहार की जानकारी दी गई। जंगल भ्रमण के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने बताया कि सप्ताह के दौरान प्रश्नोत्तरी, रंगोली प्रतियोगिता, वन्यजीव फोटो प्रदर्शनी, पौधारोपण और संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं, चौंको जैसे जंगल भ्रमण के लिए भी रवाना किया गया और इसके साथ ही जो प्रतिदिन जो है यहाँ के आसपास के स्कूलों के बच्चों को टाइगर रिजर्व में उनको भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही जो है ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग, इस तरह की एक्टिविटीज भी जो है टाइगर रिजर्व के जो सारे अलग अलग क्षेत्र है, चाहे सुंदरगढ़ एरिया है, भरतपुरा है, कालदा है, रामगढ़ और जेतपुर है, इन सब में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए और बच्चों को भी जो है पर्यावरण के लिए जो कंजर्वेशन के महत्व को समझाया जाए।
0: प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ दिन का तापमान बढ़ रहा है जबकि रातें ठंडी होने लगी है। पिलानी और श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पिलानी में कल अधिकतम तापमान 40.2 और श्रीगंगानगर में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो प्रदेश में सबसे कम रहा। जयपुर में अधिकतम तापमान 36.2 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के तापमान में गिरावट जारी रह सकती है। जयपुर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए आपनों जयपुर हरित संगम एक पेड़ पूर्वजों के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से प्रकृति संरक्षण के प्रयासों से जुड़ने और हरियाली को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, महापौर सुनील कोठारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयपुर में 5 प्रमुख सड़कों पर करीब 9 किलोमीटर लंबा

0: चौड़ाई में फुटपाथ विकसित किए जाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार इसके लिए 6,33,00,000 रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। ये फुटपाथ न्यू सांगानेर रोड, किंग्स रोड, गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर 80 फीट रोड और हंस मार्ग पर बनाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रमों की आज घोषणा संभव। प्रदेश में आज नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विकास कार्यों के लिए 51 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के पारे में गिरावट का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। नीचे प्रस्तुत है सुगम संगीत। दोस्तों, सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं अनुप जलोटा की आवाज में गाए हुए कुछ चुनिंदा गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत अनुप जलोटा की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 9:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन।

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है।

जेपी दत्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसीलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, एलओसी और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: पहला भाग, स्वर है ममता सिंह का।
1: आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपने नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है। क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों और उसकी आंखें जगर मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में।

हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे? जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी। उफ, कितना खौफनाक विषय। एक बार तो उसने ना ही कर दिया था, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया, जबकि राइमा ने महिलाओं की सुरक्षा विषय पर बाइट बनाई थी। इरफान ने स्वच्छता अभियान को चुना। पूरी क्लास भर में साइबर क्राइम जैसे विषय पर दिव्या ने पायलट प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं। क्राइम से जुड़े लोगों की पड़ताल करना, उनसे बातें करना, उन्हें कन्विंस्ड करना, फिर उन पर अपनी मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर राय बनाकर लिखना। उफ, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। पुलिस स्टेशन जाकर चक्कर काटने पड़े थे। जब पहली बार पुलिस से इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन दिव्या भी कहां हार मानने वाली थी। फ्रेंडशिप क्लब एडल्ट साइट पर जाकर जूझती रही और अपना रिसर्च वर्क करती रही। अनगिनत कागज लिखे और फाड़े। एक बार तो उसे पुलिस वालों का विरोध भी सहना पड़ा। इस जद्दोजहद के बाद अपने दूसरे सब्जेक्ट की विधिवत पढ़ाई करना भी जारी रहा। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई।

शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता।

घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।

दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी। 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो, कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली, भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी। दिव्या तमक कर उठ बैठी। तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग? सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी है? मम्मी बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक। अरे तो कैटवॉक कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी। क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से? सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ। मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है। अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा, आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना, कितनी अच्छी है रीना। अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे, जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो। दिव्या के लिए

इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था। सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस्ड ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी, उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे, समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एकाध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई, दुखी होकर वो कमरे से चली गई। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपनी को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो। अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी। तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही। कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं। घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहां कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मढ़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की

दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी

दूर कर देती है। व्हाट हैपेंड दिव्या, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें। नहीं यार, खुश हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है, मम्मी की बहुत याद आ रही है। खैर छोड़ो। अरे तू तो उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना। नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी, उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से, उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सब के लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सब के लिए। छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है, इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहाँ से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी, मम्मी पापा से दूर आई हूँ उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हाँ पर तुझे अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरे सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोन्टाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही है, क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात

उसका विरोध ही नहीं किया। गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी, सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूँ।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं माँ? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है, मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा।

जन्म देने वाले मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी, बेटी कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा, हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला, वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना, यही चाहती हैं आप। क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता, दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, फिर कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना। इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है, इसमें बुराई क्या है, लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर, पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

अभी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। दिन के 11 बजे नीचे प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है रजिया सुल्तान। गीत को लिखा है जान निसार अख्तर ने और संगीत खयाम का।

0: हेलो
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और लीजिए सुनिए डॉक्टर प्रेम भंडारी की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रेम भट्टारी की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओ, फिल्म संगीत की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है सावन की घटा। गीत को लिखा है SH बिहारी ने और संगीत ओपी नैयर का।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में दिले नादान फिल्म का ये गीत। लीजिए श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ और इंदौर की शब्द रचना को आवाज दी है अनुराधा पटवाल और सुरेश वाडेकर ने। फिल्म का नाम है प्रेम गीत और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम गीत फिल्म का यह गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का यह गीत।

स्वीकार किया मैंने। जी हाँ, अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुना। लीजिए अब पढ़ते हैं अगले गीत की तरफ और सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में उमराव जान फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में उमराव जान फिल्म का ये गीत। लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश में सुनिए नमक हराम फिल्म का ये गीत है, आवाज है किशोर कुमार की। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में नमक हराम फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत आप यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माहे चैनल है। दिन के 12 बजने को लीजिए सुनिए हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि

0: जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के साथ लाइव कुछ ही पलों में।

0: की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। विविध भारती के स्टूडियो से लाइव है मेरे साथ अनु मलिक। 70वें वर्ष में विविध भारती प्रवेश कर रही है और इस समय अनु मलिक है विविध भारती के स्टूडियो में बिल्कुल लाइव। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई।
0: अनु जी, आपसे बातें करने के पहले जरा एक बार आपका एक प्रोफाइल प्ले कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो कौन से अनमोल गाने हैं जो आपके इस सफर में आपने हमें दिए हैं और विविध भारती से पिछले कई सालों से बजते रहे हैं। उन्होंने बनाए हैं कुछ बेमिसाल गाने।

0: अनु जी, इतने सारे गाने और ये सारे एक से बढ़के हिट हैं और विविध भारती जो है वो इस समय विविध भारती का ये कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है, न जाने कितने देश हमें सुन रहे हैं। और जिस तरह की हमने पब्लिसिटी की थी कि आप विविध भारती पर आ रहे हैं, विविध भारती देश का सबसे पुराना एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल है और 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और रेडियो से क्या नाता रहा है आपका?
1: देखिए, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं
0: जी
1: कि विविध भारती ने मुझे याद किया। विविध भारती एक ऐसा शब्द है जो हमारे नस नस में, रग रग में है
0: जी।
1: अब आप पूछेंगे ये कैसे है? मैं उनका बेटा हूं जिनका नाम है सरदार मलिक साहब,
0: मशहूर संगीतकार सरदार मलिक,
1: जिन्होंने कमाल कमाल के गाने बनाए। बचपन से ही मुझे उनसे सुनने को मिलता था। और ये कहा उन्होंने कि जब भी विविध भारती ने याद किया है मैं वहां गया हूं, और आगे चलकर तो कितना भी नाम कमा ले, याद रखना कि ये वो जगह है विविध भारती जहां ऐसे ऐसे संगीतकार आके अपनी कहानियां सुना के गए हैं, ऐसा कमाल का काम किया है, उन्हें कभी ना मत कहना।
0: वाह,
1: आज मैं यहां बैठा हूं तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, मेरा 100 बार ये दिल से एक आवाज निकल रही है कि आप कितनी भी मेरी तारीफ करो, ये कहो कि आप आए हैं, अनु जी आए हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं और कहता हूं कि थैंक यू, आपने मुझे यहां बुलाया।
0: क्या बात है,
1: आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को एक अंदाजा होने लगेगा मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी जान तोड़। आप जो गाने सुना रहे थे मैं अपनी यादों में चला गया
0: जी, बिल्कुल।
1: और वो यादें हैं उन निर्माता की, ज्यादातर निर्देशक का नाम लेते हैं लेकिन निर्माता जो प्रोड्यूसर होता है
0: जी
1: कम लिया जाता है उनका नाम, वो निर्माता सब याद आते हैं। जब आपने रफी साहब का गाना सुनाया अभी, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरी उम्र थी 16 साल
0: जी,
1: 16 साल जब मैंने ये गाना बनाया था
0: पूनम फिल्म के लिए
1: जी, और ये हरमेश मल्होत्रा साहब ने मुझे मौका दिया था। फिर आपने सभी गाने सुनाए और सभी मेरे निर्देशक निर्माता सब याद आए, मेरे गायक याद आए, मेरे लेखक याद आए जिन्होंने गाने लिखे हैं
0: हाँ जी,
1: मेरे साजिंदे याद आए।
0: बिल्कुल, क्या बात है, ये कितनी प्यारी बात है कि आप अब म्यूजिशियंस को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मैं इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि संगीत एक संगत का काम होता है यूनुस जी
0: जी,
1: आपको ये सब लोग सही मिल जाए तो गाने बन जाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने पिताजी को याद किया। हम यहां ये दावा कर रहे हैं कि विविध भारती ने 70 बरस का अपना सफर पूरा किया
1: जी,
0: और इन 70 सालों में हमने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लेजेंड्स

को रिकॉर्ड किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेडियो चैनल है जिसके पास यादों का एक बहुत बड़ा खजाना है, और आपके लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूं। ये तोहफा है पिताजी की आवाज। मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं पिताजी से मिला हूं, विविध भारती में ही मिला हूं जब वो विविध भारती में आए थे, और आज मैं आपके लिए खास तौर पर पिताजी की याद, उनकी आवाज लेकर आया हूं। बरसों पहले की ये रिकॉर्डिंग, एक मिनट का टुकड़ा मैं आपको सुनवाता हूं।

ये गाना के जिसने गाया वो भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट था। उन्होंने कहा, मलिक साहब मैंने बहुत अच्छे गाने गाए, लोगों ने पसंद भी बहुत किए, लेकिन हर एक ने कहा कहीं ना कहीं आप फीके पड़ते हैं। मैंने कहा अगर आप मेहनत करें, जी मैं करूंगा, तो आप 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास रोजाना इस कुटिया में आकर बैठिए। 1 मंथ आप बिलीव करिए कि वो इंसान मेरे पास बैठा और हर वक्त ये पूछता था क्यों कोई कसर तो बाकी नहीं।

0: जी कैसा लगा पिताजी की आवाज सुन के?
1: मैं एक्चुअली भावुक हो गया हूं क्योंकि मैं ये गाना, मेरी मां कहती हैं, अब तो मां भी नहीं रही, मां कहती थी कि तू 4 साल का था जब मुकेश जी घर पर आया करते थे, तू डैडी की गोद में बैठता था।
0: अच्छा।
1: और रिहर्सल होती थी सारंग तेरी याद में, तो वो दिन ऐसे अब याद आ रहे हैं।
0: जी जी।
1: और जिस अंदाज से डैडी ने ये गाना बनाया और जो गाया है मुकेश जी ने, और मैं उनका भी तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने गाना लिखा, भरत व्यास साहब का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो अंबुवा का झूलना, वो पीपल से छाव,
0: घूंघट
1: में जब चांद था मेहनती लगी थी पांव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव। डैडी एक महान इंसान थे, भरत व्यास जी, मुकेश जी, और ये गाना आज ऐसा लगता कल रिकॉर्ड किया गया है।
0: बिल्कुल।
1: इतनी ताजगी है इसकी तर्ज में कि वो कूट कूट कर मेरे अंदर भरी हुई है। जो को सीखा वहीं से आया है, और मैं अपने फादर को नमन करना चाहता हूं और उनकी यादों में ही मैं रहता हूं और आज भी काम करता हूं। बल्कि मेरी जंग भी उनकी वजह से हुई।
0: जी।
1: जब उनको वो मुकाम नहीं मिला तो मैंने कहा मैं नाम कमाऊंगा डैडी आपके लिए।
0: बिल्कुल। और आपने वो करके दिखाया, और मुझे याद है कि जब मुलाकात मेरी हुई थी तो वो इतनी आपकी तारीफें करा करते थे और एक गर्व से भरे हुए थे कि मेरे बेटे ने वो मकाम हासिल किया जो जिंदगी ने मुझे मौका नहीं दिया हासिल करने का।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और चूंकि यादों की बात है तो वो गाना जो आपने इसलिए बनाया शायद ताकि जब भी कभी हम पुराने दौर को याद करें तो इस गाने को दोहराएं कि यादें याद रह जाती हैं।

0: गाने आपने बनाए, एक वो दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक वो दौर था जब आपने अमिताभ बच्चन के लिए लगातार गाने बनाए, आगे भी बनाए, तो वो यादें बांटिए, यादें हैं।
1: देखिए, ये मां सरस्वती की कृपा है। मैं बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट था
0: जी
1: ऐसे महान सुभाष जी के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करना। उसकी जद्दोजहद बहुत हुई
0: जी,
1: आसान नहीं रहा, क्योंकि हमारे सामने बड़े जबरदस्त संगीतकार थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब
0: जी,
1: आर डी बर्मन साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, जो कमाल कमाल के गाने बना रहे थे। उनके सामने फिल्म मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था
0: जी जी,
1: लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर गाने बनाने की एक चाह है
0: जी।
1: मैं गाना बनाता था, उसे कैसेट्स में रिकॉर्ड करता था, बाजा लेकर चल पड़ता था।
0: यस,
1: सुभाष गाई साहब का म्यूजिक बड़ा कमाल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी हर फिल्म का म्यूजिक कमाल रहा है। तब जाके जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, अब ये जो गाना है, नगमे हैं, शिकवे हैं, इसमें आनंद बख्शी साहब बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बख्शी साहब ने कहा कि सुभाष जी सुनाओ ये लड़के ने क्या बनाया। मैंने जब ट्यून सुनाई उनको
0: जी,
1: मैंने ऐसे सुनाया।

0: अचानक वो रुक गए। बख्शी साहब कहते हैं अनु मुखड़ा यहीं खत्म हो रहा है, मैंने कुछ और आ सकता है। मार्जिन भी ये कहा मैं और क्या लेके आए कि अचानक मैं समझ गया बख्शी साहब क्या चाहते हैं, वो लिखना और चाहते थे।
1: हाँ उसके आगे
0: तो मैंने आगे ऐसे ऐसे गाया डा डा डा डा डा डी डा डा डा डा डो डो डो डो डो डो डो। और उसके बाद जो तर्ज उनको इतनी पसंद आई, लिखने के बाद गाना वो सुभाष जी की तरफ देखते हैं आनंद बख्शी।
1: हाँ हाँ
0: बख्शी साहब बोलते हैं सुभाष ये तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह वाह क्या स्टेटमेंट है ये।
0: ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था क्योंकि ये कहना सुभाष जी को
1: हाँ
0: अनु तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह
0: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बख्शी साहब बड़े बड़े उस वक्त भी संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे जो लाजवाब काम कर रहे थे।
1: जी जी
0: उन्होंने कहा ये बैठे बैठाए मेरे सामने अगर इस लड़के ने डा डा डा डाडी डा डा डा डा। अब ये आप सवाल बहुत से लोग पूछते भी हैं, बहुत से लोग पूछते भी नहीं है ये कैसे होता है, मैं बताता हूँ। इतने संगीतकार है दुनिया में
1: जी।
0: और गुनीजन है, गुनीजन मैं क्यों बोलता हूँ उनको, सीखे हुए लोग हैं।
1: हाँ जी
0: मैं एक नेचुरल म्यूजिशियन, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज अ नेचुरल म्यूजिशियन। नेचुरल म्यूजिशियन वो होता है जो चीजें आमद होती, सरस्वती माँ की कृपा है।
1: जी जी
0: मैं बाजे पर बैठा हूं और बाजा बजा रहा हूं और ये नोट साक्षात अंदर आते हैं।
1: क्या बात है।
0: जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने बहुत इंटरव्यू कहा है, अब आप पूछेंगे अनु जी आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बात करते करते भी एक दिमाग में, एक सेक्शन ऑफ मेरे दिमाग में ट्यून चल रही है।
1: अच्छा
0: एक लय चल रही है। तो मैं कभी फुल, मैं ये कहूंगा कि एक तो मेरे फादर
1: जी,
0: एक तो बड़े बड़े महान संगीतकार जिनको मैं बहुत, मैं सभी संगीतकार ने बहुत अच्छा काम किया हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैं दीवाना हूं शंकर जयकिशन का, आर डी बर्मन का। इसलिए दीवाना हूं मैं क्योंकि मैं समझता हूं कि शंकर जयकिशन आर डी बर्मन एक कंप्लीट लोग थे।
1: जी जी
0: उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, और उसके बाद आप गिनते जाइए मदन मोहन जी के गाने सुन लीजिए,
1: वाह
0: सलील दा के सुन लीजिए, सचिन देव बर्मन की सुनिए, नौशाद साहब की सुनिए, क्या काम किया लोगों ने। अभी भी मुझे लगता है मुझे और मेहनत करनी है, और काम करना है। बल्कि आपको मैं न्यूज बताना चाहता हूं कि जब आपके 70th ईयर है ये
1: जी
0: भारती का,
1: जी
0: जनवरी 11 को 2027 में मैं 50 साल काम, आई विल बी कंप्लीटिंग 50 ईयर्स।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: 14 साल की उम्र में शुरू हुआ था, फिल्म थी हंटर वाली 77।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: आपको याद होगा।
1: बिल्कुल
0: मैंने काम किया है लता जी के साथ, आशा जी के साथ,
1: रफी साहब के साथ,
0: किशोर दा के साथ और मोहम्मद रफी साहब के साथ, यहां तक मन्ना दा के साथ भी काम किया है, बस मुकेश जी के साथ नहीं किया। एक बेबाक लड़का 14 साल की उम्र में बाजा लेकर

0: पहुंचता था सबके पास, मतलब मेरे पास तर्ज है, सुनोगे? मेरे पास तर्ज है। कुछ लोग हंसते भी थे, कुछ लोग मजाक भी बनाते थे, लेकिन मैं हारा नहीं और आज भी मुझे लगता है कि मैं फिर से काम शुरू करने को तैयार हूं।
1: क्या बात है। रफी साहब से जुड़ी कोई याद?
0: बहुत सी यादें, खास करके इसी गाने की, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता। हुआ यूं कि मैंने उनको अप्रोच किया, हरमेश मल्होत्रा साहब ने कहा कि अन्नू रफी साहब से गवाते हैं, मैं जाता हूं उनको मिलने के लिए। तो उनके ब्रदर इन लॉ थे जहीर भाई, उनको फोन किया, मैं रफी साहब से मिलना चाहता हूं। तो रवि साहब से उन्होंने बात की और कहा कि कौन है आप? मैं बस मैंने इतना कहा मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं। तो वो बहुत खुश हो गए कि मलिक का बेटा मुझसे मिलना चाहता है। किस सिलसिले में? मैंने एक फिल्म साइन की है, आपसे गाना गवाना चाहता हूं।
1: हाँ,
0: उन्होंने कहा कल सुबह 9 बजे मेरे घर पर आ जाना।
1: क्या बात है।
0: मैं पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात, और सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली कि मुझे रफी साहब को मिलने जाना। तो मैं भूल गया वक्त, कितने बजे बुलाया था, मैं 6 बजे पहुंच गया।
1: अरे बाप रे, इतनी सुबह?
0: 6:30 बजे मैं पहुंच गया और बाहर खड़ा हो गया उनके दरवाजे के, बंगला था उनका ये बैंड्रा में।
1: हाँ,
0: अभी वहां बिल्डिंग बन गई है
1: जी।
0: और रफी साहब, मुझे पता नहीं था कि रफी साहब भी जल्दी उठते थे, वो सुबह अपने गार्डन में बैठते थे
1: जी।
0: और झरोके से जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो दरबार रो रहा था, तो उन्होंने देख लिया, तो देखकर हैरान हो गए। अरे भाई, मैंने आप बहुत सॉफ्टली बात करते थे।
1: हाँ,
0: कौन हो? मैं बोला अन्नू मलिक हूं, सरदार मलिक साहब का बेटा। अरे मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया था। नाराज होने के बजाय उन्होंने मुझे इशारा किया अंदर आओ, मैं अंदर चला गया।
1: हाँ,
0: 6:30-7 बजे ही मैं जाके लॉन्स में खड़ा हो गया। वो उठे, कुर्ता पहना हुआ था, लुंगी पहनी हुई थी, और अचानक मुझे रूम में बुला लिया। जैसा मैं रूम में गया, मैं क्या देखता हूं कि चारों तरफ अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं, एसी ऑन है, खूबसूरत समार खुशबूदार रूम था। रफी साहब सामने बैठ गए, बोला गाना लेके आए? मैंने कहा हाँ, सुनाइए। और मैंने बाजा खोला और अपना गाना सुना। तो सबसे पहले बोलते आ रहे तुम बाएं हाथ से बजाते हो?
1: हाँ।
0: हाँ, मैं लेफ्टी हूं। अच्छा अच्छा, सुनाओ सुनाओ। अब मैं गाना गा रहा हूं, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रंग लाती है शराब। उनके जो ब्रदर लॉ थे वो गाना लिखते जा रहे थे
1: जी।
0: मैंने एक चीज नोटिस की कि रफी साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे,
1: ओ
0: चुप थे।
1: हाँ हाँ,
0: मैं गा रहा हूं, दु दु दु। अचानक एक चीज मेरे दिमाग में, मैं बोला चलो अंतरा गाते हैं। अब जैसे मैंने अंतरा गाया, अभी कम सिन हो क्या जानो, तो मुझे कहते हैं वापस गाओ। मैंने कहा अभी कम सिन हो क्या जानो, तो वही रफी साहब से एक चीज सीखा मैं। बोला ये जो तुम गा रहे हो
1: जी,
0: थोड़ा गलत है।
1: ओ,
0: तो मैं बोला सर क्या गलत है? तुम गा रहे हो अभी कम सिन हो क्या जानो, इसको मिला दो, तुम एक शब्द को दो टुकड़े कर,
1: दो टुकड़े करें
0: कर दो, अभी कम सिन हो क्या। और मैं उनके पांव पर गिर गया।
1: वाह वाह,
0: मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों मानता हूं, ऐसे महान लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला। फिर जब गाना रिकॉर्ड हुआ, वो दिन अच्छी तरह याद है, मैं जब कंडक्ट कर रहा था, मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर मतलब जो अरेंजर थे वो वहां थे, तो एक पीस आया और मुझे नोटिस कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बोला फर्स्ट म्यूजिक ऐसा करते हैं, डंग डंग डंग डंग डंग डंग डंग, मैं खुद ही गा रहा था, तो मैं साजिद को समझा रहा था, डंग डंग डंग डंग डंग तुरु, मुझे इंटरलूड बनाने का बड़ा शौक है। तारा तीरा तीरा भी कम से, तो बोला अरे क्या अंतरा उठा है, आके मुझसे गले मिले। और मुझे अच्छी तरह याद है जब गाना जब खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा।
1: क्या बात है।
0: और जो इस यहां उनका हाथ था, लेफ्ट मेरे हाथ पर कंधे पर, और मुझे ऐसे पकड़ा।
1: वाह।
0: और उसी शाम को उन्होंने डैडी को फोन किया था, मलिक तेरे पास

0: संगीत का नग है।
1: वाह।
0: एंड डैडी की आंखों में आंसू थे कि रफी साहब ने मेरी तारीफ की, ये मैं लम्हा कभी नहीं भूल सकता हूं। और वही रिकॉर्डिंग जब खत्म हुई, इतने महान इंसान थे, अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था।
1: हाँ।
0: तो मुझे आगे कर दिया कि भाई इनसे कुछ रिक्वेस्ट करो। तो बोला मैंने गाना गा दिया, पैसा तो चाहिए मुझे। बोला रफी साहब वो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, पैसा है नहीं। तो मुझे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं, अनु एक काम कर, पैसा तो मैं लेके ही जाऊंगा। अब मैं डर गया।
1: बिल्कुल।
0: मैं बांद्रा से आया हूं।
1: हाँ हाँ।
0: घर वापस जाना है। प्रोड्यूसर को बोलो मुझे 50 रुपए दे दे, पेट्रोल का पैसा तो दे दे। सिर्फ 50 रुपए लेकर उन्होंने वो गाना गाया था, मोहब्बत रंग लगी जनाब आहिस्ता, इसलिए लोग उनको फरिश्ता बोलते थे।
1: क्या बात है। अब एक मोमेंट आएगा, एक ऐसा गाना आएगा जो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो कौन सा गाना है, और उसके बाद मोहब्बत रंग लाएगी आएगा। जी जी। लेकिन कमाल यह है कि पहले आता है पिताजी का गाना, रफी साहब की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल।

सरदार मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज और यहाँ से आता है अनु मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम पूनम, साल

0: क्या कमाल, क्या कमाल जी, कहिए।
1: यही जो आप पीस सुना रहे हैं ना
0: जी,
1: डांग डा डा डा डा डा,
0: इसी की बात हो रही थी।
1: इसी की मैं बात कर रहा था कि जब मैं बना रहा था ना ये पीस,
0: हाँ,
1: उस वक्त रफी साहब फेमस था जो,
0: जी जी बिल्कुल,
1: स्टूडियो में,
0: हाँ,
1: क्यूबिकल के सामने खड़े थे,
0: हाँ,
1: और मुझे सुन रहे थे बनाते हुए।
0: बताइए।
1: तो इतने खुश हो गए थे कि तुझे शौक है इंक्लूड बनाने का, मेरा जी बहुत शौक है।
0: जी जी जी।
1: तो उसके बाद ही उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा।
0: बताइए।
1: और फिर डैडी को फोन किया था। मैं ये ऐसे इंसान को भूल नहीं सकता।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे इंसान थे, इतने इनकरेजिंग थे मोहम्मद रफी साहब, इतना प्यार करते थे कि चंद शब्दों में उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा।
0: अब मैं एक और गायिका की तरफ आ रहा हूं, लेकिन यहां भी जो बात है ना वो गाने के सिरे को पकड़कर होगी, और वो गाना है ये

0: यहां सब लोग उस गाने की मस्ती में डूब गए।
1: तो आपने जो अभी बात कही कि ये बिल्कुल अलग है उस गाने से,
0: हाँ जी,
1: तो इसकी इंस्पिरेशन कि मैंने कसम खाई थी कि मैं वो संगीतकार बनना चाहता हूं जो हर किस्म के गाने बनाए, हाँ। उसके पीछे थे आर डी बर्मन साहब
0: जी।
1: मैं जब छोटा था मैंने एक गाना सुना था, डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग, ये दम मारो दम, ये सुना था, उम्र थी 10 साल। वही इंसान बनाता है चिंगारी कोई भड़के, अभी वही इंसान, इतना बड़ा कंट्रास्ट। मैंने बोला कि मैं आगे चलकर ऐसा संगीतकार बनना चाहता हूं कि मैं सिचुएशन में अपने आप को ढाल लूंगा। अगर रोमांटिक गाना है तो मैं वो बनाऊंगा, अगर पंजाब पर बेस्ड है सोनी मेवाल लव स्टोरी पर मैं वैसे गाने बनाऊंगा, अगर जुड़वा है जिसमें मस्ती वाले गाने चाहिए जैसे कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है मैं वो करता हूं, तो आर डी बर्मन साहब ओ हसीना जुल्फो वाली भी कर देते, आर डी बर्मन साहब चिंगारी कोई भड़के भी बनाते थे, और मैंने अपने आप को कसम दी कि आई कैन कंपोज ऑन एनी सिचुएशन एनी टाइम एनी वेयर एज लॉन्ग एज माई डायरेक्टर इज विद मी।
0: और ये आपने किया है
1: एक बार नहीं हजारों बार, और अभी भी कर रहा हूं।
0: बिल्कुल, मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं कि एक पूरा 80s का दौर था जहां बहुत अलग तरह का म्यूजिक बन रहा था, और कमाल की बात यह है कि उस पूरी धारा में भी आप 80s के हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो के लिए ये गाना बनाते हैं। और देश के गली गली शहर शहर चौराहे चौराहे पर गूंजता है ये गाना।
2: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।
0: बच्चन साहब के लिए गाने बनाना कोई छोटा काम नहीं था,
1: बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ एक महान निर्माता निर्देशक साहब थे मनमोहन देसाई, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि अन्नू मलिक आप सोचिए, नसीब गूली अमर अकबर एंथनी जैसे एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और एक नए लड़के को चांस देना
0: जी, तो
1: अमिताभ बच्चन साहब के साथ
0: इतनी बड़ी फिल्म,
1: तो ही हैड फुल कॉन्फिडेंस। मैं बताना चाहता हूँ संगीत बनता है कॉन्फिडेंस से। संगीत अगर आपका निर्देशक आप पर भरोसा करता है कि दिस मैन कैन डिलीवर, तो हजारों चीजें होती है। और मनमोहन देसाई साहब से जब मैं मिला भी था तो उन्होंने बहुत से मुखड़े सुने मुझसे, बहुत से मुखड़े, लेकिन मुझे मुखड़े लिखने की भी आदत है, मैं मुखड़े की जो फ्रंट पहली जो चार लेने होती है मैं लिख देता हूं। तो मैं बोला सर कैरेक्टर का नाम क्या है, बोला सोच रहा हूं मैं पिक्चर का नाम सोच रहा हूं मर्द। तो मुझे टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगा मर्द, बोला वेरी गुड टाइटल। तो मैं बोला सर एक मुखड़ा दिमाग में आ रहा है, कैच करता है यार, वो टांगा चलाता है। तो बोलता हुआ मुखड़ा, ये मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, और वहीं से वो मेरे गले लग गए। और फिर मैंने कुछ 200 300 400 500 कितने ट्यून सुनाए उनके दना दन, और एक दिन उनने कहा चल आज सिटिंग करते हैं, और बच्चन साहब के साथ सिटिंग हुई। बच्चन साहब ने रिएक्शन तो कुछ दिया नहीं, वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बस चुपके सुनते जा रहे थे। लेकिन आधे घंटे के गाने के बाद, 1.5 घंटा गाया मैंने, बोला फिर अचानक मनमोहन जी ने बोला उनसे कैसा लगा, और बाहर आके मुझे बोलते हैं तू अपनी शर्ट तो नहीं फाड़ेगा, यू आर नाउ साइन फॉर मर्द।
0: क्या बात,
1: तो आई वुड थैंक अमिताभ बच्चन साहब फॉर एक्सेप्टिंग मी अ न्यू बॉय, आई वुड थैंक मनमोहन देसाई साहब, अगर बच्चन साहब ने हाँ नहीं बोला होता, मनमोहन जी ने हाँ नहीं बोला था, अन्नू मलिक आपके सामने बैठे ये बातें नहीं कर रहा होता।
0: बहुत सही बात है।
1: उमेश मेहरा साहब ने मुझे सोनी मेवाल दी
0: जी,
1: राजीव मेहरा साहब ने मुझे एक जाने हम दी
0: जी,
1: FC मेहरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जिंदगी में, जैसे हरमेश बल्होत्रा, उससे पहले सलीम अख्तर साहब,
0: बिल्कुल
1: ये सब लोग बड़े।
0: एक चीज मुझे याद आ गई, मर्द में कुछ बड़े म्यूजिक बड़े लिरिसिस्ट थे जैसे राजेंद्र कृष्ण।
1: बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, वो

अनु जी बातें रफी साहब से चल के और आशा भोसले तक आ गई। शुरुआती दौर था उमेश मेहरा की फिल्म, और ये जो म्यूजिक है ये पूनम से बिल्कुल अलग है। इसमें पूरा एक पंजाबी फ्लेवर है, सोहनी महिवाल, और क्या तो गाना।

0: भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। अनु जी, बाजीगर फिल्म का ये गाना, मैंने बाकी तमाम गानों को छोड़कर इस गाने की बात की है, कोई तो बात होगी।
1: मैं समझता हूँ इसलिए बात होगी, मैं देखिए ये जो फिल्म का गाना आपने बजाया है
0: जी,
1: पंकज उदास जी की आवाज में बजाया है आपने, और इसको बाद में गाया था विनोद राठौड़ ने।
0: हाँ,
1: सो क्या हुआ, महान रतन जैन, मैं उनको महान रतन जैन बोलता हूँ, वीनस के जो मालिक हैं
0: जी जी जी,
1: और महान गणेश जैन, दो भाई, इनकी वीनस टेप्स एंड रिकॉर्ड्स
0: जी,
1: सात भाई, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक चले गए, हमारे प्यारे चंपक जी
0: जी जी,
1: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस वक्त जब मैं 80s में से निकलकर 90s की तरफ जा रहा था, 80s का दौर बदलता जा रहा था, आप समझ गए, नए नए संगीतकार फिर अपने कदम जमा रहे थे
0: जी,
1: उस वक्त धीरे धीरे मेरा काम जाने लगा
0: जी,
1: एंड मेरी जिंदगी में इस गाने से पहले एक इंसान आए जिनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, जिनका नाम है महेश भट्ट साहब
0: जी जी जी।
1: उसके बाद ये पिक्चर आई, मैंने एक एल्बम किया रतन जैन साहब के लिए
0: जी जी,
1: उसमें ये गाना था
0: जी।
1: तो एक दिन रतन जी कहते हैं, यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं,
0: हाँ,
1: फिल्म का नाम है बाजीगर,
0: वाह,
1: इसमें एक नया लड़का है शाहरुख खान,
0: हाँ,
1: नई हीरोइन है काजोल, और डायरेक्टर भी वर्चुअली न्यू है, एक फिल्म इनकी हिट हो चुकी है, तुम आओगे? मैं बस सर डूबते हो गया, तिनका का सहारा वाली बात है, मेरे पास तो काम ही नहीं है, नई नई शादी हो चुकी थी मेरी। उन्होंने कहा काम करते हैं। मैंने जब ये मुखड़ा सुनाया इतने खुश हुए, फिर हमने ये गाना विनोद राठौड़ से गवाया था
0: जी।
1: जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तालियां बज रही थी,
0: क्या बात है,
1: क्योंकि 90s की एंट्री
0: हाँ
1: का ब्यूगल बज चुका था, सिर्फ अनु मलिक का नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जितने भी संगीतकार 90s में थे
0: जी,
1: वो अपना नया रंग लेके आ रहे थे
0: जी जी जी,
1: और उनमें से एक था अनु मलिक,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सभी ने बहुत अच्छा काम किया, जितने भी, अगर 90s का म्यूजिक सुनोगे तो लोग कहते हैं दैट्स द रेनेसांस ऑफ, जैसे 60s का म्यूजिक था,
0: हाँ,
1: 90s के म्यूजिक के बारे में बात करते हैं,
0: हाँ,
1: उसके बाद ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं है
0: जी,
1: एवरी कंपोजर, एवरी लिरिसिस्ट, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर
0: जी,
1: एवरी म्यूजिशियन, एवरीबॉडी, सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, संगीतकार हो, म्यूजिशियंस अपने उस जमाने के क्या थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था
0: जी जी,
1: एंड उसका नतीजा है 90s का म्यूजिक। जब ये बाजीगर के गाने बने थे तो लोग दीवाने हो गए थे, बोलते कैसेट्स वर फ्लाइंग लाइक हॉट केक्स,
0: मुझे
1: लोग आके बोलते हैं कैसेट्स बिकते थे, हर दुकान के कैसेट बिक रहे थे, मतलब अगर बगल में चार कैसेट बेचने वाले बाजीगर के हो तो चारों दुकान से बिक रहे थे, ये देखिए एक दुकान में,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसका नतीजा ये निकला कि आज टुडे जब ये गाने लोग सुनते हैं तो मुझे मैसेजेस लाके देते हैं, कहते हैं अनु जी ये गाने ऐसा लगता कल रिकॉर्ड किया आपने,
0: हाँ,
1: इतनी फ्रेशनेस कैसे है। तो आई वुड से उस वक्त ऐसा एक सर पे एक जुनून सवार था कि कुछ अच्छा करना है।
0: बाजीगर में तो आपने वो रैप भी किया था,
1: वो काली काली आंखें में, उसकी भी स्टोरी है, अब गाना बजाए तो बताऊंगा।
0: अच्छा, गाना बजाना पड़ेगा, ठीक है, गाना बिल्कुल बजाएंगे, और बाजीगर का वो गाना भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं।

हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारे ये कार्यक्रम विविध भारती के स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव देखा जा सकता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के साथ।
1: ये सुनू जी, ये काली काली आंखें,
2: ये जो काली काली आंखें का गाना है, इसमें जो आज इतना ट्रेंडिंग हो गया रैप
1: जी,
2: उस वक्त ये सब नहीं था
1: जी।
2: हुआ यूं कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मुखड़ा बन चुका था, सेट पर सब थे, अचानक 16 बार का एक फर्स्ट म्यूजिक में टेम्पो बज रहा था, टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक। बहुत कुछ ट्राई किया, उसमें कुछ हो रहा नहीं था। मैं बोले ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है पूरा जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया, मैं चला गया सेट के ऊपर, मैं बोला यार एक काम करते हैं, माइक पर जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये खाली जगह को मैं कवर करना है। अभी मुखड़ा खत्म हो चुका है, अंतरा आने वाला है, अंतरा आने से पहले की म्यूजिक पीस है, लेकिन ये 16 बार मैं करूं तो क्या करूं, बहुत सोच रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं ये वर्ड डालता हूं
1: जी,
2: मैं मिला तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली मैं मिला, दुनिया चले तू जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे राम पाम पाम बारा पाम पाम। अब पूरा ब्रास आता है वहां से।
1: हाँ।
2: तो पूरा मैंने टाइमिंग कवर किया उसके अंदर।
1: हाँ।
2: एंड वहां अब्बास मस्तान, रतन जैन ऑल जंप्ड अप, ये बहुत अलग चीज की तूने। और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत अलग चीज हो गया, मैं मिला और जो तेरा अंदाज है ना तू मिली, तो वहां देव कोहली साहब भी थे लिरिक राइटर। मैं बोला देव जी एक पहला हाफ तो मैंने लिख लिया है, दूसरा हाफ को लिखे देते, सेकंड अंतर में भी डालते हैं। मैं तुकार झटपट, मैं तुकार खटपट, मेरे आचा तो निकट, वो देव जी ने वही लिख दिया। वो भी कमाल के इंसान थे देव कोहली साहब,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: महान राइटर थे वो,
1: महान राइटर।
2: तो वो उन्होंने, मैंने बोला सर ये जो मैंने तैथू लिखा है फर्स्ट, मैं मिला तुम्हें, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? बोला अनु जी गो हेड रिकॉर्ड इट, बहुत अच्छा लग रहा है। देव जी की परमिशन मिली मुझे।

0: और मैंने कर दिया। पर जो नेक्स्ट उन्होंने लिखा वो भी मैंने बोल दिया, ना तू कर खटपट, तू आजा तो निकट, तेरे प्यार झटपट, न तो जुल्फ झटक, न तू पैर पटक, ये सब किया था मैंने। आज वो गाना लोग बोलते हैं वो अ ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग, वन फॉर इट्स साउंड।
1: बिल्कुल,
0: द म्यूजिक प्रोडक्शन वॉज वेरी न्यू।
1: यस यस,
0: डेढ़ महीना लगा था उस गाने को बनाने के लिए, डेढ़ महीना टू गेट द म्यूजिक राइट। पाम पाम पारा पाम पाम पाम, तो करते करते बहुत टाइम लगा। आई वॉन्ट टू सेट अ ट्रेंड। और आज लगता है लोग मुझे बोलते हैं कि यार इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, एआई आ चुका है, लेकिन लगता है ये गाना कल रिकॉर्ड हुआ है। मैं 3 बार ये लव्स यूज कर चुका हूं, बिकॉज आई बिलीव अ सॉन्ग शुड साउंड एज फ्रेश एज इट वॉज रिकॉर्डेड यस्टरडे इवन टुडे।
1: बाजीगर के टाइटल सॉन्ग में आपने वायलिंस बड़े प्यारे इस्तेमाल किए, वो क्या था मामला?
0: कहानियां बहुत है इसके बारे में। लोग बोलते हैं अनु जी आप ये बताइए कि गाना बना कैसे। बाजीगर इज अ वेरी टफ वर्ड, बाजीगर। अगर इस पर आपको बोला जाए गाना बनाओ, हाउ डू मेक अ सॉन्ग?
1: जी जी।
0: तो मेरे दिमाग में एक दिन मैंने रतन जी को फोन किया, सर एक मुखड़ा है दिमाग में, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। तो बोला सुना, तो मैंने ऐसे सुना है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, ऐसे सुना रहा हूं। बोला बहुत कैसी मुखड़ा, अप्रूव हो गया, लेट्स रिकॉर्ड द सॉन्ग।
1: जी जी जी।
0: मेरा अब ये जो लाइन आती है ये सुनने वाले, सेट पर हम पहुंचे, सिंगर्स आर ऑन द माइक।
1: हाँ
0: हाँ, सिंगर्स आर ऑन द माइक, अब्बास मस्तान खड़े हुए, पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा, 60 वॉयलेंस, वियोलास, चालोस, एवरी वन, रिदम फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज रेडी। अब सब बोल रहे कि अनु मलिक इज रिकॉर्डिंग फॉर अ न्यू हीरो, अ न्यू हीरोइन, सबके फैमिलीज आए हुए हैं
1: जी,
0: सब सुन रहे हैं, और मैं सेट पर हूं। अचानक जब गाना रिकॉर्ड करो, जो आपने पूछा कि वॉयलेंस आए कैसे, ये मैं बोले यार 1 2 3 4 गाना शुरू होता है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, तरन टन टन टडन, सीधा फर्स्ट म्यूजिक आ रहा था, टम पम पुम बबम बबम तरम पम तम दम दम दरा, मैं बोला कुछ कमी है यार गाने में, दम नहीं है। लोग हैरान हो गए, बोले सेट पर हो आप, गाना हमने अप्रूव कर लिया है, अब्बास मस्तान कह रहे हैं, सर ये गाना उठ रहा नहीं है,
1: कुछ करना पड़ेगा।
0: मैं बोला एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं।
1: हाँ,
0: वही सेट पर इंट्रोडक्शन बनाया, तो मैं चाह रहा था ब्रास शुड बी कमिंग डाउन, ये सुन रहे वॉल्यूम चल रहे हैं, अभी भी कुछ कमी है, मुखड़ा क्यों नहीं उठ रहा। तो वहां मेरे एक सोलोइस्ट थे हमारे, उनको मैंने बोला यार एक काम करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स लेके आएंगे, या रोक देंगे,
1: ओ वाह भाई,
0: और वहीं मेरा मुखड़ा बजाओ।
1: ओके,
0: मेरा ही मुखड़ा बजाओ, तारी रारी रारी रम ता। तो ऑल वे लुकिंग एट मी, ये क्यों किया? फिर बोला इसके बाद मुखड़ा नहीं उठ रहा है। सडनली आई गॉट एन आइडिया, मैंने गाना यहां से शुरू करते हैं, वहीं लिखा गया ये।
1: अच्छा,
0: मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर, डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा। ब्रेक, बाजीगर ओ बाजीगर। तो गाने किस तरह बनते हैं, गाने का चेहरा बदल जाता है सेट के ऊपर।
1: क्या बात,
0: एंड आई बिलीव इन इंस्टिंक्टिव क्रिएशन। उस वक्त अब्बास मस्तान, रतन जैन मेरे पास आए, बोला तुमने चेहरा बदल दिया गाने का, मुखड़ा उड़ गया, एंड बाजीगर वॉज बॉर्न विद दैट सोलो वॉयलिन पीस एंड द सिंगिंग एंड द राइटिंग। क्या मतलब उसका अंतरा भी क्या बना था, धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है, मेलोडी थी। तो सिंगर सैंग विद अ लॉट ऑफ लव, सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड द रिजल्ट कि आज भी गाना बजता है। और पिक्चराइज भी शाहरुख पर और काजल पर इतना ब्यूटीफुल किया था सरोज जी ने, कि लोग याद करते हैं उस पिक्चराइजेशन, और क्या शाहरुख लगा और काजल लगी उस गाने के अंदर, लाजवाब पिक्चराइजेशन।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस टू प्ले दिस।

दिस इंट्रोडक्शन म्यूजिक, जिसके बनने की कहानी अभी आपने सुनाई। विविध भारती पर फेसबुक लाइव भी है ये कार्यक्रम। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल हम अनु मलिक से पूछेंगे। ये है वो म्यूजिक जिसके बनने की कहानी अभी सुनाई अनु मलिक ने।

0: अनु जी, यहाँ यादों की महफिल जम गई है।
1: क्या बात है, क्या क्या गाने आप सुना रहे हैं, मुझे घबराहट भी हो रही, कैसे गाने
0: जी,
1: उसकी मेहनत याद आती है मुझे।
0: मुझे याद है कि मैं जेपी दत्ता साहब से बात कर रहा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने की बनने की जो कहानी है, उनको भी विविध भारती से बड़ा प्यार है और काफी काफी दिलचस्प कहानियां उन्होंने बताई थी बॉर्डर की। आप बताइए इसकी सिटिंग की बेमिसाल कहानी।
1: ये जो कहानी है इसकी, ये जो ट्यून है
0: जी,
1: ये जो जगह है, ये मैंने एक जगह, मैं जावेद साहब के साथ बैठा था सिटी में एक डायरेक्टर के साथ।
0: हाँ,
1: नथिंग टू डू विद बॉर्डर।
0: ओके,
1: मैंने बैठा था एक सिटी में, जावेद अख्तर साहब थे वहां।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मैंने ट्यून सुना, जावेद साहब को बहुत अच्छी लगी ट्यून, इतना ही। अनफॉर्चुनेटली तो वो जो डायरेक्टर था उसे समझ नहीं आई।
0: ओके,
1: ये जगह
0: जी,
1: बोला नहीं यार मुझे नहीं जम रही। ठीक है, हम भूल गए, हम निकल गए। उन्होंने फिर किसी और संगीतकार को ले लिया
0: जी।
1: और हमारे मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें प्रॉमिस किया गया ये फिल्म आपकी है, फिर ड्रॉप कर दिया है
0: जी।
1: तो ये तो कहानी सभी सभी की होती है, स्ट्रगल की
0: जी,
1: वो अलग बात है। एक दिन मेरे घर में जावेद अख्तर साहब और जेपी दत्ता साहब आए, ओपी दत्ता साहब के साथ।
0: हाँ,
1: ओपी दत्ता साहब उनके फादर
0: जी। जी,
1: मुझे साइन कर लिया था बॉर्डर के लिए। जावेद साहब ने बोला, सिटिंग रूम का दरवाजा जो है अन्नू मलिक का, उस पर कुंडी लगा दो।
0: अच्छा, बंद कर दो।
1: हाँ, हम चेक करते हैं कि भाई ये लड़के में कितना दम है। मेरा इम्तिहान तो जिंदगी में चलता ही आया
0: जी। जी,
1: जब से मैं पैदा हुआ मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है
0: जी। जी, जी,
1: कोई बात नहीं, कुंडी लगा दी आपने, बंद कर दिया।
0: हाँ,
1: बोला कि आप कुछ सुनाइए,

0: मैं फिर सोचता रह गया कि इतने शब्द हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ऐ गुजरने वाली हवा जो बता, जो लाइन आई,
1: हाँ,
0: वहां जाकर मैं इतना इम्प्रेस हो गया, मैंने ट्यून वहां से शुरू की।
1: हाँ,
0: ए गुजरने वाली हवा बता, यहां से जावेद साहब का रिएक्शन आया, जेपी साहब का रिएक्शन आया, और दोनों उठे और उन्होंने गले लगा लिया। बोला ये जो इतना बड़ा गाना है तूने यहां से शुरू किया, फिर वो ट्यून जो याद आई थी मुझे, मैं जावेद साहब उसको मिला के देखते हैं।
1: हाँ,
0: मिलाया तो जावेद साहब उछल गए और जेपी दत्ता साहब ने गले लगा लिया। सी हाउ सॉन्ग्स आर बॉर्न।
1: जी जी जी,
0: दिस सॉन्ग वॉज बॉर्न आउट ऑफ इंस्टिंक्ट के इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया यूनुस जी,
1: जी,
0: कि हमारे देश की रक्षा करते हैं और अपने माँ बाप से दूर,
1: जी,
0: अपने फैमिली से दूर, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, वो इमोशन
1: जी
0: मेरे अंदर आया। एंड द सॉन्ग संदेश से आते हैं वॉज बॉर्न, संदेश से आते हैं वॉज बॉर्न बिकॉज आई मैडली एंड डीपली लव इंडिया।
1: क्या बात है,
0: आई लव माई ग्रेट कंट्री भारत। मैं दीवाना हूं इस देश का
1: जी।
0: मैं समझता हूं कि भगवान ने मुझ पर एक बहुत बड़ा मतलब एक एहसान किया कि मुझे ऐसे देश में जन्म दिया जहां इतनी मोहब्बत है, और अगर मैं अन्नू मलिक बना हूं तो इस मिट्टी की वजह से बना हूं
1: जी।
0: और
1: जी,
0: अगर अगला जन्म होता है, अगर कहते हैं है नहीं है पता नहीं, तो मुझे फिर से आप हिंदुस्तानी बनाना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं।
1: ये गाना तो अपनी लेंथ में, अपने अंतरों में भी
0: 11.5 मिनट का गाना है।
1: बताइए,
0: 11.5 मिनट का गाना, रिकॉर्डिंग, और एक अंतरा जेपी साहब ने नहीं काटा, और जेपी साहब ने जो फिल्म बॉर्डर बनाई है जेपी दत्ता साहब ने, जितना उनकी तारीफ की जाए कम है।
1: एक और बात है कि लंबे गाने बनाने के भी आप मास्टर हैं, इसके भी इतना ही बड़ा गाना फिर से आपने एक बनाया।
0: कौन से गाने की बात कर रहे हैं?
1: ये जो LOC कारगिल वाला।
0: हाँ, एक सीमाएं बुलाएं भी लंबा गाना है।
1: हाँ,
0: एक मैं कहीं भी रहूं।
1: जी जी,
0: ये भी मैंने देशभक्ति गाने बहुत बनाए हैं, देशभक्ति गाने।
1: हाँ,
0: तो मेरा जो प्यार है अपने देश के प्रति वो मेरे गानों से नजर आता है। कोई मुझे पूछे आप कितना अपने देश से प्यार करते हो, तो मैं एक जवाब देता हूं, मेरे गाने सुन लो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये जरूर ये बात कहनी पड़ेगी कि सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही एक ऐसा गाना है जो अमूमन ज्यादा सुनाई नहीं देता, तो थोड़ा सा ये गाना सुनाते हैं। क्योंकि संदेश से आते हैं और सीमाएं बुलाएं, अगर ये दो गाने बजाए रेडियो पर, कुछ प्रोग्राम आधे घंटे के होते हैं, कुछ एक घंटे के होते हैं, आपके दो ही गानों में आधे घंटे का प्रोग्राम निपटाया जा सकता है। सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही और संदेश से आते हैं, खत्म, दो आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म। इतने बड़े गाने बनाना आसान काम नहीं है।
0: थैंक यू सर।
1: तो सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही भारतीय सेना को समर्पित, बॉर्डर और उसके बाद LOC करगिल। अनु मलिक ने अपने आप को बार बार साबित किया है। 70 के दशक के अंत में शुरुआत होती है, 80 के दशक में करियर शबाब पर चढ़ता है, 90 के दशक में रेडीज कवर होते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे के जरिए नए संगीतकारों को बताते हैं कि गाने कैसे बनाए जाते हैं।

अनु मलिक, कहानी बाकी है। 12 बजे से लाइव शुरू किया है, 2 बजे तक चलने वाला है। 2:30 पर तिग्मांशु धूलिया लाइव विविध भारती 70वें साल में प्रवेश कर रहा है और जश्न हो रहा है लाइव प्रोग्राम में। ये वो गाना है जो हमारी तन्हाइयों का साथी है।

और ये गाना जिसमें एक फलसफा है, जिसमें एक नाजुकी है, ये गाने हमें गुजरे वक्त में ले जाते हैं,

0: यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है ये कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना है।
1: बहुत याद करता हूँ कैफी अंकल को
0: जी।
1: एक्चुअली जब मैं मिला था उनको, उनकी तारीफ करने पहुंचा था जानकी कुटीर में।
0: अच्छा।
1: कि अंकल आपने जो मदन मोहन जी के साथ काम किया है,
0: वाह वाह वाह,
1: क्या क्या गाने लिखे थे, बड़े मुस्कुराए थे। और एक सिचुएशन है जो भट्ट साहब पिक्चर बना रहे हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, तो कहते हैं कि मैं बोला टीवी की फिल्म है, उस जमाने में इतना अटेंशन नहीं दिया जाता टीवी को, तो भट्ट साहब का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए। महेश भट्ट साहब का नाम, महेश भट्ट साहब की बड़ी अपनी एक, उनका एक मुकाम है, उनकी बड़ी इज्जत है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो बोला

0: संगीत दे रहे हो ना, तो ये मुखड़ा सुनो।
1: अच्छा,
0: मेरे दाएं में बैठे हुए थे वो।
1: हाँ हाँ,
0: मैं बैठा हुआ था आराम से, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी
1: जी,
0: फिर भी बोलते हैं सुनो ये लिखो, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ पल अपना है, हम गुजरे हुए पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो मैंने उसी वक्त उनकी बोल सुनते सुनते ये ट्यून बनाई थी। जब वो ट्यून बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे थे, ऐसे बैठे थे, सामने देख रहे थे, अपनी तरफ मुझे देखा, शोभा हाँ, जी भी थी
1: हाँ,
0: और कहते हैं यार मेरे सामने तुमने बनाई है
1: बिल्कुल
0: ट्यून। मैंने हाँ, बाजा भी नहीं था उस वक्त, वैसे गुनगुना रहा था
1: जी,
0: इसको फौरन रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड कर ली कैसेट प्लेयर के ऊपर, छोटा सा उस जमाने में कैसेट प्लेयर होता था, उसमें रिकॉर्ड कर ली। और मही जी को बोला उन्होंने कि इसने कोई ट्यून सुनाई आप सुनो।
1: हाँ,
0: और वो ट्यून इतनी पसंद आई क्योंकि बोल कमाल के थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: द ट्यून तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो शब्द थे उनके कैफी साहब के, वो ऐसे लाजवाब वर्ड से वो दोनों का तालमेल हो गया। और मही जी ने बोले यही गाना रिकॉर्ड करेंगे, और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और आज भी ऐसा लगता है कि ये गाना यहीं बैठे हैं कैफी अंकल और यहीं बैठे हैं महेश भट्ट साहब, और ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है।
1: कितनी प्यारी बात है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे
0: और यादों के हर जंगल में रहते हैं। ये जो लाइन है, यादों के जुगनू के जंगल में रहते हैं, ये ये ये ये पेंट करना शब्दों के जरिए
1: बिल्कुल,
0: वो कैफी साहब ही कर सकते थे।
1: अच्छा, मैं एक और शायर का जिक्र करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी कि उनसे आपका एक ताल्लुक भी है, वो आपके मामा रहे, मामा है
0: बिल्कुल। वो ऐसे ऐसे गाने लिखे उन्होंने, उनका जो एक कॉम्बिनेशन था, मैं देखिए मेरा बचपन बीता है
1: जी
0: लिस्निंग टू शंकर जयकिशन, क्योंकि मेरे मामा ने गाने लिखे थे, जिया बेकरार है, शाही बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।
1: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं अनु मलिक जी के मामा जी, यानी जाने माने गीतकार
0: हसरत जयपुरी साहब,
1: हसरत जयपुरी की।
0: और हसरत साहब हमारे मामा ही नहीं थे, वो कमाल के एक इंसान थे। मैं उनके पीछे पड़ा रहता था, मुझे इस रिकॉर्डिंग पर लिखे चलो, बल्कि एक मेमोरी बड़ी ये है कि उनके जो रिकॉर्ड आते थे ना
1: जी जी,
0: तो उनके बेटे घर में बैठ के मैं बोलता था यार ये शंकर जयकिशन गाना सुनो, आप 11 साल का बच्चा गाने सुन रहा है, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, या फिर वहां से पुराने पुराने बरसात के गाने सुनते थे।
1: हाँ जी,
0: राज साहब के जितने भी गाने, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, फिर आजा सनम मधु चांदनी में हम, मुझे लगता है ये सब जितने भी गाने थे
1: जिया
0: बनाने वाले, क्या तेरे मन में सब, ये सुनते सुनते मेरे अंदर चले गए थे गाने।
1: हाँ,
0: और उसका नतीजा ये था कि जब उन्होंने भी मेरे गाने लिखे
1: जी,
0: आपको याद होगा राधा का संगम।
1: हाँ,
0: ओ राधा तेरे बिना। अब यहां जो बातें हम करते हैं, हम लोग बात नहीं करते ऑफ ऑल दीज महान सिंगर्स, उनमें से आप जैसे हमने आशा जी के बारे में, आपने मेरा गाना बजाया सोनी बेवाल का
1: जी,
0: तो आपने वो पूछा ही नहीं कि आशा जी का क्या योगदान रहा है मेरी लाइफ में।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, वो बात
0: पहला
1: है।
0: पहला मेरी लाइफ का पहला गाना
1: जी जी,
0: वो संग बाय आशा भोसले।
1: क्या बात है,
0: 1977 मतलब 1975 में आई वॉज ओनली 14।
1: हाँ,
0: 1977 उस वक्त गाना जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, और ये नाम है अंटर वाली, ये सब ये मुझे याद है, जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना, मेरे भी एक दिन आएगा। आशा भोसले जी ने भी डैडी को फोन करके बोला था ये आदमी सीखा है क्या।
1: हाँ हाँ,
0: आशा जी ने पूछा, तो डैडी ने बोला नहीं, ये क्या करता है कि मैं कोई शब्द देता हूं और ये अचानक गाने बना लेता है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो आशा जी बोलती है खड़े खड़े बैठ ये लड़का ये कैसे कर लेता है, तो यहां सरस्वती माँ ही बोल रही हैं। और वो ही नतीजा है कि आशा जी लता जी, आशा जी लता जी, रफी साहब, किशोर कुमार
1: जी,
0: ये सब मेरे गाने गाते थे और मुझे आशीर्वाद देके जाते थे।
1: क्या बात है,
0: यानी कि किशोर दा ने तो मुझे कंपेयर किया था, बोला तुझमें पंचमता की खुशबू आती है, जब मैंने गाना बनाया था बन के नजर दिल की जुमा।
1: हाँ, हाँ,
0: कहने लगी एक दास्ता जो किशोर दा ने गाना गाया था।
1: यस, यस,
0: मैं बोला क्यों क्यों, बोला जितना तेरा मुखड़ा मीठा है
1: हाँ,
0: उतना ही तेरा अंतरा मीठा है। अब ये भी मैंने सीखा कि मुखड़े पर दम मत तोड़ना, मुखड़े पर दम मत तोड़ना, मुखड़े पर अगर तूने दम तोड़ दिया तो अंतरा मजा नहीं आएगा। अ गुड कंपोजर इज वन हु मेक्स अ वेरी गुड अंतरा, ये हमने सीखा था आरडी बर्मन से, ये हमने सीखा था कल्याण जी, यानी जी से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, ये हमने सीखा था शंकर जयकिशन से। आप जितने भी गाने सुनते हो

0: सचिन देव बर्मन के गाने सुन लो, उनके मुखड़े अंतरी सुन लो, मदन मोहन जी के सुन लो, सलील राय के सुन लो, नौशाद साहब के सुन लो, डैडी के सुन लो, रोशन साहब जिनके बारे में हम नहीं बोलते, सी रामचंद्र जी,
1: बिल्कुल
0: ये ऐसे महान लोग हो चुके हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यूनुस भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है मुझे और बहुत दूर जाना है, बहुत मेहनत करनी है, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूं जहां बड़े बड़े मास्टर्स पहुंचे हैं।
1: देखिए
0: मुझे लगता

0: जिनके हम सभी दीवाने हैं और जो ये गाना लिखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस गीतकार की बात कर रहा हूं, पर इस गाने के जरिए आपको लगेगा अंदाजा। जहां तक मुझे अंदाजा है, इनके साथ चार फिल्में की हैं आपने।
1: मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन
2: करें। उनके साथ मैंने गाना, सबसे पहली फिल्म थी वो थी अक्स, ये रात जल्दी की छिपकली रात।
0: हाँ,
2: ना निगली जाए ना उगली जाए।
0: हाँ,
2: गुलजार अंकल
0: जी
2: के बोल ही तरस छीन कर लेके आते थे। तू हवा है फिजा है जमी की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह आ मेरे आशियाने में आ। या फिर जो गाना मेरा फेवरेट है,
0: हाँ,
2: सौ दर्द है
0: सौ राहतें,
2: सौ राहतें सब मिला है मुझे एक तू ही नहीं।
0: क्या गाना बना है
2: इसमें, मैंने जान लगा दी थी। ये वर्ड्स मुझे इतने अच्छे लगे थे, जाने मन का म्यूजिक था
0: जी।
2: अशोका में अगर आप सुनो गाने, रोशनी से भरे भरे,
0: बिल्कुल
2: भरे भरे नैना तेरे, छू कर बोले ना छूना मुझे, क्या लाइन है। तो अक्स हो या फिर फिलहाल उनकी,
0: हाँ,
2: मेघना गुलजार की पहली फिल्म
0: जी,
2: उसका म्यूजिक मैंने दिया। बल्कि मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेजर डायरेक्टर लॉन्च हुए हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ज्यादातर उनकी पहली फिल्म मेरे साथ रही है। ये लोग जानते नहीं है कि मेघना गुलजार की पहली फिल्म मेरे साथ थी
0: जी।
2: फिलहाल तनुजा चंद्रा की पहली फिल्म मेरे साथ थी
0: जी।
2: फराह खान की पहली फिल्म मैं हूं ना
0: जी,
2: जिसे गाने बड़े लोकप्रिय हैं, मेरे साथ थी। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मेरे साथ थी,
0: मुन्ना भाई
2: MBBS
0: जी।
2: तो बहुत से डायरेक्टर्स हैव लॉन्च द कैरियर विद मी एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत से सिंगर्स को हमने डिस्कवर किया है
0: जी,
2: और मैं अपने आप को इतना मतलब भाग्यशाली मानता हूं कि लोग कभी कभी कहते हैं यार तुमने इसको डिस्कवर किया, इसके साथ काम किया। मैं समझता हूं कि ऊपर वाले ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे अच्छे अच्छे लोग से मिला है। ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा काम करूं अगर अच्छे लोग मेरे साथ नहीं आते। मैं बार बार कहता हूं संगीत संगत का काम है
0: जी जी जी।
2: हर आदमी को समझना चाहिए कि संगीत एक आदमी नहीं बनाता
0: जी,
2: उसके साथ बहुत से लोग होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: जो मिलकर जान लगाते हैं।
0: बिल्कुल।
2: और एक ही प्रॉब्लम होता है संगीतकार की, जो मैं फिर आपके विविध भारती पर कहना चाहता हूं कि सबसे अकेला भी एक ही आदमी होता है जब गाना बनता है, वो है संगीतकार। अब आप पूछोगे अनु जी संगीतकार अकेला कैसे होता है, सुनने वालों को बताना चाहता हूं।
0: यस,
2: ये मैंने हर प्रोग्राम में बोला, अभी भी बोलूंगा कि जब निर्माता निर्देशक घर पर आते हैं और कहते हैं हमें आपको साइन करना है, फिर निर्देशक सिचुएशन बताता है, उस वक्त सबसे अकेला महसूस जो अकेला होता है वो आदमी, वो होता है संगीतकार। उसके उस वक्त पर ना लिरिक राइटर होता है, ना उस वक्त सिंगर होता है, ना उस वक्त साजिंदे होते हैं, कोई नहीं होता। सामने डायरेक्टर बैठा होता है,
0: हाँ,
2: और बोलता है मेरी सिचुएशन। एक छोटे से एग्जांपल देता हूं
0: जी,
2: फिल्म है मुन्ना भाई MBBS।
0: यस,
2: गाना कहते हैं हमें एक गाना चाहिए। मैं बोला गाना पिक्चराइज कहां किया जाएगा।
0: हाँ,
2: और उनका डायलॉग होता है गाना अस्पताल में पिक्चराइज किया जाएगा। आप मुझे सोचिए अगर आपको बोला जाए कि अस्पताल में गाना पिक्चराइज हुआ,
0: हाँ,
2: हाउ वुड योर रिएक्शन भी, आप क्या गाना सोचेंगे।
0: हाँ,
2: हॉस्पिटल रात को गाना है। अब क्योंकि गाना लोकप्रिय हो चुका है,
0: हाँ,
2: तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं
0: जी।
2: लेकिन जब वो संगीतकार के सामने वो सिचुएशन दी जाती है, और मैं ही नहीं ऑल द कंपोजर्स इन द वर्ल्ड, द लोनलीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट वाइल मेकिंग अ सॉन्ग इज द कंपोजर।
0: यस यस।
2: और वहां डायरेक्टर बैठे हुए हैं राजकुमार हिरानी, और मैंने गाना मैंने तर छेड़ी, तो राजकुमार हिरानी जी ने डॉक्यूमेंट किया है ये।
0: हाँ,
2: बोला भी है कि अनु मलिक उठे और अपने हॉल में 15 मिनट चले आए। मैं दरवाजे से देख रहा था अनु मलिक यहां चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक 15 मिनट बाद आए और बोलते हैं एक मैंने चीज सोची है।
0: अच्छा।
2: तो 15 मिनट में और मैंने ऐसे ही गाया मैंने एक वर्ड देख ले आंखों में आंखें। अब ये गाना बना कैसे।
0: हाँ,
2: उन्होंने एक लाइन बोली थी राजकुमार हिरानी साहब ने, कि एक आदमी 12 बजे और 4 बजे के बीच में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहिए उसको।
0: जी जी जी जी।
2: क्योंकि 4 बजे वो गुजर जाएगा, ही विल डाई, ही इज गॉट अ

0: टर्मिनल डिजीज
1: राइट राइट,
0: मगर उसको वो हर खुशी मिलनी चाहिए बिटवीन 12 and 4। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं सॉफ्टली शुरू करूं और भी पेशेंट्स हैं तो मैं लाउडली नहीं शुरू करूंगा, लाउडली बाद में होगा। तो मैंने ऐसे शुरू किया, देख ले आंखों में आंखें डाल दी गले, जीवन के बल है चार, याद रख मरने से पहले जीना
1: सीख ले,
0: सीख ले। तो आज ये गाना लोग सुनते हैं तो पूछते हैं बना कैसे, तो उस वक्त जो संगीतकार अकेला होता है वो संगीतकार ही जाता है, और वो मेरी बात नहीं है, पंचमदा भी अकेले होंगे, शंकर जयशन भी अकेले होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अकेले होंगे, मेरे फादर भी अकेले होंगे, और इनको मैं इसलिए सलूट करता हूँ और बार बार घूम के इसी बात पर आता हूँ कि आप दुआ करो कि मैं इनके करीब थोड़ा भी आ सकूंगी। ये महान लोग हैं, आप आज भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने ऐसा कमाल का कुछ काम किया है जो इनके करीब आ सके।
1: मुन्ना भाई MBBS, ये वो गाना है जो विविध भारती पर अक्सर सुबह बजता है और लोगों से ये कहता है कि सुबह हो गई जाग जाओ, हनु मलिक का गाना सुन लो, जॉगिंग करो, चाय पियो।

0: するほどいマモ
1: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार

0: का जश्न, जानी मानी संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: गुलजार साहब के साथ के चार गाने बजाए मैंने,
2: बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि गुलजार साहब जितने अच्छे राइटर हैं उतने ही आउटस्टैंडिंग लाजवाब इंसान हैं, और इतना इनकरेजिंग लिरिक राइटर, इतने इनकरेजिंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा
1: जी।
2: बहुत ही प्यार करने वाले हैं
1: बिल्कुल,
2: और इतना कुछ कर चुके हैं, इतना उनसे मैंने चीज सीखी रहा हूं, नम्रता, मोहब्बत, अपने काम को कितना प्यार करना चाहिए, कितनी शिद्दत से, लगन से काम करना चाहिए। जितने भी गाने, और मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, आज भी मेरा फोन उठा लेते हैं।
1: हाँ।
2: और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुलजार साहब डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं।
1: कितना बड़ा चैलेंज था कि उनके अल्फाज आपके पास आ रहे हैं और ट्यून बनाना है,
2: क्योंकि मेरे दिमाग में तो अचानक मदन मोहन जी याद आ गए,
1: बाबा
2: पंचमदा याद आ गए, और मैंने बोला कि ऐसे लोगों के साथ काम करने वाला इंसान सामने बैठा हुआ है, खुद एक कमाल के डायरेक्टर हैं, स्टोरी स्क्रीन पे उनके आंधी फिल्म की आप फिल्म देखो, म्यूजिक सुनो, तब मुझे पता लगा कि मैं जिसके सामने बैठा हूं मुझे जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं बार बार कहता हूं उनके बोलों में इतनी ताकत और शिद्दत है।
1: हाँ।
2: कि बोलों में तर्ज छुपी हुई होती है।
1: क्या
2: उन्होंने लिखा कि तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं। अचानक मेरी ट्यून को सुनते सुनते तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ, टूर रूरा
1: बाबा।
2: और गाने बनते गए, रिकॉर्ड होते गए, और आज भी अक्स फिलहाल फिजा जाने मन अशोक का जब बजते हैं गाने तो लोग उनको अपने सीने से लगाते हैं। ये जो गाना भी आपने बजाया, चित्रा जी याद आ गई, क्या गाया
1: बिल्कुल।
2: रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, तू जो हमने फ्लूट्स यूज किए इसके अंदर।
1: हाँ।
2: तो माय गॉड आज भी, और क्या गाया, क्या क्या जान लगाई
1: अनु जी ने। अब जो मैं बजाने वाला हूं ना, जितने लोग यहां मौजूद हैं, जितने लोग कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, ये सारे लोग झूम उठेंगे,
2: डडांग
1: डडांग, इसके बाद आएगा
2: माय गॉड,
1: डडांग इसके बाद आएगा।

0: प्रति की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: अनु जी, एकदम अलग दौर के गानों की बात मैं करने
2: जी सर,
1: ये जो कमाल है ये क्या था? एक तरफ अगर तुम मिल जाओ, दूसरी तरफ भीगे हो तेरे।
2: वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है
1: जी,
2: वक्त के साथ इंसान को तर्जें बनानी पड़ती हैं। नए निर्माता आते हैं, नए निर्देशक आते हैं, अपनी अपनी अपने अपने इमोशंस लेके आते हैं।
1: हाँ।
2: नए हीरोज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं।
1: हाँ।
2: वो अपने एक अंदाज लेके आती हैं। जनरल पब्लिक जो है एक चेंज मांगती है। हमारे अंदर एक कहावत है ना, आपको परिवर्तन ही संसार का नियम है
1: जी।
2: और अगर आप अपने आप को उन्हीं यादों में रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: आपको हर वक्त बदलना पड़ता है, हर वक्त नई चीज करनी पड़ती है, हर वक्त ऐसे गाने पब्लिक के लिए बनाने पड़ते हैं जो उनको देखो। हर हिंदुस्तानी के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है, बड़ा मेलोडिक होता है। वो गाना गा सके या ना गा सके लेकिन वो गाना समझता बहुत है।
1: बिल्कुल,
2: वो गुनगुना लेता है उसके अंदर। अगर आप ऐसा गाना बना दो जो उनके दिल की बात है तो वो गाने को सीने से लगा लेंगे।
1: एक चीज जो मैंने देखी है कि आपकी पूरी संगीत की यात्रा में जहां मौका मिलता है वहां मेलेडी का दामन पकड़
2: के वही बिल्कुल गुनगुनाने लायक वाले गाने नहीं होंगे तो गाना में दम ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा, फिर बार बार कहूंगा, हर हिंदुस्तानी के अंदर संगीत कूट कूट के भरा हुआ है।
1: यस,
2: किसी भी प्रांत में चले जाओ, महाराष्ट्र में देख लो, गुजरात में देखो।
1: हाँ।
2: लोकगीत जो है
1: बिल्कुल,
2: गुजरात में भी क्या टैलेंट है।
1: यस,
2: आप चले जाइए साउथ में।
1: हाँ।
2: आप चले जाइए पंजाब में, आप चले जाइए राजस्थान में, आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए। आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में कि जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है? मैं समझता हूं कि लाजवाब सिंगर्स, लाजवाब कंपोजर्स, लाजवाब म्यूजिशियंस, लाजवाब टैलेंट है हमारे देश में। हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश है जहां इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, गली गली में है। उनमें से मुझे चुनकर सरस्वती माँ ने अगर अनु मलिक बनाया है तो मैं उनका जितना शुक्र करूंगा कम है।
1: बिल्कुल,
2: मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं।
1: यस,
2: कान में 2 साल की उम्र से अगर आप सुरी सुर सुन रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है।
1: लेकिन अनु जी, एक गाना ऐसा जो 7 समुंदर पार तक भी गया था, जरा वो गाना बजा देते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी इंतजार कर रही हैं।

0: यस अनु जी, चाइना गेट बहुत ही अलग तरह की
1: ये गाना, एक ही गाना था चाइना गेट में, एक ही गाना चाहिए था। इट वॉज अ मेल ओरिएंटेड फिल्म।
0: हाँ,
1: और बड़ा चैलेंज था। राजकुमार संतोषी साहब ने कहा कि यार कोई ऐसा गाना बना दो,
0: हाँ,
1: उनके फाइनेंशियल भरत भाई भी आए थे,
0: जी जी,
1: कि बड़ा एक लोकप्रिय गाना बन जाए।
0: जी,
1: तो मैंने ये सोचा कि छम छम, ये बना भी कैसे, मतलब छम छम छम छम सब बोलते हैं।
0: हाँ,
1: चूड़िया खनकी, खनकाने वाले आ गए, छम छम बाजरे पाए लिए। लेकिन मैं बोला राजी, मेरे दिमाग में मुखड़ा आ रहा है। छम को छम्मा कर, छम्मा छम्मा। लेकिन जब ट्यून बनी ना, ट्यून सुन के वो गदगद हो गए।
0: हाँ।
1: और समीर जी ने फिर उस गाने को जो लिखा है,
0: जी जी,
1: समीर अंजान साहब,
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। तो गाना फिर जब बन गया और रिकॉर्ड हुआ, फिर जो पिक्चराइज हुआ, तो मेरा गाना ये, मैंने आपको पता, बड़ा शौक है, आपने समंदर पार बोला, मैडम एक्चुअली बड़ा इसमें मेरा ये अजीब बिटर स्वीट मेमोरी है।
0: बिटर स्वीट,
1: हाँ, स्वीट मेमोरी है कि गाना इतना लोकप्रिय हुआ।
0: बाद में हॉलीवुड की फिल्म,
1: हॉलीवुड में जब गया, वहां जब मैं एलए में था, सैन फ्रांसिस्को में, तो मैं एक थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरा गाना बज रहा है छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी बाजे रे, निकोल किडमैन पर। वहां सबका सिंगर का नाम दिया, लिरिक राइटर का नाम दिया, मेरा ही नाम नहीं है।
0: अरे अरे अरे,
1: और मुझे बड़ा रंज हुआ है, क्योंकि जब हमने इतना मेहनत की मुखड़े पर, अंतरे पर, ट्यून पर,
0: हाँ,
1: कोई बात नहीं, लेकिन हमें हिंदुस्तानियों का प्यार मिल गया, वही काफी हमारे लिए।
0: बिल्कुल,
1: मैं बाहर नहीं देखता हूँ, हमारा हिंदुस्तान इतना महान देश है कि यह हर एक हिंदुस्तानी आपको सीने से लगा लेता है, उससे बड़ा, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
0: Yes, और अनुजी, अब एक ऐसी फिल्म जिसमें इतनी स्वीटनेस थी इन गानों में, और एक नई गायिका को लेकर आया।

0: अनु जी, जोश फिल्म की बातें हो रही हैं, मंसूर खान की फिल्म, और संजीवनी को आपने यहां पर इंट्रोड्यूस किया था, और
1: ये फिल्म थी करीब
0: जी, हाँ सॉरी करीब, करीब
1: हाँ, ये जोश की नहीं, ये फिल्म थी करीब, विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी।
0: हाँ,
1: और वीर चोपड़ा जी जो अभी नहीं रहे याद आते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो उन्होंने कहा कि हमारी नई हीरोइन है और एक नई आवाज चाहिए फीमेल के लिए, और बहुत ऑडिशनिंग हुई और संजीवनी जी से मिलाया उन्होंने मुझे, इनकी आवाज बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इमोटिव आवाज है, बहुत शिद्दत से गाने वाली इंसान है, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी गाने ये आज इतने चलते हैं गाने अभी भी, कि अगर मैं शो पर परफॉर्म करूं तो लोग चाहते हैं कि ये गाने सुनाए जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा असल में ये हुआ कि ये दोनों करीब और जोश इसलिए मिक्स हो गई कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं जोश और अकेले हम अकेले तुम की भी बातें करूं, और अकेले हम अकेले तुम में
1: बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं फिर तेरी कहानी याद आई, जोश और अकेले अकेले तुम की बात कीजिए, मंसूर खान साहब याद आते हैं मुझे फिल्म जोश के, उनकी पहली फिल्म मैंने की थी अकेले हम अकेले तुम, और उसके गाने बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, या फिर राजा को रानी से प्यार हो गया, या फिर दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं हम, दिल को कभी दिल हम

0: को कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ये गाने सब आज इतने लोकप्रिय हैं। और मंसूर खान ने जो काम निकाला, नासिर साहब के बेटे हैं, सुरीले इंसान है, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मजरू अंकल ने भी जो काम किया है उसमें, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिनका आपने नाम अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन अकेले हम अकेले तो में जो मजरू साहब ने काम किया मेरे साथ, ओए हो क्या बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं।

एक तरफ मजरू साहब का ये गाना और दूसरी तरफ एक ऐसा गाना जो बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फिल्म का नाम है डुप्लीकेट।

0: सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। विविध भारती की सालगिरह का जश्न अनु जी के संग हो रहा है और दो गानों की बातें करेंगे और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। ये गाना जिसके गाने के बनने की कहानी चाहिए हमको, जिस तरह के तबले आते हैं हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक के लिए ये नया था। बताइए अनु जी,
1: ये आपने कमाल कमाल के इस्तेमाल किए हैं और मेरे जितने भी गाने आपने बजाए हैं उसकी कहानियां सुनी है आपने
0: जी,
1: इसका बड़ा कमाल काम है। ये पिक्चर बन रही थी फराह खान की पहली फिल्म
0: जी,
1: और फराह खान कम्स आउट विद एन आइडिया कि यार अन्नू इस फिल्म में
0: हाँ
1: कवाली करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कवाली बनाना इतना आसान नहीं है। कवाल को मैं जितने भी कवाल से हैं हिंदुस्तान में उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कवाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
1: तो उस समय नहीं मुझे कवाली चाहिए
0: जी,
1: तो मैं बोला अगर कवाली करेंगे तो मेरे स्टाइल में करेंगे।
0: हाँ।
1: तो जावेद साहब सामने बैठे हुए थे
0: जी,
1: व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट डू यू मीन कवाली योर स्टाइल।
0: हाँ।
1: अरे सर लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्सअप।
0: अरे बाप रे
1: विकेड, मैंने ऐसे ही बोला। जावेद साहब भड़क गए, उड़ गए वो। बोला मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये कवाली नहीं हुई।
0: हाँ।
1: तो फराह खान पकड़ के ले गया।
0: हाँ।
1: तो मैंने एक पीस सुनाया उनको। इतना सुनाया तो जावेद साहब बोलते हैं ये तो म्यूजिक पीस है ना। मैंने सर नहीं सर, फरा बोलती इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा बता, बड़ी छोटी जगह स्टकाटो है ये।
0: हाँ।
1: लगाड़ो भी लगाड़ो दारी रा रा रारी रा, ऐसा नहीं है तारी नांदी तारी नांदी तारी नांदी दान। तो इतनी छोटी जगह पर उन्होंने जावेद साहब ने जो वर्ड लिखे, देखो बेहारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: एंड वहां फिर वो लिखा है तुमसे मिलकर मैंने ट्यूशन दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा। तो उन्होंने लिखा तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ, सामने लिखा उन्होंने। अब गाने की जब रिकॉर्डिंग आई तो मैं चाहता था, उस जमाने में बड़े बड़े कव्वाल थे उनके साथ मैं काम करना चाह रहा था
0: जी,
1: नई डायरेक्ट

0: बजट का प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये मुश्किल होगा कवाल्स को लेके आना। तो कुछ मैंने अपने साजिंदे को बोला कि उन्होंने बोला कि यार माही में कोई है साबरी ब्रदर्स बोलते हैं बहुत गुनी है, तो मैं ये जगह देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने। वो आए, उन्होंने बहुत मेहनत की और आकर उन्होंने ये गाना गाया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है कि रिदम क्या होगी,
1: हाँ ये रिदम बिल्कुल
0: तो रिदम कैसे होगी, तो मैं बोला कव्वाली के अंदर एक ढोलक तबला जाता ना टिपिकल ता ता ता ता ता ये हो रहा
1: है
0: ये ठीक होगा। आई वांट टू चेंज दिस टेक, आई वांट टू चेंज इट।
1: हाँ
0: तो मैंने बोला भाई साहब मेरे बोला भाई साहब तबले बुलाते हैं।
1: हाँ
0: तबले मतलब 20 तबले
1: 20 तबले
0: हाँ
1: हाँ
0: मगर सिर्फ उनकी चाटिया बजाएंगे बाया नहीं बजाएंगे।
1: ओके
0: मैं तो बेस गिटार तनांग चिक दुम तंग कचिक दिंग तनांग चिक दिंग तंग कचिक दिंग तनांग चिक दिंग। अब ये साउंड जब बजा है रिकॉर्ड हुआ है तो धारा नंद धारा नंद धारा नंद धारा नंद धाम बाम बाम बाम बाम बाम बाम तनांग कचिक दिंग तंग कचिक दिंग तना। और ये भाई साहब हमारे इतना गुनी इंसान रंजीत जी, उन्होंने बोला अन्नू जी आपने ये बात जो मुझे बोली है
1: हाँ।
0: इस पर छोड़ दीजिए मैं लगता हूँ इसके ऊपर
1: जी।
0: और मैं भाई साहब लगे उस पर
1: जी।
0: और हम बैठे हैं रात से सुबह हो गई
1: जी।
0: ये आइडिया उनको बजाते बजाते उसके जो साउंड है था ना उसके जो चाटी का साउंड उसको ट्यून के सुर में लाना था। कौन से कौन सा जो मुखड़ा है तुमसे मिलके दिल का है जो हाल गया। अब ये इसी सुर में दूरी दूरी दूरी दूरी दूरी दूरी दारी रारी रारा राम ये तनांग चिक दिंग कचिक दिंग तनांग। तो बेस गिटार लेके साउंड लाके स्ट्रिंग्स डाल के अचानक फिर गाना बना हुआ वहां साबरी ब्रदर्स वहां सोनू जी सब मिलकर जो फिर वो जो हरा नाची है
1: क्या बात है।
0: हाँ उससे बोले ये क्या गाना मिल गया और गाना उसके बाद तो कव्वाली का ट्रेंड शुरू हो गया था।
1: वाह
0: बहुत मेहनत की मैंने इस गाने पर। आई विल टेल यू समथिंग उसके अगले बनाते बनाते जावेद साहब ने कमाल लिखा पिक्चराइज मेरे चुके हुआ था और सब पर जो पिक्चराइज किया फरहान ने इट बिकेम अ मैजिकल सॉन्ग।
1: बिल्कुल बिल्कुल इसका ये ओपनिंग पीस सुनते हैं और उसके बाद एक बहुत ही नशीले गाने की बात ना।

सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। और अब इस गाने की बात, जिसके बिना ये गाना अधूरा, ये कार्यक्रम अधूरा। ये गाना ये दिखाता है कि अनु मलिक खुद को रीडिस्कवर करते रहते हैं, बदलते वक्त के साथ खुद को साबित करते रहते हैं। 70 के दशक के आखिर से शुरू हुआ ये सफर, 80 के दशक पर परवान चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होता है, 2000 के दशक में वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे, यानी नई सदी में भी अनु मलिक का जादू कायम।

0: नए गीतकार वरुण ग्रोवर, शरद कटारिया की फिल्म, बताइए।
1: सबसे ज्यादा श्रेय जाता है YRF को
0: जी,
1: जिसके हेड हॉन्चो हैं हमारे फेवरेट्स, हम सबके फेवरेट आदित्य चोपड़ा साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जिनका मुझे बुलावा आया। वो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहते इस बारे में, बोलते मेरे बारे में ज्यादा मत बोला करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज देके बुलाया। और शरद कटारे साहब की स्क्रिप्ट सुनकर मैं गदगद हो गया, कमाल की स्क्रिप्ट
0: जी।
1: आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर ने जो काम किया है इसमें
0: जी,
1: मनीष शर्मा प्रोड्यूसर थे इसके, ये दोनों आए मेरे पास और आदित्य साहब ने बोला कि अगर आप इनको कन्विंस कर जाएं तो ये पिक्चर आपकी है ना, ये गाना करते हैं। मुझे जब सिचुएशन बताई तो मैं समझा, इन्होंने बताया कि हरिद्वार का सेटिंग है ये, मैं समझा पता नहीं मेरे दिमाग में बनारस क्यों चल रहा था। और मैं अकेला रूम में बैठा हुआ तर सोच रहा था, चार घंटे चले गए, पांच घंटे चले गए, छह घंटे चले गए, कोई रिएक्शन नहीं। तब दरवाजा खुलता है और शरद कटारिया साहब आते हैं, मनीष शर्मा आते हैं। मैंने ट्यून सुनाई, पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर शरद जी बोले अगर हम कोई नया राइटर लाएं इसके अंदर तो आपको ठीक चलेगा। हमने पहले सोचा था, मैंने बोला गुलजार साहब होंगे
0: जी,
1: बोले नया राइटर जरूर ले आइए प्लीज, आई एम गेम टू वर्क विद एनीबडी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि ये जो शब्द वरुण ग्रोवर ने मुझे दिए
0: जी,
1: ये मोह मोह के धागे,
0: बाद में तेरा चाव लगा के जैसे घाव लगा, वो भी
1: उन्होंने लिखा था
0: जी।
1: मैंने बोला ये लाजवाब राइटर है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
0: वाह वाह वाह।
1: और जब तर्ज बनी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मुझे वो सिंगर्स चाहिए जो मेरे साथ बैठे रिहर्सल करें। और इसका तो एक वीडियो भी बनाता है रिहर्सल का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है
0: जी जी।
1: कितनी मेहनत की हमने इस गाने के ऊपर, गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जो पिक्चराइज हुआ, और आज मैं आपको बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
0: बिल्कुल
1: इस फिल्म को, इस गाने को, द बेस्ट लिरिक्स एंड द बेस्ट सिंगर मिला। ये अलग बात है कि अन्नू मलिक को भूल गए मुझे नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट फिल्म भी मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार।
0: यस यस यस।
1: एंड 2016-17 की बात है ये,
0: और उस फिल्म के एक गाने में आपने 90s को रिलीव किया था, एक झलक सुनवाता हूँ।
1: तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द करारा।

0: सभी आपके दीवाने। बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि मैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मुझे अन्नू मलिक बनने का मौका दिया। मैं अपने देश का बड़ा आभारी हूं जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जहां मुझे ये कला मिली है। हर सुबह उठ के इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और ऊपर वाले से कहता हूं कि भगवान अगर दूसरा जन्म है तो इसी देश में हो, हिंदुस्तान में हो, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नाम हुआ है तो इसी देश से हुआ है। मैं अपनी जनता का बहुत बड़ा आभारी जिन्होंने मुझे हर तूफान में हर वक्त संभाला है।
0: अनुजी,
1: मुझे मेरे गानों को प्यार दिया है, मुझे इज्जत दी है। आज जितने भी मैं विविध भारती में आया हूं, जितने भी मुझे यहां लोग मिले हैं
0: जी,
1: ये सब मेरी बहनें जिनको मैं देख रहा हूं, इतना प्यार से गाने नाच रहे थे और इतने दिल से रिएक्शन दिया है कि विविध भारती का मैं आभारी हूं कि आपने मुझे याद किया
0: जी।
1: आपका यूनुस भाई जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और मेरा दिल कहता है कि हमारी जनता को यह प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा और जरूर सीने से लगाकर इसको एक यादगार प्रोग्राम समझेंगे। 70 years इज नो मीन अचीवमेंट।
0: यस,
1: तो मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी 11 को अन्नू मलिक 50 साल कंप्लीट कर रहा है इंडस्ट्री में,
0: तब भी बैठेंगे और लंबी बातें।
1: और 14 साल की उम्र से शुरू हुआ वह आदमी अपने बाजे को लेकर चला था मैं, और एक ही शब्द बोलता हूं जो आज भी बोलता हूं, मैं गलियों का राजा, मेरी दौलत ये मेरा दिल है और ये मेरा बाजा।
0: क्या बात है, क्या बात है। एक आवाज पर मेरी आप विविध भारती के स्टूडियो में आ जाते हैं और आप इस सम्मान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात कभी भी आपको विविध भारती बुलाओ, बस एक बार कहना होता है। अनु जी,
1: नाम क्या है इसका? विविध भारती
0: जी।
1: भारत जहां होगा, जहां भारत शब्द कहलाया जाएगा, वह अन्नू मलिक जाके अपना माथा टेकेगा।
0: वाह, शुक्रिया। बिल्कुल समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत लेते हैं, आप आए, बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 3 अक्टूबर का दिन विविध भारती के लिए बहुत मायने रखता है। आज है विविध भारती का स्थापना दिवस। 3 अक्टूबर 1957 से शुरू हुआ ये सफर अब अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। विविध भारती ने स्वस्थ मनोरंजन की एक समृद्ध परंपरा कायम की है और कितने तो अलबेले हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के नाम, जैसे फौजी भाइयों का कार्यक्रम है जयमाला। पूरी दुनिया में फौजी भाइयों को समर्पित ये अपनी तरह का इकलौता कार्यक्रम है। यही नहीं, जानी मानी हस्तियां विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश करती हैं, जिसमें वो फौजी भाइयों से अपने जीवन की कहानियां बताती हैं। चिट्ठियों का कार्यक्रम मन चाहे गीत, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार, नाटिकाओं का कार्यक्रम हवा महल। विविध भारती सिर्फ एक रेडियो चैनल नहीं है, बल्कि एक संस्कृति है, हमारे जीवन का हिस्सा है।

जाने माने फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि विविध भारती भारत के मध्यवर्गीय जीवन का पार्श्व संगीत है। कितनी सुंदर बात थी ये। अगर आप किसी शहर में हों तो आपको हर घर में विविध भारती गूंजता हुआ सुनाई पड़ सकता है। एक जमाना था जब विविध भारती आपके ट्रांजिस्टर पर गूंजा करता था। आज डीटीएच, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, न्यूज ऑन एआईआर और वेव ओटीटी के जरिए विविध भारती पूरी दुनिया में उपलब्ध है। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, दिन के किसी भी समय विविध भारती आपका साथ निभा सकती है। इसके अलावा चिट्ठियां तो विविध भारती में आती ही हैं। अब विविध भारती ने सोशल मीडिया का हाथ भी पकड़ा है। कुछ कार्यक्रम सोशल मीडिया के सहारे पेश किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे फोन इन कार्यक्रम हैं, जिसके जरिए श्रोता हमसे सीधे जुड़ते हैं। यानी समय के साथ कदम ताल करती हुई आगे बढ़ रही है आपकी अपनी विविध।

भारती में गाने ही नहीं बल्कि समसामयिक जानकारियां पेश की जाती हैं, मशहूर हस्तियों से मुलाकातें, विविध भारती में साहित्यिक कार्यक्रम भी होते हैं। एक तरह से विविध भारती अपने समय और समाज का बेमिसाल दस्तावेजीकरण कर रही है। न जाने कितने दशकों से हॉस्टल में रह रहे नौजवानों के लिए विविध भारती उनके परिवार की सदस्य है। न जाने कितने अकेले लोगों का साथ निभाती है विविध भारती। देश विदेश में विविध भारती की आवाज गूंजती है और यूं लगता है जैसे हमारा कोई अपना हमारे साथ है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारा साथ निभा रहा है। 70 वर्ष का ये गौरवशाली सफर आपके बिना पूरा होना संभव नहीं था, इसीलिए हम विविध भारती नहीं कहते, हम कहते हैं विविध भारती परिवार। तो पूरे विविध भारती परिवार को विविध भारती की सालगिरह बहुत मुबारक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार।

0: पार।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि

0: इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75 से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अभी था, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4 साढ़े 4 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना, नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम

0: सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल आवरसेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरी वन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
2: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉ हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में शुरू होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज लेकर आई हूं एक खास मेहमान। वो है जाने माने लेखक, निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया जी। तिग्मांशु जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं।
1: नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
0: तिग्मांशु धूलिया एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता जिनकी कलम में यथार्थ की कहानियां हैं।
2: 28 बरियर सात पानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन माने, कौड़े ने पूछा ये तीन स्टेट की पुलिस को चकमा देके एक किडनैपिंग कर लाई तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा।
0: जिनकी कैमरे में जिंदगी की सच्चाई है, अभिनय में किरदार की धड़कन, गैंग्स ऑफ वासीपुर, शाहिद, माझी द माउंटेन मैन और भी बहुत सारी फिल्में।
3: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: हासिल से हासिल हुआ कामयाबी का सफर।

0: मान सिंह तोमर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण कमल दिलाया। फिर तो साहब बीबी और गैंगस्टर, शागिर्द, बुलेट राजा, राग देश, मिलन टॉकीज जैसी बहुत सारी फिल्में उनके निर्देशन और लेखन से आईं। तो आइए एक बार फिर स्वागत करें दिग्मांशु धूलिया का। दिग्मांशु जी, विविध भारती का ये 70वां स्थापना दिवस है और रेडियो से आपको बड़ा प्यार है, तो बताइए आज इस जश्न के मौके पर हमारे देशभर के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो मुझको इस अपने इस वर्षगांठ में बुलाने के लिए विविध भारती में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। ये मेरी पहली बार नहीं है, मैं कई बार 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ।
0: जी जी।
1: तो पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बार बार बुला लेती हैं, इसका पता नहीं क्या कारण।
0: क्योंकि आपको रेडियो से बहुत प्यार है और हम सबको आपसे।
1: हाँ, तो रेडियो का ये कि बचपन में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही था, ट्रांजिस्टर जिसको हम अपने सोते वक्त तकिए बगल में लगा के सो जाते थे, और हवा महल और फिर बहुत सारे वो बिना का गीत माला, और फिर उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम भी होने लगे, मोदी कॉन्टिनेंटल और ये वो टायर
0: छाया गीत
1: और तमाम। और तो एक तो भाषा अच्छी होती थी बहुत रेडियो की उस वक्त, उसने बहुत दिया
0: जी।
1: और हमें सिर्फ अपने वक्त के गानों से, अपने वक्त में जो हो रहा है सिर्फ उससे ही नहीं, जो पहले भी हो चुका है, जो गाने या जो उस तरह के कल्चरल मोमेंट्स जो है, जो इतिहास में पहले भी दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में भी पता चलता था। संडे को कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे जो प्रायोजित होते थे
0: जी।
1: और बहुत बहुत इट इज स्टिल ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत कुछ सिखाया है रेडियो ने।
0: जी बिल्कुल। तो रेडियो सुनते सुनते आपने अपने भीतर सपना कैसे बुन लिया एक निर्देशक बनने का, एक्टर बनने का और लेखक बनने का, कैसे आपके भीतर बीज बन पा?
1: वो रेडियो की वजह से नहीं हुआ। रेडियो उस वक्त हम लोग जब छोटे थे तो हम इलाहाबाद में पढ़ा बढ़ाऊ में, तो हमारा एक

0: भी होता था, तो फिर वो युवाणी में पहले तो जो बच्चों का कार्यक्रम होता था संडे को,
1: बाल संग नन्ही दुनिया वगैरह,
0: उसमें उस पर छोटे छोटे हम लोग जाते थे वहीं पे आकाशवाणी, तो वहाँ पे भैया भैया
1: बड़े भैया जी,
0: बड़े भैया जी और दीदी होती थी
1: जी जी,
0: और सारे बच्चे होते थे, कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, कुछ क्विज होता था, वहां से शुरुआत की मैंने। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो युवाणी में कई बार पार्टिसिपेट किया
1: जी,
0: और उसकी वजह से फिर थिएटर में घुस गया। मेरा एक जरिया बना, पहला जरिया तो रेडियो ही बना कि अपनी अपने अंदर थोड़ी बहुत जो भी कला थी बचपन में वो होती थी उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म जो पहली बार मुझको मिला वो ये
1: जी रेडियो ही मिला।
0: बिल्कुल बिल्कुल रेडियो ही मिला।
1: और विविध भारती से हम सबको खासा लगाव रहा है, हम सबका बचपन ऐसे ही बीता है कि हम विविध भारती सुन सुन के अपने भीतर सपनों के बीज रोपते रहे हैं। आपने इलाहाबाद का जिक्र किया तो इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं, हम तो सुनते हैं कि आप इलाहाबाद में ही रहते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं शूट करते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं, तो कोई खास याद इस वक्त हो आपके जहन में तो आप साझा करना चाहेंगे विविध भारती के श्रोताओं से।
0: मैं जो भी हूँ शहर की वजह से हूँ,
1: और क्या
0: वो शहर जो है, मैं एक सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ, और जिस तरह का माहौल मिला दिया उस शहर ने मुझे, तो वो उसी की वजह से मैं जो भी हूँ, और भी सभी लोग को अपना शहर पसंद आता है मैं यहाँ, लेकिन इलाहाबाद बहुत खास है, तो जो लोग इलाहाबाद में नहीं भी पैदा हुए वो भी चुप हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद से, तो समझ जाते हैं वो लोग बैकफुट में होना चाहिए उनको।
1: जी बिल्कुल, इलाहाबाद संगम, नौका विहार, वहाँ का मन कामेश्वर मंदिर के किनारे से।
0: मैं तो अभी परसों ही लौटा इलाहाबाद से डुबकी लगा के।
1: अच्छा, तो अभी भी जाते हैं तो संगम तीरे जाते हैं, और
0: पितृपक्ष शुरू हो गए थे इसलिए गया था।
1: जी जी, इलाहाबाद की एक बड़ी मशहूर शूटिंग है, बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसने आपको बहुत कुछ हासिल कराया, और आप फिर कहेंगे कि हमने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं जो आपकी ये बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए बताइए कि फिल्म हासिल जो आपकी कामयाब पहली फिल्म थी, उसके पहले तो आपने शुरुआत कर दी थी।
0: नहीं, हासिल मेरी पहली फीचर फिल्म हासिल ही थी।
1: अच्छा, तो हासिल से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई। हमने सुना है कि फिल्म हासिल ने आपको कामयाबी दी और साथ में उसने आपको रुलाया भी था, वो रोने वाली कौन सी घटना है, जरा वो घटना बताइए हमें।
0: जैसा मैंने कहा इलाहाबाद टेस्ट करता वो शहर, वो मुश्किल शहर है, अगर आप वहाँ पे किसी तरह का वृक्ष बोना चाहें या पौधा बोना चाहिए, पर उस शहर की मट्टी पूछती है कि तुम्हारा औकात है करने की।
1: जी,
0: तो
1: क्या बात है।
0: उसने, उस शहर ने मुझे टेस्ट किया, तो मैं तो पहली फिल्म थी तो मैं बहुत एक जवान बहुत एक्साइटेड बच्चे की तरह अपना शहर जा रहा हूँ, शूटिंग करूंगा अपनी पहली फिल्म की। क्लाइमैक्स मैंने कुंभ मेले में ऑलरेडी सेट कर दिया था, जिसको मैं पहले शूट कर चुका था, 2000 वाला जो कुंभ मेला था
1: जी।
0: तो बट वहां के लोग जो थे उनको लगा कि मैं शहर को, वहां की यूनिवर्सिटी को एक बहुत गलत अंदाज से पेश कर रहा हूं, उनको ऐसा लगा
1: जी।
0: तो मैं उनसे कहता रहा भाई रामायण में रावण भी है, राम भी है, मैंने रावण की सीन पहले शूट कर ली है, तो उन्होंने वो देखा तो उनको लगा कि ये तो ऐसी फिल्म है
1: जी।
0: अब तो मेरा बड़ा विरोध हुआ वहां, बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे बहुत बेइज्जत किया गया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, और मैं पहली फिल्म थी तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से तब जानते भी नहीं थे, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ये शहर मेरा टेस्ट ले रहा है, तो जिस दिन उन्होंने रोकी मेरी शूटिंग, मैं कहीं और जाके गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह मैंने वहां शूटिंग की, मैंने एक भी दिन काम नहीं रोका, क्योंकि मुझे था कि काम रुकेगा प्रोड्यूसर रुकेगा अपने शहर लेके गए उसका नुकसान होगा, तो मैंने कहा शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, तो मैं भी, अगर वो इलाहाबादी मेरे खिलाफ थे तो उनको नहीं पता मैं भी
1: एक इलाहाबादी
0: से ही लड़ रहा है
1: जी,
0: और वो हार गए सब, मेरी फिल्म रिलीज भी बनी, उससे सब कुछ दिया, सक्सेसफुल रही
1: और लोगों ने बहुत सराहा, तो वो इसी वजह से रोए थे आप, मतलब ये
0: हाँ रोया तो रोने वाले। हाँ, मुझे वहां पे डीएम को दफ्तर में बुला लिया
1: जी,
0: और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने पुराने पुराने दिग्गज सब एक्स प्रेसिडेंट या नेता जो भी थे वो आ गए डीएम के ऑफिस में, और उन्होंने कहा देखिए ये तो शूटिंग वाले हैं, ये तो चले जाएंगे, आपको यही रहना है
1: जी जी,
0: और ये लोग यात्री होटल में हैं, तोड़ देंगे उसका शीशा, उनकी गाड़ियां, इस लड़के को उसका सर मुंडवा के गधे पे बैठा के शहर में घुमाएंगे।
1: ओ बाप रे।
0: तो मुझे तो आंसू आ गए मेरे, मैं अकेला हूँ, ये कम से कम 25-30 लोग डीएम ऑफिस में, मैं उसको डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं,

0: तो फिर मैं रो दिया, फिर लेके मैं निकला बाहर, मैंने शूटिंग नहीं रोकी। इवेंचुअली एक देर बात हुई, मैंने मुझे फोन करने पड़ा।
1: तो मतलब आंसुओं की उस उन लड़ियों ने मुस्कान की और खुशी के मोती आपके जीवन में दिए,
0: और ऐसे ही है।
1: बहुत सारे मोतियां। तो यहाँ पर बात हासिल की चली है, तो क्या हासिल फिल्म का गाना सुन लिया जाए?
0: जी बिल्कुल।
1: और आपका पसंदीदा गीत है शायद ये?
0: जी जी,
1: सुनते हैं।

0: तो ये हासिल फिल्म का गाना था, उदित नारायण और साथियों की आवाजें थी, सोनाली वाजपेयी की आवाज थी साथ में, और जतिन ललित का संगीत था। और कुछ श्रोता भी तिग्मांशु जी लिख रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, ये चार शब्द सुबह सुबह घरों की खामोशी में पिछले 70 सालों से जीवन रस घोल रहे हैं। रेडियो की धीमी आवाज, शहनाई की मंगल धुन आज भी करोड़ों भारतवासी के हृदय में अपनी पहचान बनाए हुए। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके दर्पण में हर किसी के सपनों की आहट, ख्वाहिश की झिलमिलाहट और दूर तक अपने साथ ले जाने की फितरत शुमार है। एक श्रोता की ओर से सवाल है आपसे, तो पहले मैं जतिन ललित के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं श्रोता का सवाल शामिल करूं?
1: सवाल ले लेता पहले
0: जी। हमारी एक श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि तिग्मांशु जी, आपने इरफान खान के साथ काफी फिल्में की हैं, उनके साथ फिल्म मेकिंग से संबंधित ऐसा कौन सा लम्हा है, कौन सा पल है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है?
1: अब ऐसे मोमेंट्स और लम्हे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो खास बात हमारे कॉम्बिनेशन में ये थी कि आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं और ठीक है, आप उससे मिलते हैं पहली बार, उसको स्क्रिप्ट सुनाते हैं, तभी शायद आप जान पहचान होती है, और फिर शूटिंग के दौरान, लेकिन एक आप वो आपका दोस्त नहीं होता है।
0: जी जी,
1: वो एक साथ में एक फिल्म बनाने में जो एज ए टेक्नीशियन है वो एक्टर है, वैसा ही रिश्ता रहता है। और एक्टर्स क्योंकि थोड़े नाजुक मिजाज होता है इनका
0: जी,
1: तो आप उनको बहुत सहम के उनके साथ बिहेव करते हैं
0: जी,
1: कि कहीं कुछ ना हो जाए। इरफान के साथ ये था कि मेरा दोस्त था वो, तो मैं दोस्त के साथ फिल्म बना।

0: आता था
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: मैं अकेला नहीं बना रहा होता था, मेरे साथ वो भी रहता था. उसके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था. बाकी एक्टर के साथ मैं ये नहीं, ये फैसिलिटी नहीं है मेरी. तो उससे थोड़ी मेरी उसकी जो फिल्में रही हैं
1: जी
0: वो थोड़ी ज्यादा लोगों के
1: संवेदनशील भी रही.
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बात लोगों तक पहुंची है
1: जी. और इरफान से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं.
0: हाँ बिल्कुल.
1: तो कुछ पारिवारिक इरफान की जो निजी बातें हैं उनकी फिल्मों के अलावा कौन सी बात आपको याद आती है? आज इरफान नहीं है लेकिन हम सबके दिल के करीब हैं. वो ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं, सामने बातचीत कर रहे हैं.
0: बिल्कुल, मेरे भाई जैसा था वो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो. जो कि दूसरा है नहीं उसके जैसा कोई
1: जी.
0: तो उसके जाने से मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ
1: जी.
0: और ये सच बात है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. और पारिवारिक जो आपने कहा कि मतलब घर बिल्कुल पारिवारिक माहौल, मतलब कि मेरी मैं इरफान हमारे और भी दो तीन चार दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेंद्र काला ये सब जो थे, तब बहुत मिला करते थे हम लोग सब बाप बने हैं. मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब
1: जी जी,
0: मतलब सबकी बीवियां मोटी मोटी.
1: अच्छा.
0: स्वीट और इरफानी उनको गाड़ियों में बैठा के घुमाना, या उनको जैसे चाट वाट के खाने का बहुत मन करता है ना, सब तो वो सब इरफानी करता था
1: जी जी.
0: 3-4 महिलाओं को बैठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4-5 महीने 3 महीने के गैप में. तो इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा
1: जी. बिल्कुल. ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी.
0: हाँ, वो मेरा कजन ब्रदर है.
1: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी.
0: हाँ.
1: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था, उनका कैरेक्टर गढ़ा था?
0: वो तो बहुत अच्छा एक्टर है, वो थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है. और उसको कुछ बताने की जरूरत मुझे खास पड़ी नहीं. थोड़ी बहुत उसकी ये कि दीवार पे लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा. और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो
1: जी जी. एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं आप खुद भी, तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह
0: जी जी,
1: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था. तो कैसे आप वहां पहुंचे, मतलब एक्टिंग आगे एक्टिंग ही तो नहीं करना चाहते हैं?
0: नहीं.
1: मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप बतौर डायरेक्टर फिल्में देते रहे.
0: एक्टिंग में मुझको मतलब वो मैं ऐसी पता नहीं क्यों अपना अनुराग और कश्यप और जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश छावड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना. मैं एक्टर तो था नहीं, मतलब एक्टर में था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग के परसू नहीं किया. मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कम्प्लीटली अलग
1: जी, जी.
0: स्ट्रीम. उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी. मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी. अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था मैंने, कहा एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस. वो बहुत तरह एक चीज नहीं होती, बहुत चीजों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है. तो आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है. तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था. उस यूनिट पे जब गया तो सब दोस्त थे, मनोज वाजपेयी हो, ये वो नवाज हो, तब सब दोस्त हैं
1: जी.
0: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं. तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गई कि अरे मैं अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा तो शायद मैं घबराता थोड़ा.
1: तो
0: इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
1: जी.
0: तो हो गया.
1: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे? क्या हुआ था फिर उसके बाद?
0: वो विपिन को जब मारता हूँ, वो कहाँ गाड़े थे उस वक्त. तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से, मुझसे तो 3-4 साल सीनियर है. तो मैंने विपिन को बोला, अभी मैंने विपिन यार से जैसे हम लोग फिल्म नहीं मारते हैं वैसे मार दो क्या? कह नहीं नहीं मारना मारना. मैंने कहा यार लग जाएगी, मेरा थोड़ा भारी हाथ है. कह नहीं नहीं कोई नहीं, हम लोग
1: अच्छा
0: कह दिया तो मैंने मार दिया.
1: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
0: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल.
1: अच्छा ओके. और बात एक्टिंग की चली है तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है दिल से.
0: हाँ डायलॉग्स लिखे थे उसके
1: जी.
0: तो मैं पूरी शूटिंग में था
1: जी
0: उस दिल से की जी.
1: तो शाहरुख खान के साथ लिखना आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव?
0: शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था मैं, मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था. मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली में.

0: जी,
1: वो अंग्रेजी में बता देते थे कि ये चाहिए मुझको, और उस इतना समझ के कि शाहरुख का किरदार ऐसा है, मनीषा का जो कैरेक्टर्स को इतना तो समझ थी मुझे
0: जी,
1: तो उस किरदार को समझते हुए मैंने उस तरह की हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, और उस जो अंग्रेजी में मणिसर ने लिखा था उसको मैंने एक अच्छे ढंग से अडेप्ट कर लिया, बस ये काम था मेरा
0: जी। तो इस समय उनकी फिल्म का जिक्र चला है, तो यहां पर आपको कौन सा गाना हम सुनवाएं? हालांकि आपकी पसंदीदा गानों की हमने लिस्ट बनाई है, तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कुछ पुराने दौर में जाना चाहते हैं या नए दौर के गाने सुनना चाहते हैं?
1: ये तेरे मेरे सपने का गाना
0: जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है, ये गाना हम सुन लें
1: जी। बिल्कुल,
0: नीरज के बोले और सचिन देव बर्मन का संगीत है, और आपकी जिंदगी में गानों की बहुत दखल रही है, तो इस गाने के बाद हम कुछ गीत की बात करेंगे, कुछ पुराने गानों की।

तो तिग्मांशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नजर किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं।

0: तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी, मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे तो हमारे घर में एक था आनंद कुकर, और वो चीज मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा,
1: वो इतनी खूबसूरत चीज थी कि जैसे जिसके टिफिन बॉक्स होता ना, जैसे
0: जिसमें
1: हम लंच लेके ऑफिस में लोग जाते हैं, दो तीन उसमें वो होते हैं दाल चावल
0: डब्बे
1: होते हैं, उसमें वो बड़ा सा एल्यूमिनियम का था और नीचे उसमें आप कोयला जला दीजिए।
0: अच्छा
1: हाँ, और इसलिए बड़ा स्मोकी फ्लेवर भी होता ना, और जो नीचे एक उसमें दाल रख लीजिए, फिर थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर जो सब्जी उबल जाए घर आए सीधे काटे छोंक दे बन गई, उस तरह की आलू या परवल या इस तरह अच्छा। की चीजें आप ऊपर रख दीजिए। और हम लोग आते थे एक डेढ़ दो बजे स्कूल से तो, और फट से बना बना खाना मिलता है गरम गरम। तो ये आनंद कुकर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी, वो पता नहीं गायब होगी, लोगों को रखना चाहिए अपने घर में। उसका तो फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आता है।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: तो कोयले में पका हुआ एक तो इधर ही बचता है और इतना डिलीशियस खाना बनता है। तो मदर फिर आती थी इलाहाबाद की गर्मी, तो आपको पता ही आप भी वहीं की हैं।
0: बिल्कुल भीषण गर्मी,
1: भयंकर गर्मी। तो तब वो रिक्शे में आती थी, एक रिक्शा वाला बेचारा उनको ढो के सबको, तब तभी रिक्शा ही चलता था
0: जी।
1: तो वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नए नए फ्लैट सिस्टम इलाहाबाद में आया था, तो हमारे घर वालों ने खरीद लिया था एक फ्लैट, आज भी है वो फ्लैट। तो दिन में आती थी तीन साढ़े तीन बजे में, भीषण गर्मी, और रिक्शे वाले को ऊपर ले आया था, रिक्शे वाला पसीने से लथपथ होता था
0: बिल्कुल।
1: ये उनसे मैंने एक चीज की, जब वो आती थी मतलब कहते रिक्शे वाले को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के पहले उसको गुड़ दो।
0: क्या बात है, ये वहां का चलन है।
1: मैं बड़ा सा एक ढेला गुड़ का उसको रिक्शे वाले को देता था, वो पहले बेचारा गुड़ खाता था और फिर वो ठंडा पानी पीता था और बहुत दुआएं देके जाता था। ये हम हर रोज होता था।
0: क्या बात है,
1: तो ये चीज मुझे बहुत याद रही अपनी मदर की,
0: ये सिखाया। और
1: जी,
0: और आपकी फिल्मों को जब उन्होंने देखा, निर्देशन किया, तो उन फिल्मों में कुछ बारीकियां वो समझाती थी?
1: उनको प्रॉब्लम होती है मेरी फिल्मों से कि उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा खून गोलियां बहुत चलती है, तो उनको इस बात का वो, उनको वो है, वो एतराज करती है, उसपे कैसी फिल्म बनाती हो।
0: तो आपने बात मानी नहीं उनकी एक कोई प्रेम कहानी लेकर आइए और बड़ी संवेदनशील जहां प्रेमालाप हो, जो इलाहाबाद की गलियों में होता है।
1: हाँ नहीं, पान सिंह तो जैसी फिल्म तो उनको भी अच्छी लगी थी, उसमें फिर अवार्ड कभी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है वो।
0: किसे नहीं अच्छा लगता है। पान सिंह तोमर एक बेहतरीन फिल्म थी, हम सब ने देखी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सचमुच इरफान की एक्टिंग, जब भी पान सिंह तोमर की बात चलती है तो इरफान का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो ये इलाहाबाद का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, और आपके भाई भी अभी जज है इलाहाबाद में,
1: सुप्रीम कोर्ट में जज थे और लास्ट ईयर अगस्त में रिटायर कर गया।
0: जी, तो वो जो परिवार इतना आपका क्या कहते हैं इलाहाबाद में जो भाषा कहते हैं दबंगई, तो वो दबंगई आपकी फिल्मों में भी कहीं दिखता है, आप लाते हैं। और छोटे शहरों के जो कस्बे के संवाद होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, वो आपकी फिल्मों में खूब दिखाई देते हैं, तो वो क्या इलाहाबाद की देन है कि आपके निर्देशक की कलाबाजी है?
1: नहीं, बचपन से मुझे फिल्में ही पसंद थी जिसमें थोड़ा से इस तरह के एलिमेंट्स हों, जो किसी के आदेश का पालन नहीं करते वाले किरदार जो जो किसी से दब के नहीं रहते हैं, क्योंकि इलाहाबादियों में ही बात होती है, दब के नहीं रह सकता किसी से। तो पता नहीं क्या बात थी, मुझे फिल्में भी ऐसी अच्छी लगती थी, मुझे लव स्टोरीज पसंद ही नहीं आती थी। तो ये टेस्ट वाली बात है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, उसी तरह की चीज थी मुझको थोड़ा, जिसमें पोस्टर में अगर पिस्टल है तो वो पिक्चर देखनी है, इस तरह का था। वही चीज चली आ रही है, तो मैं बनाता भी वैसी ही फिल्में हूँ, लव स्टोरीज मैंने शायद एक ही बनाई, वो चली हुई नहीं।
0: वो जी, और उसमें वो गाना भी खूब मशहूर हुआ था, आंखें भी दिल की जुबान,
1: ये तो हासिल
0: का था। हासिल का है। और साहब बीबी गैंगस्टर में भी खूब गोलियां चली हैं।
1: जी जी जी।
0: तो साहब बीबी गैंगस्टर से जुड़ी कुछ बात हमारे श्रोताओं को बताइए, शूटिंग के समय किस तरह का माहौल आप रचते हैं, आपका जो निर्देशक का?
1: मैंने तीन पार्ट बनाए थे, तो जो पहला पार्ट बन रहा था बनाया था।

0: तो हमें अब खास कोई काम नहीं था किसी के पास। पान सिंह तोमर बन चुकी थी और फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, और मैं तो वेट करता था कि पिक्चर रिलीज होगी, अगर कुछ हुआ तो फिर अगली फिल्म मिलेगी, ऐसे ही चलता करियर। और फिल्म रिलीज ही नहीं कर रहे थे वो लोग, हम ऑफिस जाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिल्में देखते थे और टीटी खेलते थे, चले आते थे। तो ऑफिस में कई लोग आते थे, रणदीप हुड्डा भी आता था, वो भी टीटी खेलता था हम लोगों के साथ, और जिमी तो खैर दोस्त तो आता ही था। तो फिर सोच, मतलब उसी वक्त ये डिजिटल नेगेटिव गया और डिजिटल आया हिंदुस्तान में, जब हम डिजिटल पे शूट करते हैं ना सब कुछ।
1: जी जी।
0: तो उससे कॉस्ट बहुत कम हो गई फिल्म बनाने की, बहुत ज्यादा। तो मुझको लगा कि मैं डिजिटल पे, मैंने कहा 1.5 करोड़ में फिल्म बना दूंगा, किसी को देगी नहीं पैसा, जो भी खाना वाने का खर्चा है लोगों को थोड़ा बहुत करके 1.5-2 में बना दूंगा। और उल्टी बही गंगा, हमको हमने पहले टाइटल डिसाइड किया साहेब बीवी, मुझको साहेब बीवी गुलाम का एक इंडियन मॉडर्न वर्जन बनाना था।
1: जी जी जी।
0: वो बहुत अच्छी फिल्म है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो पुनः गया गुलाम नहीं गैंगस्टर, अच्छा टाइटल, पहले टाइटल आया, फिर उस तरह की लोकेशन ढूंढने गए। जब लोकेशन मिली तो लोकेशन के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई, उल्टा पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिर जाते हैं हम लोकेशन ढूंढने, यहाँ उल्टी भाई सब बड़ी गंगा। ये कहकर हमने वो फिल्म बना दी और वो पिक्चर ने बहुत क्रिटिकल अक्लेम और चली भी पिक्चर वो
1: जी,
0: और उससे उसकी वजह से फिर सेकेंड भी आई और फिर थर्ड भी आई।
1: जी, तो तीनों को बनाने में जो कि पहली फिल्म पहली से, मतलब दूसरी फिल्म पहली से और अच्छी हो और उत्तम हो, तो उसके लिए क्या खास ख्याल रखा आपने?
0: कुछ ऐसा ख्याल, मुझको तो उसी दुनिया में बनानी थी, कहानी का ही हर पहले का ही एक्सटेंशन था, सेकंड और थर्ड भी। तो उसमें सिर्फ गैंगस्टर बदलते हैं, पहली वाले में रणदीप हुड्डा गैंगस्टर थे, सेकंड वाले में इरफान था। तो पहली भी चल गई थी और तो सेकंड वाले में थोड़ा हमको मिल गया स्टूडियो फट से, बहुत झंझट नहीं हुआ।
1: जी जी।
0: थोड़ा बजट भी थोड़ा बढ़ गया, तो उसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, पोलो मैचेस जितने प्रिंसली वाले जो पोलो खेलते हैं उस तरह के मैचेस, और ये वो थोड़ा गानों में खर्चा ज्यादा, वो सब किया आपने सेकंड में।
1: जी, एक झलक सुनते हैं गाने की, साहबीबी और गैंगस्टर, नूरा सिस्टर्स की आवाज में।

0: ये साहब बीबी और गैंगस्टर फिल्म का गाना था नूरा सिस्टर्स की आवाज में और तिग्मांशु जी की ही ये फिल्म है। तिग्मांशु जी, हमारे बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं और आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं। एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आपने अभिनय और निर्देशन दोनों में काम किया है, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करने में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है?
1: दोनों अलग अलग चीजें हैं, अंतर क्या बहुत ही दोनों, मुझे मजा कैमरे के पीछे ज्यादा आता है, मुझे डायरेक्शन करने में ज्यादा मजा आता है। एक्टिंग मैं करता हूं क्योंकि मैं बाय मिस्टेक एक्टर बन गया इसी तरह से और वो लोगों को पसंद आ गया तो अब मुझे कभी कोई रोल ठीक ठाक होता है या पैसे थोड़े ठीक ठाक मिलते तो मैं रोल कर लेता हूं। बाकी मुझे बहुत शौक नहीं है एक्टिंग करने का
0: जी।
1: दुनिया का सबसे आसान काम है एक्टिंग।
0: अच्छा तो उस समय आपका निर्देशक भी काम करता है आपके भीतर कि जो निर्देशक बोलता है वही करते हैं?
1: जी नहीं, आप उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते कि आप कम्प्लीटली स्विच ऑफ, तो लेकिन ये है कि डायरेक्टर कोई और होता है तो मैं ज्यादा सवाल जवाब करता नहीं हूँ।
0: जैसा
1: अंटिल एंड अनलेस बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जो वो डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा तब मैं कभी कभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो अड़ा रहे तो मैं डायरेक्टर की ही मान मानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर भी ऐसा ही करे तो मैं भी डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ, तो माननी भी चाहिए
0: जी।
1: तो लेकिन एंजॉय मैं ज्यादा डायरेक्ट करना करता हूँ
0: जी। एक श्रोता कह रहे हैं कि अवधि में कुछ बोल के बताइए।
1: अरे कहा तो... बताई भैया एक सवाल बढ़िया से पूछो तो बताई फिर तुमको।
0: तो बताओ कौनो शूटिंग से जुड़ी हुई कौनो बात याद हो तो बताओ जे।
1: अरे अब शूटिंग इतनी पिक्चर बन गई, इतने इतने कांड हुए और इतनी कहानियां हैं कि सुबह से रात हो जाएगी।
0: तो एक आध कोनो छोटा सा अंश बता दे ताकि हमारा श्रोता खुश हो जाए।
1: नहीं ऐसे जब बहुत कुछ होता था कि एक जैसे पान सिंह तोमर की एक बार शूटिंग कर रहे थे हम लोग चंबल में, तो बहुत खूबसूरत जगह है चंबल, बहुत ही वो नदी इतनी खूबसूरत है, इतनी साफ, इतनी आप उसको आप ऊपर से देखें बोट से तो आपको नीचे तक दिखाई देता है,
0: ट्रांसपेरेंट है
1: एकदम, आपको नीचे कछुए और ये सब चीजें तैरती हुई दिखाई देंगी, ब्यूटीफुल रिवर। और साथ में वो चंबल के घाटिया और रमेंस जो है, तो शूटिंग करते थे फिर सोचते थे यार, क्योंकि सारे दोस्त तैयार है, इतनी 100-150-200 की यूनिट है, हम लोग सोचते थे यार एक जैसे की जगह शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तुमने कहा साहब मैं इरफान हूं, मैंने कहा यार रात को ना बैकअप के बाद यही मंदिर बनाएंगे।
0: क्या बात है।
1: तो यही बैठा जाएगा,
0: डर नहीं लगता था रात की शूटिंग में?
1: उस तो पुलिस तो रहती थी हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग सोचा लगे बैठेंगे अपना कुछ मजा वजा करेंगे यही आसपास, खाना वाना कहीं बनवा लेंगे गांव में, और पूरी तैयारी के साथ बहुत कि कैसे जिस कैसे जल्दी पैकअप हो और कैसे हम लोग सब रिलैक्स कर रहे हैं नदी के बगल में, घड़ियाल बहुत है वहाँ चंबल जो नदी है उसके कट पे एलिगेटर्स जो है बहुत सारे हैं
0: जी जी,
1: ऐसे मुंह खुले हुए सब लेटे रहते हैं सब। तब तक खबर आई, हमने पूरा इंतजाम कर लिया कि आग वाग का सबका, हर तरह की आग का, तो फिर पाया कि देखो शूटिंग देखने के लिए आते हैं ना बहुत सारे लोग, कौन क्या है उसमें क्या मालूम, कहते नहीं डकैत लग गए हैं यहाँ पे 3-4 और आप लोग ये सब एंजॉय करना भूल जाइए, चुपचाप गाड़ी में बैठिए होटल जाइए। तो वही किया, नहीं तो पता चला कि जो हीरो है उनको उठा के ले गए, पकड़ बन गए, वो हम उनकी रैंसम दे रहे हैं वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं शूटिंग के दौरान, आपको क्योंकि लोकेशन नहीं होती है आप थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होना चाहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे किस्से इस तरह के
0: जी जी
1: बहुत है। लेकिन डाकू आते थे हमारी शूटिंग देखने।
0: अच्छा तो कभी आपको उनसे डर नहीं लगा, डराया धमकाया नहीं?
1: इस तरह के थोड़ी होते हैं
0: जी,
1: इस तरह के थोड़े गधे बेवकूफ थोड़ी होते हैं बाकी लोग
0: जी,
1: उनको अगर किसी को किडनैप करना हो तो पूरे प्लानिंग के साथ आएंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे वो किसी को
0: हार्म नहीं पहुंचाते, नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
1: अब वो पूरे एरिया में सब घर हर घर में बंदूकें हैं, क्या करेंगे डाकू परेशान।
0: और आप जैसे जो इलाहाबाद की जो दबंगई है, दबंग किस्म के इंसान तो डर ही नहीं सकते, ये

0: ना, ऐसी बात नहीं है, डर तो लगता है, सबको लगता है, मुझको भी लगता है
1: जी,
0: और लगना भी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है, खतरों से खतरों का सामना करना ठीक है, लेकिन खतरों के खिलाफ खड़े होके अनायास मोर्चा लेना भी ठीक नहीं होता जी। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आज के दौर में जब सिनेमा तेजी से बदल रहा है तो आपको लगता है कि कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसे प्रस्तुत करने का तरीका?
0: फिल्म चलने के पीछे, अच्छी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों पे बात बोल सकता हूं। देखिए, फिल्म के चलने के पीछे अच्छी कहानी हो जरूरी नहीं है
1: जी। कौन सी फिल्म चल जाए कुछ पता नहीं,
0: नहीं नहीं नहीं, उस पिक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको क्या चाहे कैसी भी कहानी हो, सिंपल कहानी हो, लेकिन उसको जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो अंदाज आपका, उस फिल्म की पैकेजिंग, किस तरह से टाइटल्स आ रहे हैं, किस जगह पे गाना आ रहा है, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं हम, मंजर कशी, जिसे जावेद साहब से पूछा गया था कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में फर्क क्या है, तो स्टोरी इज व्हाट एंड स्क्रीन प्ले इज हाउ। तो आपका अगर हाउ बहुत अच्छा है तो एक कमजोर या बहुत ही सिंपल सी सामान्य सी कहानी भी अच्छी फिल्म हिट बन सकती है। लेकिन अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म में तो यह है कि कहानी अगर हो तो फिर वो यादगार बन जाती है, अगर कहानी अच्छी है तो
1: जी। बिल्कुल, तो आपको बतौर, चूंकि आप लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं, तो कभी अपने लिखे को एक निर्देशक के रूप में खारिज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कोई ऐसे उदाहरण देके बताइए हमारे श्रोताओं को कि
0: लिखना तो एक्चुअली सबसे पड़ी, जब क्योंकि मैं लिखता भी सारी फिल्म खुद की, सारी जितना भी अब तक काम किया मैंने खुद ही लिखा है सब, तो वो एक बहुत ही पैनी और उससे स्क्रूटनी से होकर गुजरता है। बहुत आलसी लेखक भी हूं मैं, मुझसे जल्दी भी नहीं लिखा जाता।
1: अच्छा,
0: हाँ, बहुत टाइम लेता हूं मैं, तो मैं मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कभी कोई खराब, ऐसा नहीं, मेरी सारी पिक्चर लिखा, बहुत सारी पिक्चर फ्लॉप ही है मेरी,
1: ये आप कह रहे हैं ना,
0: सच बात है। उसमें क्या है, हर पिक्चर तो हिट, किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर का, जिसका भी आप बड़े से बड़े के नाम लें, पूरे फिल्मोग्राफी में 3-4 पिक्चरें होती हैं जो अच्छी होती हैं
1: जी,
0: बड़े से बड़े की। बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो गया तो उसकी बात छोड़ देते हैं, बिमल रॉय को हटा देते हैं स्फेरिस से, और राज कपूर साहब और गुरुदत्त इन जैसे लोगों को हटा देते हैं, वो लोग तो लेजेंड्स हैं, उन लोग उन्होंने ग्रामर लिखा है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, तो उनसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने। बाकी जो और लोग जिन पे हम लोग जैसे डायरेक्टर आते हैं, तो उन सबकी फेहरिस्त में देखिएगा, तो अगर 15 पिक्चर हैं तो 4 ही पिक्चर होंगी जो सही पड़ी होंगी, बाकी तो आदमी फेल करता ही करता है।
1: आपकी ये बात बड़े मन भाई कि इतनी ईमानदारी से अपनी फिल्मों की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं, और पुराने दौर के गोल्डन इरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की, तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं?
0: मैं तो आजकल पुरानी ही देखता हूं
1: जी,
0: मैं तो आजकल पुरानी फिल्में ही देखता हूँ, कई फिल्में मिस हो, सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी है, कहीं आ जाती, तो मैं यूट्यूब में या खोज खाज के वो फिल्में देखता हूँ। मैं
1: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों में?
0: मैंने अभी ख्वाजा अदम अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मेरी बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी, इसका नाम था शंकर हुसैन
1: जी जी,
0: जिसके गाने
1: बहुत ही खूबसूरत
0: गाने, तो मैं गाने तो बहुत सुने थे, पिक्चर नहीं देखी थी, वो देखी मैंने। तो ऐसे ऐसे कई फिल्में हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी।
1: तो गाने आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ते हैं, क्या दखल रखते हैं आपकी जिंदगी में पुराने गाने?
0: अब गानों के साथ म्यूजिक के साथ, जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो हमारा बैंड था, तो अंग्रेजी गाने बजाते थे हम लोग
1: जी जी,
0: मैं रिदम गिटार भी आता था और गाता था
1: जी,
0: और मैं गाता ठीक ठाक था, तो मुझे अब सब जगह जितने इलाहाबाद के लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन या सब फेस्टिवल्स होते हैं सब स्टूडेंट्स का अपना, तो उन फेस्टिवल में मुझको हमेशा बेस्ट वेस्टर्न सोलो मेल अवार्ड हमेशा मिलता था, तो मैंने चैंपियन था मैं उसका।
1: क्या बात है भाई,
0: तो जी मैं गिटार कभी बहुत अच्छा बजा नहीं पाया, रिदम बजा लेता था, लेकिन मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बनना चाहता था, जो मैं कभी नहीं कर पाया, मैं आज भी सोचता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता है, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बन जाऊँ।
1: क्या बात है,
0: वहां से सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का, और फिर मेरे जो मैंने वही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, उन्हीं की नक्शे कदम पे मैं चला हूँ। बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस में चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर कर गए, बट अभी भी उनका आर्ट और पोएट्री वो पर्सू करते रहते हैं गोवा में, बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में

0: चीफ जस्टिस जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशियल। लेकिन वो भी मुझसे अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्म मेकर बनते वो।
1: जी जी।
0: अब ये था, मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस है भाइयों में मेरे और उनमें। तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत में बढ़ गया आगे।
1: जी जी जी। तो अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए? शंकर हुसैन का भी जिक्र किया आपने, आपकी पसंद का कोई और गाना?
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दाग फिल्म का।
1: जी जी।
0: विच इज अ वेरी अनलाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सॉन्ग।
1: जी जी। तो वही गाना सुनते हैं।

0: साई साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज और दाग फिल्म। तो ये गाना तो हमने सुना और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, तो वो उन्हें बड़ी जिज्ञासा है, तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है, दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नहीं,

0: नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है
1: जी।
0: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, इसका मतलब है सूर्य, सूर्य। तिग्मांशु तो तेज, जिसकी अंशु है, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु। जो तो सूर्य सहस्त्र नाम, अगर आप जो सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें तिग्मांशु भी आता है
1: जी जी।
0: तो मुझको नहीं लगता मेरे नाम किसी नाम का कोई और दूसरा है।

0: हिस्टोरिकली थोड़ा रेलिवेंट और करेक्ट लगता है, वो ये लगता है कि शायद हम लोग धुले से हैं, महाराष्ट्र से।
1: जी जी।
0: वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड का, हम लोग पहाड़ के रहने वाले, तो तब तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, उसके पहले तो यूपी का ही पार्ट था सब। तो मुझको एक मेरी थ्योरी लगती है, जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पेशवा साहब वहां से चल के पानीपत मतलब हरियाणा लड़ाई करने आया है मशाद अली से, तो वह सिर्फ सेना नहीं आती ना, तब तो साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, पुजारी भी आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, बहुत मिलों तक का ट्रैवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वहीं। और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण्स होते थे उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना वहां से आए हैं, यहाँ तो हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाकर, तब तो पैदल चल रहा है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धुले से थे और हम लोग रह गए वहां और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना,
1: जी,
0: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी, बात उत्तराखंड की चली है, उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं। तिग्मांशु जी, एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहब बीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?
0: मुझे हिंदी फिल्म म्यूजिक मुझे को मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पर रखता हूँ, इससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक, एक फ्यूजन म्यूजिक का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता।
1: जी जी।
0: बाद में सब जैज और फ्यूजन म्यूजिक आया कि इंडियन क्लासिकल और जैज को मिक्स, वो सब का हिंदी फिल्म म्यूजिक ये काम 200 साल पहले से कर रहा था।
1: बिल्कुल।
0: बहुत इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी फिल्म म्यूजिक है।
1: जी जी।
0: तो उसको पसंद अगर मैं करता हूँ या जो भी लोग पसंद करते हैं वो कई कारणों से करते, कईयों को लिरिक्स बहुत पसंद आती है। अब पुराने जमाने में क्या था, जो कि लिरिक राइटर जो थे वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और हिंदी फिल्म के जो राइटर्स थे वो सबसे ज्यादा, बाकी लोग इतने थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो डायरेक्टर्स भी ही क्यों ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक को इतना पॉपुलर करने के लिए पीछे लिरिक राइटर्स का हाथ बहुत, और मैं आज एकदम पूरे दम से बात कहता हूँ कि गाने कविता की वजह से ज्यादा चलते हैं बजाय उसकी मेलोडी की वजह से।
1: क्या बात कही आपने, सच में।
0: जी बिल्कुल, लिरिक्स की वजह से ज्यादा चलते हैं, आज उनको हम याद ही इसलिए करते हैं बिकॉज लिरिक्स हमको समझ में आती हैं और हमारे दिल को छूती हैं, और डेफिनेटली उसके बाद एक मेलोडी कॉम्पोजिशन का हाथ तो होता ही है, लेकिन इट्स फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज ऑल पोएट्री।
1: जी बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कविता होती है वो गाने खूब चलते भी हैं, इसीलिए शायद हमें पुराने गाने कंठस्थ होते हैं और नए वाले गाने हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे भी लगते हैं तो भी हम याद नहीं करते,
0: बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आजकल गाने को, उनको लगता है हम कोई बड़ी बात बात कह दें, अरे महसूस जिंदगी में किया नहीं, सिर्फ बात करने से थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, इश्क करना सीख लेना, से इल्म से शायरी नहीं आती है, इश्क तो कर।
1: जी बिल्कुल,
0: तो पुराने राइटर्स से जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक राइटर बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर्स हैं, लेकिन जो सब वो राइटर्स जिनकी फिल्मोग्राफी बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है परसेंटेज, वो मजरूह सुल्तानपुरी हैं, वो आनंद बख्शी जी हैं, सिंपल राइटिंग है एकदम,
1: जो सबके
0: पिक्चर देखती है उनकी फेहरिस्त सबसे ज्यादा है ना
1: जी।
0: तो उसका हिंदी फिल्म गाने लिखने का एक जो शऊर है वो सबको नहीं पास नहीं आता।
1: जी जी, तो इसमें आप जो नए दौर के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ कहिए, और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपकी फिल्मों के गाने कविता के रूप में आए, क्या आप ये वादा करेंगे, और नए बच्चों के लिए कुछ कहेंगे कि वो नए गानों से हिंदी गानों से कैसे जुड़े?
0: देखिए, कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि मीडियोक्रेटी ज्यादा है, अच्छा काम तो कम ही होता है
1: जी,
0: बुरा काम ही होता ज्यादा तो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश करते रहो बस
1: जी,
0: कोशिश करते रहो, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो लेकिन फिर इवेंचुअली हम ही लोग असरदार बनेंगे, तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, हार मत मानो कि यार ये गाने चलते नहीं है कौन सुनेगा मेरे गाने, नहीं लिखो वही इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिलेगा।
1: बिल्कुल, आज के दौर में भी इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकार जो कविता रचते हैं अपने गानों में और हम सब

0: पसंद करते हैं।
1: तो ये दिक्कत ये है ना कि हमारे फिल्मों में गाने खत्म हो गए।
0: जी
1: प्रॉब्लम ये है, हम क्यों ये सारे जो हम भी गाने सुन रहे हैं पुराने गाने हैं, नया गाना कोई सुनता भी नहीं है।
0: जी
1: और पिक्चरों का जिस तरह से बजट हो गया है, जिस तरह की चीजें हो गई, आप गाना रख नहीं सकते कि तो गाने को रिकॉर्ड करने में पैसा खर्चा होता है, फिर उस गाने को पिक्चराइज करने में तीन चार दिन, अच्छा गाना हो तो तीन चार दिन तो जाएगा ही जाएगा।
0: जी
1: तो वो बजट में बहुत बड़ा एक पैकेट सा बन जाता है म्यूजिक। तो सबसे पहले सोचा म्यूजिक को हटाओ, बैकग्राउंड में रख दो गाने थोड़ा, यही हो गया है। सिर्फ बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं, बाकी छोटी फिल्मों में तो बैकग्राउंड में कुछ गाना, वो गाना चलते वलते भी नहीं है कुछ।
0: जी जी
1: पहले जमाने में तो जैसे मैं हमेशा कहता था अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर भी आती थी कोई मुकद्दर का सिकंदर, तो साथ में अमोल पालेकर साहब की भी गोलमाल आती थी, उसके गाने भी अच्छे थे।
0: जी जी बिल्कुल, और वो गाने याद किए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे। और आज भी जो म्यूजिकल शो होते हैं, चाहे वो अंताक्षरी हो निजी तौर पर या कहीं, तो वहाँ पुराने गाने ही गाए जाते हैं।
1: और देखिए बात ये, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो बड़ी पिक्चर भी करते थे और वो छोटी पिक्चर पर, ये जानते थे कि छोटी पिक्चर का बजट कम होगा। आर डी बर्मन के आप मैक्सिमम गाने जो अच्छे हैं वो छोटी पिक्चरों के, आप उठा के देख लीजिए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो गोलमाल, बुड्ढा मिल गया, मासूम, ये सब पिक्चर छोटे बजट की पिक्चर है। फिर उन्होंने बड़ी रमेश सिप्पी शोले ये सब किया, क्योंकि उनकी जो छोटी जो कम बजट की पिक्चर है, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चर बेमिसाल देख लीजिए, कितनी फिल्में देख लीजिए, सब में म्यूजिक उन्हीं का है ना।
0: जी बिल्कुल,
1: छोटी फिल्म है देख लीजिए आप।
0: तो यहाँ पर जिक्र गानों का है, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाए?
1: वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो फिर में लोग कभी इस बात का वादा कर लो, ओपी नैयर साहब का बहुत खूबसूरत गाना।
0: जी जी वो गाना हम सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी।
1: जी
0: ये वाला गाना आपको आपने पसंद किया तो सुनते हैं।

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: किए, और एक नाम है जानसी, आपकी बेटी का नाम है। तो हमें ये पता चला है कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से का जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है, जो
0: तो अजनबी गाना,
1: हाँ, तो उसमें सीडी मिला। पिक्चर अभी के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे
0: जी,
1: तो मैं उसका सीडी, अब जवानसी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
0: आपकी वाइफ ने रखा था?
1: हाँ, घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब सब करके कि श्रेयसी, मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की है वो तो नामों को लेके उनका
0: जी जी,
1: हमारी फैमिली में उनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ, वो छैया छैया के बाद ये और फिर ये जब गाना शुरू आया अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे, गाने तो कमाल थे दिल से के, खैर आज भी झटका दे देते हर एक गाना उसका, तो उसमें वो जानसी
0: क्या बात है,
1: और वे तुलका लेकर रुको जानसी बोलो, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक्चुअली मेरी बेटी का नाम गुलजार साहब ने रखा है।
0: क्या बात है, तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
1: जान जैसी सिंपल
0: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी होगी, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और आपकी तरह ही धमाके कर रही है,
1: तो अभी अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: आपको असिस्ट कर रही है?
1: हाँ।
0: ओ,
1: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा इस सब जो सभी कब करते हैं वो करते रहते हैं, फिर मैंने कहा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ। तो मेरे साथ है अभी
0: जी। कौन सी फिल्म बना रही है
1: अभी? तो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो बनाएगी
0: जी। तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा?
1: जी, मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया।
0: जी जी जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर है, परदेश में है, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती। तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बात बताइए।
1: जिमी से ये था कि मुलाकात, जो पहली फिल्म की मैं कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें जिमी से मिला, उसको चाहिए था उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था,
0: सलोने से दिखते भी हैं,
1: तो उसमें कैरेक्टर का वो था दिखाना था कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत खराब हो जाती है, गुंडे के साथ वो रहने लगता है और उसका कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीफ बच्चा, तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ, तो
0: जी बताइए बिल्कुल।
1: हाँ, तो उस वक्त

0: हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तवार भी शरीफ लगता था तब, तो ये हुआ। फिर ये क्या हुआ भाई, जैसे याराना दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
1: जी जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा,
0: जी
1: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
0: और आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे उसके कारनामों से आप थोड़ा
1: इंस्पायर हुए।
0: इंस्पायर नहीं, वो कारनामे विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते, लेकिन कितना इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई सब करने की, है ना?
1: तो समाज के सामने सच्चाइयां लाना?
0: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समाज के सामने समाज में सच्चाई है तो अखबार पढ़ के समझ में आ जाती है, मुझे अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो। तो मैं उस तरह का बदलाव बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का,
1: बिल्कुल हाँ। सच्चाई यथार्थ के करीब,
0: मतलब हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने दो में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब, सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरी, क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
1: जी बिल्कुल,
0: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती का ऐसा रिश्ता जो आदमी खुद बनाता है,
1: बिल्कुल।
0: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या किया उनको कर, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं, तो आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, वो आपको उस दोस्तों को उस तराजू पे खरा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ये आपका खुद का अचीवमेंट है
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने मुझे दोस्त का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बुलेट राजा में ये दोस्त रखे
1: जी। और इसी फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी थे,
0: हाँ, बाकी उसमें और भी कैरेक्टर्स हैं, जी जी जी।
1: तो सैफ अली खान और गुलशन ग्रोवर से जुड़ी हुई, जब आप शूट कर रहे थे तो कुछ खास बात बताना चाहेंगे?
0: अब उनके बारे में, उन्होंने तो इतनी फिल्में की हैं, सब लोगों ने, सैफ के साथ दोबारा मैंने कभी काम नहीं किया, ना ही गुलशन जी के साथ काम किया, मिलते हैं तो मैंने सैफ के साथ किया एक्टिंग की, मैं एक बार वो बैन शायद भी हो गया था, एक शो था तांडव, जिसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत चीजें दिखाई, उसके वजह से उसमें सैफ था, मैं शुरू के दो एपिसोड में था, पहले मैं तो मर जाता हूँ, बाकी दो एपिसोड मेरी मतलब बताओ लाश में पड़ा हूँ। तो उसमें सैफ का मैं फादर बना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे दिखाया था, तो बस वो काम हमने साथ में किया, उसके बाद हमने कभी साथ में काम किया नहीं।
1: यहाँ अब गानों का फिर से जिक्र करते हैं, और बताइए आपको पुराने गाने ज्यादा पसंद है, हालांकि नए दौर के एक कामयाब डायरेक्टर पसंद करते हैं ज्यादातर पुराने गाने, तो यहाँ पर कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
0: आप वो दिल तो है दिल,
1: मुकद्दर का सिकंदर,
0: मुकद्दर का सिकंदर, वो कलांजी आनंद जी का, ये बड़ा यूनिक सॉन्ग है
1: जी,
0: बहुत बहुत खूबसूरत गाना है,
1: आप चाहें तो इस गाने में सुर मिला सकते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: आपने कई बार
0: लता जी गा रही, मैं सुन लिया।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: तिग्मांशु जी विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं। 70वां स्थापना दिवस है ये। और तिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है, और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग भी की है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज्यादा आकर्षित करता है?
1: नहीं, हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। तो छोटा पर्दा पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो, और उस जब भी, लेकिन हमने, मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं, मेरी कक्षा के जो हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े, तो सबने टीवी किया। पर उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, बोले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से 3-4 दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए, तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी, तो हमने जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था। उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
0: जी जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए, जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे तो दूरदर्शन, एक दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं, तो वो कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
1: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे, श्याम पनिगल जी का आता था, फिर भारत एक खो जाता था,
0: फिल्मों का इंतजार होता था,
1: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं, इलेक्शन के टाइम पे फिल्में खूब दिखाई जाती थी, दिन में 3-3, 4-4 पिक्चर है, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे, तो हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी दिखी जाए, तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
0: जी जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसी कोई याद?
1: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
0: एशियाड जब शुरू हुआ था
1: तब आया था, 82 में।
0: जी,
1: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के यहाँ, तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो, लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने, छोटे छोटे जब होते तब बहुत गुजारा, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा, थिएटर करते थे, तो कहीं बजाना है या फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज्यादा रहते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
0: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में?

0: अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो इस दुनिया में मत जाओ। तो
1: आप कभी कभी नहीं माना किया, कभी इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खुद भी बहुत फिल्में देखते थे और शायद मैंने छोटा सबसे छोटा होने का मुझे मैंने उसका नाजायज फायदा भी उठाया तो मुझे डांटा भी कम जाता था।
0: दुलारे बेटे थे।
1: हाँ, दुलारा बेटा था जैसे मैंने बड़े भाइयों में 7-8 साल का डिफरेंस था तो जो भी होता था उनके साथ होता था मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं NSD में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे गुजर गए थे लेकिन मदर ने हमेशा जाओ।
0: तो मुंबई आए शुरुआत में तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
1: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष नहीं किया। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ लेकिन ऐसे कुछ
0: तकलीफों से नहीं गुजरा।
1: बिल्कुल नहीं, मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि घर वाला मेरे भाई मेरे मदर फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो एनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ। मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
0: जी।
1: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था उस वक्त होता नहीं था। फिर बैंडेड क्वीन भी तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहां लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे। अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर का नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, शेखर कपूर का नाम सब जानते थे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि वो डिग जैम के मॉडल भी हुआ करते थे तो लोग उनको पता था उनके असिस्टेंट और ठीक है
0: जी।
1: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा। मैं जब यहाँ आया तो पहले मैं इस सागर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जब इधर INS हमला जाते हैं
0: जी जी
1: वहाँ रहते थे तो मैं साल भर उनके साथ था तो कोई दिक्कत नहीं, नेवी में आप हैं बढ़िया सा कमरा है तब नेवल फैसिलिटी नो प्रॉब्लम।
0: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए और क्या ना हो तो ना आए।
1: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना वो सबसे बड़ी चीज है, तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा तब तो आगे बढ़ो, लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब NSD में मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा और मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था
0: जी जी।
1: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल वोल करके जिंदगी खत्म हो जाती
0: जी। बिल्कुल, और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती तो, और आपकी एक फिल्म है साहब बीबी और गैंगस्टर जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
1: ये पार्ट टू का गाना है, जाती इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया, लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़ावा से कई गाने पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, हुआ बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं
0: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: bir tuş hai, yaar bhi bhi roosh hai. Murde mein bhi josh hai, ishaahi shabd kosh hai.
1: आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका है, हमारा नहीं.
0: तनी हुई हर

आप चाहते हो ना कि जंग हो, होगी, कम आसान होगी, आपकी कसम।

0: तो ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
1: ऐसी कोई बहुत लीक से हटके नहीं बनाता हूँ। अगर आप मेरी फिल्मों की पूरी मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही कमर्शियल जो चलने वाली फिल्में होती है ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ।
0: जी जी।
1: कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ। जिसको आप बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है।
0: जी,
1: बाकी
0: जी।
1: मैं कोई लीक मैं लीक से बिल्कुल हटना नहीं चाहता। मेरे लिए फिल्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग। वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीजें मुझे मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कभी बनाऊंगा मैं।
0: जी जी।
1: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द इयर्स एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम जिससे मैं आपसे मिलूंगा। आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात महसूस लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से किसी नए आदमी से मिलकर कोई फिल्म देख के कोई नॉवल पढ़ के आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस तो जिंदगी में एक बार आकर फिर टिक जाता है, फिर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप।
0: जी जी बिल्कुल।
1: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो फिर आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। वही आपके सारी कला आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं सबके पीछे वही है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे। जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
0: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान आपकी फिल्म।
1: जी जी।
0: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए?
1: कठिन तो कुछ नहीं होता
0: आपके लिए तो बिल्कुल नहीं।
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं आपने किया आपको मालूम है कैसा होना है। वहां पे कठिनाई होती है अगर आप ऐसी जगह भी जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में जहां पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका बांदा वाला रीवा सतना मध्य प्रदेश यूपी इलाहाबाद के भी बहुत नजदीकी है।
0: जी जी।
1: तो वहां पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पे पुलिस भी थी हमारे साथ, वो बैठे रहते थे अपने जीप में तो शूट कर रहे थे हम लोग। सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गया आगे जाके मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार ऐसे रस्सी होती है वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था या तो खा गया जंगली जानवर या क्या हुआ सबमरी, या तो मार के लटकाया गया है या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वही नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी पक्की सी थी। अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहां देखा वहां पे एक स्पॉटेड डियर था बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में। तो ये सब चीजें हाँ थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता आपको।
0: जी जी। डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाए?
1: जी सुनाइए, दाएं दाएं
0: सुनते हैं।

0: दिग्मांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद वारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने कि वहां पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई।
0: तो अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है। तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नजरिए से कि एक अच्छी फिल्म दे दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं और चीजें पढ़ता हूं, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियो पॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज्यादा इन चीजों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ किसी ने कुछ अच्छा नई किताब है कुछ अच्छी लिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है फिक्शन बहुत।
0: जी,
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे पढ़ता हूँ मैं।
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक हैं, उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है। उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं।
0: क्या बात है।
1: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
0: जी जी। और अब हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए।
1: जो मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ पैगाम दूं। सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिलकर इस खूबसूरत दिन में, आज विविध भारती के 70 इयर्स पूरे हुए हैं, उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे जिंदगी में।
0: जी, आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक है।

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है, तिग्मांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये डेढ़ घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं जरूर आऊंगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
3: तो स्वागत है आपका।
2: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
3: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, मुझे अच्छा। याद नहीं आ रहा है, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
2: तो जब तक थोड़ा पूर्णिमा में कन्वर्ट
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या ये मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, वो रबिश। इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात
2: जी।
3: अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी, ना बड़ों।
2: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
3: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
2: जी बिल्कुल,
3: है ना,
2: बिल्कुल,
3: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से, उनके यहाँ पे

0: ये एक चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया मोरया गजानना मोरया गजानना सुख दे सकल जना, ऐसे
1: जी।
0: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले उनकी जितनी टीम थी जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
1: जी, जी
0: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
1: जी
0: उसमें
1: जी।
0: मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा जाएगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों बाकी जो टीम था उनका कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा एकदम से क्लिक हो जाएगा। पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी। तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी है, मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही, ने कहा छोड़ सुषमा छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में दो पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बहारों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
1: जी।
0: तुम

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती है। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना
0: सलगम जी।
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी।
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने एक गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तू तू तू तू
1: हमें
0: दिखाई देती है ना, और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने जी, मेरे उस्ताद जी, ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही
1: मानती
0: हूँ, वो पूर्णिमा ही गा सकती है।
1: ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक USP है
0: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होती थोड़ा सा,
1: हाँ,
0: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज,
1: हाँ, वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
0: वो
1: ये
0: बाल, है, बाल मन था,
1: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए
0: जी, जी।
1: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब्बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
0: जी।
1: तो टेक्सचर आज सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
0: जी।
1: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस, और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी। प्रोफेशनल साजिश थी कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
0: बनानी है तो।
1: जी।
0: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
1: सुषमा से पूर्णिमा यही

0: ही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी, तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: पर
1: एक अलग रूप से जी पाती
0: से जी पाती उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तारा ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन। बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना? हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना? क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना? तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदा के नीचे, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी,
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से। और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
1: बिल्कुल
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी।
1: बहुत
0: वो बहुत जरूरी,
1: ये एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी नहीं।
1: पूर्णिमा जी एक गीत और सुन लेते हैं आपके पास,
0: शाम है धुआं धुआं।

0: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तु तु तु तु
1: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना
0: जी,
1: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है
0: जी,
1: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रेटजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
0: जी,
1: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही मैं हमेशा कहती हूँ एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा, है ना।
0: सही कहा।
1: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया, तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तु तु तु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरी मरा मुझको भी चलना सिखा वो वाला, तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
0: जी के जी
1: मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरी और गीता दत्त जी का स्टाइल जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
0: हुआ।
1: फिर दूसरा गाना तो तू तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ,
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट मेरा यूएसपी है मेरा मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ वो शायद ही कोई दे सके। सॉरी मैं खुद से ये कह रही हूँ आज,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया, वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले, तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं, वो तो मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है
1: जी,
0: तो उनका उनकी डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर जिसे हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना
1: जी,
0: वो एक अलग टाइप की।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो मैंने नोट किया था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर हाँ, का सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंस से।
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना?
1: आपने, और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा रही थी, है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंद और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये एक अजीब बात है हाँ, कि करिश्मा को मेरी इनफैक्ट काजोल को भी वो मिस्टर लोभा लोभा। मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
1: क्या बात,
0: किसी और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया हाँ, ना, तुमने तो खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो एक्सप्रेशन
1: हाँ,
0: मैं खुद भी मतलब शॉक में हूँ।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना हाँ, सुना कितना, तो मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है वो आदमी, इंसान ही बेकार।
0: देखिए करिश्मा का एक अजीब एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उसपे, पर वो कमबख्श जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया, छोड़िए। खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हैं, वो हम पर छोड़ देते
1: जी, जी, जी।
0: सुने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात है,
0: तो ये सब हमारे इनपुट्स
1: जी, बिल्कुल,
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारे इनपुट्स होते हैं। सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक के खुद की जो आईक्यू है उसका जो है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा रही है उसे पकड़े, मतलब लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही है ना,
0: बिल्कुल।
1: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है
1: हाँ,
0: पर कुदरत

0: भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम बढ़ाते।
1: तो आप कहें तो यही गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक लिया जाए।
0: प्लीज, प्लीज
1: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे।
0: प्लीज
1: तो आइए सुनते हैं।

0: तो कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने मैं गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफकोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी, जी।
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही
0: हूँ, जी, जी, जी।
1: इतना भी किसको मिलता है।
0: बिल्कुल, और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहां हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि मुझे वो गाना मिल जाता।
1: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं मंदाकिनी जी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच

0: हम फिजिकल फॉर्म में हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है
1: जी,
0: जगत माता है वो, तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
1: बिल्कुल,
0: हमारा
1: बिल्कुल,
0: बुरा कभी नहीं सोचेंगे।
1: और उन्होंने सोचा भी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
0: बहुत बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ
1: जी,
0: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आज ये सोशल मीडिया में मैं इतनी, मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं
1: जी।
0: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
1: जी,
0: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझे पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला कुठे।

0: जरा चुकला छो मंदा।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया, मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा। पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूं, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी। अभी ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। बात वहीं खत्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया। फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास। मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बाजा मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है। सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अहोभाग्य मैं कहूंगी। ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है, जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
1: ये बड़ी बात है।
0: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मंदाकिनी जी।
1: बिल्कुल,
0: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक।
1: बिल्कुल सही कहा। तो एक मराठी गाना सुनिए, बताइए।
0: मेरे बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेलके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने। तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
1: जी,
0: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
1: जी।
0: किल बिल पक्षी बोलती।

0: बहुत सुंदर, क्या बात है।
1: तो मराठी गाने बस, मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि बंगाली, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी आपने गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण यानी जो डिक्शन आप करते हैं और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था।

0: मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं
1: जी, God पर gift.
0: ये गॉड गिफ्ट, ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था. वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी, तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा. मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आया. जब मैंने जब रिमिक्स की बात की ना, नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है. ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है. ऊंची है बिल्डिंग टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बन है टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं टाडा रा रा रा रा रा रा रा रा, आजा आजा आजा बैंड बाजा. तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
1: अनु मलिक के साथ,
0: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए है ना, पर वो रिमिक्स से मुझे याद आया.

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिन ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया, जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू धड़कन में तू, ओ मैं जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया, और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है, एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना। अब आप बोलोगे क्या, अरे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है।

0: से नाबूद। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो है ना, तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है।
1: माहौल वैसे ही होता था, वो गर्माहट।
0: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा। तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती ना
1: हो जाए,
0: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
1: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
0: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
1: जी।
0: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
1: तुला हुआ है।
0: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है,
1: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर
0: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
1: वो सीखेगा कहाँ से आगे के लिए।
0: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना। मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
1: रातों रात स्टार,
0: इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो। हमने सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको
1: करियर जो बनता
0: है, हर बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है क्योंकि आज वक्त बदल गया है, तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता है समझदारी उसी में
1: जी। एक गाना सुन लिया जाए,
0: कौन सा बताइए,
1: आप बताइए आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद है।
0: हकीयत मिला ले राजा, आए हैं दिन महार के, हकीयत चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, मिसलो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो व तेरी, उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना मेरी आवाज में, इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही, मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: पर आज का ये मौका मैं नहीं गवाना नहीं चाहती,
1: और हम भी ये मौका नहीं गवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: ये चाहिए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं, और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं, और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका, मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे, तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहां पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे। हाँ। वो भी इस गाने को सुनना पसंद करते हैं।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज
1: है?
2: पे यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना, जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा,
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चिता की आग जलेगी
1: जी।
2: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
2: प्लीज, चने के खेत में।
1: अरे

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम में 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुख्य कार्यक्रम, उनका प्रसारण समय

अब से कुछ ही पलों में यानी 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी गीत। राजस्थानी गीत आपको सुनाएंगे लंगर मंगानिया रिमिट।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से 7 बजे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात्रि 10:20 पर।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार सातवीं जिले की चिट्ठी 6:30 पर जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम 7:30 पर जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से रिले रात्रि 10:00 आप सुनेंगे। जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण के डेली हाइलाइट्स। विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे 5:30 पर रात्रि 9:00 भी आप सुन सकते हैं।

0: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

आपने सुना राजस्थानी गीत लंगर मंगानिया और मीठी भाई की आवाज में। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

0: प्रस्तुति कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लम्हे फिल्म के गीत से, जिसे गाया है इला अरुण और लता मंगेशकर ने बोल आनंद बख्शी के संगीत शिव हरी का।

अभी आपने लता मंगेशकर और इला अरुण को फिल्म लम्हे में सुना। लाल सिंह चड्ढा, लीजिए अब इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत प्रीतम का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने दिन करते
0: दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया पतंगा फिल्म का गीत। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है इंदिवर ने।

क्या कुर्ता है पाजामा तंग तंग है, ढीला ढीला कुर्ता है पाजामा तंग तंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपना ही रंग है।

आतिफ असलम और पलक मुच्छल को सुना। फिल्म थी रुस्तम, तर्ज बनाई थी जीत गांगुली ने, बोल लिखी थे मनोज मंतसर ने। अब सुनिए जाने अनजाने फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी की लिखी इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत तमाशा फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की

0: उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेंगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के धीमे पड़ने से हालात अनुकूल होने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 49वें ओवर में 7 विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए तराने नए पुराने इस कार्यक्रम के शेष गाने। अगला गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ प्रिंस फिल्म से है। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: जाए।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया बेरंगू किया है महासटैली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
9: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनी।
8: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
10: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
8: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
11: तुम्हारी याद सताती है
8: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
12: तराने नए पुराने कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में सैयद कादरी का लिखा गीत, आवाज केके की फिल्म का नाम गैंगस्टर।

अब सुनिए आशा भोसले और आरडी बर्मन का गाया कारमा फिल्म का गीत। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

देखो देखो वो आ गया।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान, आदर्श आचार संहिता लागू, मतदान 4 चरणों में होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया, कहा महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण सभ्य समाज की पहचान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है। और राज्य से मॉनसून की विदाई हुई, दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। 8 अक्टूबर से लोक सूचना जारी होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर, दूसरे का 29 अक्टूबर, तीसरे का 4 नवम्बर और चौथे चरण के वोट 14 नवंबर को डाले जाएंगे। वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए 25 और 31 अक्टूबर तथा 6 और 16 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने अलग अलग चरणों के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने और नाम वापसी की तारीखों का भी ऐलान किया है।
4: मतदान की तिथि और समय जिला परिषद पंचायत समिति के लिए 23 तारीख को है, 23-10 को। फिर पंच सरपंच पद के लिए जो नामांकन की तिथि है वो है 24-10 और मतदान की तिथि है वो 25-10 को है और मतगणना जो है वो 25-10 को है और उप सरपंच का चुनाव 26-10 को है। मतलब पार्टी जो है वो 22 तारीख से 26 तारीख तक गांव में रहेगी 5 दिन। इसी तरह से ये द्वितीय चरण 28 को शुरू होगा।

0: 1 नवंबर को खत्म होगा, तृतीय चरण 3 नवंबर को शुरू होगा, 7 नवंबर को खत्म होगा, चतुर्थ चरण 13 नवंबर को शुरू होगा और 17 नवंबर को समाप्त होगा।
1: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मतपत्रों से होंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। 14,403 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में जैसलमेर और फलौदी में वोट डाले जाएंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 18 लाख से अधिक वोटर होने के कारण चुनाव 4 चरणों में होंगे।
0: 12 श्रीगंगानगर, करौली और कोटा के प्रमुख उपप्रमुख और इनमें सम्मिलित पंचायत समिति के प्रधान उपप्रधान, इनका पंचवर्षीय कार्यकाल दिसंबर 26 में पूर्ण होगा। अतः उक्त पदों के आम चुनाव की तिथियों का निर्धारण ये पृथक से किया जाएगा।
1: पंचायत चुनाव के लिए कुल 4,03,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 2,08,00,000 से अधिक पुरुष और 1,94,00,000 से ज्यादा मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 168 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इन चुनाव के जरिए 1,55,000 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। गौरतलब है कि ये चुनाव 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों में होने जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए 3,17,000 से अधिक कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए लगभग 2,72,000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनातगी रहेगी। राज्य सरकार ने आज भारतीय पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव धीरज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब संजीव नैन को सीकर के पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। कुंदन कवरिया दौसा, अजय सिंह राठौर सिरोही और आदित्य काकड़े फलौदी के पुलिस अधीक्षक होंगे। इस बीच राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों के भी तबादले और पदस्थापन किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में इन्हें तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्थानांतरण सूची में कई उपखंड स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। मुख्यमंत्री आज जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास मातृशक्ति की सफलता और कहानियों से भरा हुआ है। इनमें संघर्ष, साहस और संकल्प की शक्ति दिखाई देती है जो किसी भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया और विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त महिलाएं राष्ट्र निर्माण का आधार हैं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की प्रतिबद्धता, परिश्रम और सामूहिक शक्ति से राजस्थान आत्मनिर्भर और सक्षम बन रहा है।
2: हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। लखपति दीदी योजना के माध्यम से, कृषि सखी के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़ी हुई बहनें आज घर से बाहर निकल करके आत्मनिर्भर बन रही है। इसके लिए मैं इस राजस्थान की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एनएचएम के तहत 60 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लखपति दीदियों को स्कूटी की चाबी वितरित की। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 150 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी ऋण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 93 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री बिरला ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोटा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट की स्थापना के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मिल गई है। इससे आने वाले समय में हाड़ौती संभाग और आसपास के कैंसर रोगियों को इलाज के लिए जयपुर और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में 25 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को भी वित्तीय स्वीकृति मिली है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन

0: को विकसित करने का काम कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण बाजार तक उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में आयोजित गौ पालक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सबसे अधिक फायदा पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, बट इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है और बैंकिंग सेक्टर स्थिर तथा मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। ऐसा बैंकों की बैलेंस शीटों में महत्वपूर्ण सुधार और एक चुनौतीपूर्ण सफाई प्रक्रिया के बाद हुआ है। इससे उनकी विश्वसनीयता मजबूत हुई है। एनपीए में आई तेज गिरावट से बैंक संकट से निपटने की बजाय सुधारों को बढ़ाने की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। एजेंसी ने कहा है कि बैंकों के लिए कामकाजी माहौल अनुकूल बना रहेगा, जिससे नीतिगत स्थिरता और घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। एजेंसी का कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति बैंकिंग सेक्टर के लिए सशक्त आधार तैयार कर रही है। साथ ही मूडीज ने दोहराया है, सरकारी बैंकों को सरकार का समर्थन मिलता रहेगा, जिससे वैश्विक जोखिमों के बावजूद भारत का बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित और स्थिर बना रहेगा। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: और अब मौसम। प्रदेश में अक्टूबर महीने की शुरुआत में भी गर्मी का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर और झुंझुनू जिले के पिलानी सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आई है। सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर और नागौर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिरोही जिले के आबूराज में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इससे रात के समय ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम के इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगा है। जहां दिन के समय तेज धूप है, वहीं सुबह और शाम कई इलाकों में हल्की ठंडक का एहसास होने लग रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि राज्य से मानसून की विदाई हो चुकी है।
3: आज प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। औसतन यह विदाई 30 सितंबर तक मानी जाती है, जो कि पिछले 30 सालों के अगर हम रिकॉर्ड के एवरेज किसी के अनुसार देते हैं, तो आज मानसून 3 दिन देरी के साथ में राजस्थान से विदा हो गया है। और इसी के साथ में प्रदेश में जो है एक बार पुनः शुष्क वातावरण हो गया है। आगामी 5 दिनों तक चूंकि एक एंटी साइक्लोन का प्रभाव जो है राजस्थान पे देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से तापमान में हल्की वृद्धि रहेगी और मौसम जो है मुख्यतः शुष्क बना रहेगा।
0: जापान में चल रहे एशियाई खेलों के 14वें दिन आज भारत ने पुरुष क्रिकेट और कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने कोरिया के चांग सांग हान को हराकर भारत को स्वर्ण कामयाबी दिलाई। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर मेडल टैली में 4वें नंबर पर पहुंच गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान, आदर्श आचार संहिता लागू, मतदान 4 चरणों में होगा।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया, कहा महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण सभ्य समाज की पहचान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और राज्य से मॉनसून की विदाई हुई, दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही जिले में गांव की सरकार चुने जाने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले में पंचायती राज चुनाव के तहत 8 पंचायत समितियों में प्रधान और 262 ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे। गांव की चौपालों पर राजनीतिक बैठकें शुरू होने के साथ ही प्रत्याशियों की दावेदारी देखने को मिल रही है। इससे पहले जिले में 6 नगर निकायों के चुनाव 2 चरणों में सम्पन्न हुए। इन चुनावों में सवाईमाधोपुर, खंडार, बोली और वजीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के सभापति और अध्यक्ष चुने गए। वहीं गंगापुर सिटी और बामनवास में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मानसून के दौरान 3 माह बंद रहने के बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नया पर्यटन सत्र 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। गणेश धाम गेट पर जिला कलेक्टर कानाराम, मुख्य वन संरक्षक शारदा प्रताप सिंह और उप वन संरक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्यटन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पार्क में प्रवेश कराया। पहली पारी में सफारी को लेकर पर्यटकों, वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जिले में वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत हुई। गणेश धाम पर आयोजित हुए कार्यक्रम में ग्रामीण और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय उद्यान का निशुल्क भ्रमण कराया गया। वन्यजीव सप्ताह के दौरान वन और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के साथ समाज कल्याण सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दिन वृद्धजन का सम्मान किया गया और बुजुर्गों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच की गई। जिला मुख्यालय पर 70वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस लाइन परेड मैदान पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में राज्य के 40 विभिन्न जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। जिले में बीते दिनों विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेवा के रंग राष्ट्र के संग थीम पर विभिन्न विभागों की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जिले में भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया गया। इसके अंतर्गत माय युवा भारत, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी सहित अन्य संगठनों और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जिले में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुलाब बाग स्थित राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके पश्चात स्वच्छता कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया गया। अक्टूबर माह की शुरुआत में राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न राजकीय विभागों में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। समारोह में जिले के जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सहित नव नियुक्त कार्मिक शामिल हुए। जिले में बीते दिनों धार्मिक आयोजन हुए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश का लक्खी मेला 13 से 15 सितंबर तक आयोजित किया गया। मेले के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिनेत्र गणेश के दरबार में धोक लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिले भर में गणपति की विधिवत रूप से स्थापना की गई तथा 10 दिनों तक विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गंगापुर सिटी में भी हर वर्ष की भांति भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई काली सिंध नदी तक पहुंची, जहां गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जिले में पर्युषण पर्व के अलावा रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तेजादशमी का पर्व भी श्रद्धा भाव, आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

0: जिले में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दिन में धूप में तेजी के चलते गर्मी का असर बना हुआ है। इसी के साथ सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में आए पंचायत चुनाव रो ऐलान, चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हुई, चार दौर माए वोट पड़ेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए नारी शक्ति सम्मेलन न संबोधित कीना, कहो महिलाओं रो मान और मजबूती सभ्य समाज री पिछाण। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो सरकार गांवाई हलका माए माली व्यवस्था मजबूत बनावन सारू पशुपालन आधारित व्यवस्था विकसित कर रही है। और प्रदेश माए चौमासा री बिरखा बंद हुई, दिन रात रा तापमान माय आंतरो बध्यो। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रदेश माय आज पंचायतों रा चुनाव रा ऐलान सा गई। चुनाव वाला हलका माय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य रा निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह जयपुर माय खबर नवीसा ने संबोधित करता था का बतायो कि प्रदेश माय पंचायत चुनाव चार दौर माय कराया चावेला। 8 अक्टूबर ने चुनाव री लोक सूचना जारी करी चावेला। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा चुनाव सारू पहला दौर माय 23 अक्टूबर, दूजा दौर माय 29 अक्टूबर, तीजा दौर माय 4 नवंबर और चौथा दौर माय 14 नवंबर न वोट पड़ेला। पंच और सरपंच ओहदा सारू 25 और 31 अक्टूबर और 6 और 16 नवंबर न वोट पड़ेला। निर्वाचन आयुक्त बतायो कि वन स्टेट वन इलेक्शन रा तेत कराया जा रहा पंचायत चुनाव रा तेत सरपंच और वार्ड पंच रा चुनाव मतपत्रा माथे छाप लगार, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम रे जरिए कराया जावेला।
2: मतदान की तिथि और समय जिला परिषद पंचायत समिति के लिए 23 तारीख को है, 23/10 को। फिर पंच सरपंच पद के लिए जो नामांकन की तिथि है वो है 24/10 और मतदान की तिथि है वो 25/10 को है और मतगणना जो है वो 25/10 को है और उप सरपंच का चुनाव 26/10 को है। मतलब पार्टी जो है वो 22 तारीख से 26 तारीख तक गांव में रहेगी 5 दिन। इसी तरह से ये द्वितीय चरण 28 को शुरू होगा और 1 नवंबर को खत्म होगा। तृतीय चरण 3 नवंबर को शुरू होगा, 7 नवंबर को खत्म होगा और चतुर्थ चरण 13 नवंबर को शुरू होगा और 17 नवंबर को समाप्त होगा।
1: निर्वाचन आयुक्त बतायो कि वन स्टेट वन इलेक्शन रातेत कराया जा रहा पंचायत चुनाव रातेत सरपंच और वार्ड पंच रा चुनाव मतपत्रा माथे छाप लगार, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रे जरिए कराया जावेला।
2: 12 श्रीगंगानगर करौली और कोटा के प्रमुख उपप्रमुख और इनमें सम्मिलित पंचायत समितियों के प्रधान उपप्रधान, इनका पंचवर्षीय कार्यकाल दिसंबर 26 में पूर्ण होगा। अतः उक्त पदों के आम चुनावों की तिथियों का निर्धारण ये पृथक से किया जाएगा।
1: पंचायत चुनाव में 4,03,00,000 उम्बत्ता लोग वोट देवन रा पात्र भेला। आम आए 2,08,00,000 उम्बत्ता पुरुष और 1,94,00,000 उम्बत्ती महिलाएं शामिल है। इस आगे 168 थर्ड जेंडर मतदाता ही है। वोट समारे 7 से 6 बजे ताई दिया जा सकेला। ध्यान जोग है कि ए चुनाव 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियां माए भेला। चुनाव रा काम माए 3,17,000 उम्बत्ता कर्मचारियां ने ड्यूटी लगाई जावेला। कानून व्यवस्था बनाई रखन और शांति सागर चुनाव करावन सारू 2,72,000 उम्बत्ता पुलिस वाला ही तैनात कराया जावेला। राज्य सरकार 14 आईपीएस एहलकार रा तबादला कर दीना है। कार्मिक विभाग रा संयुक्त शासन सचिव धीरज कुमार सिंह का नियम जारी हुक्म रे मुजब संजीव नैन ने सीकर रा एसपी बनाई चिया है। कुंदन कंवरिया दौसा, अजय सिंह राठौड़ सिरोही और आदित्य काकड़े फलौदी रा एसपी बनाई चिया है। इस आगे 15 आरएएस एहलकारा राई तबादला करी चिया है।

0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि महिलाओं रोमान और मजबूती किनी सभ्य समाज री पिछाण है। वे आज जयपुर में राखी जी नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम में बोलटिया हा। श्री शर्मा कहो कि भारत रा इतिहास में मायणा री कामयाबी री कहानियां सागे संघर्ष हिम्मत और संकल्प री ताकत नजर आवे है जो समाज में मोटो बदलाव ला सके है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महिलाओं सागे बातचीत कर न्यारी न्यारी सरकारी योजनाओं वानी जिंदगी में आया चोखा बदलाव री जानकारी लीनी। वह कहो कि मजबूत महिलाओं देश बनावन री बुनियाद वह है। श्री शर्मा कहो कि महिलाओं री मेहनत और भेड़ी ताकतों प्रदेश खुद रेपाण उबो भे रियो है।
1: हमारी माता बहने आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। लखपति दीदी योजना के माध्यम से, कृषि सखी के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़ी हुई बहने आज घर से बाहर निकल करके आत्मनिर्भर बन रही है। इसके लिए मैं इस राजस्थान की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM रातेत 60 एम्बुलेंस ने हरी झंडी बता रवाना कीनी और लखपति दीदिया ने स्कूटी री चाबियां सौंपी। इस आगे श्री शर्मा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रो फायदो लेवन वाला रा खाता माए 150 करोड़ रुपया री रकम भेजी। वह लखपति दीदी ऋण योजना रातेत खुद सेवक समूह ने 93 करोड़ रुपया रा कर्ज दीना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा एहलकाना सागे मीटिंग कर और स्वास्थ्य एवं जुड़िया सुविधा और बेहतर बनावन रबारा माए चर्चा कीनी। वे बतायो कि कोटा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट खोलन सारू करीब 150 करोड़ रुपया की मंजूरी मिल गई है। श्री बिरला कहो कि मेडिकल कॉलेज एवं जुड़िया अस्पताल माए 25 करोड़ रुपया रा न्यारा न्यारा काम सारू ही माली मंजूरी दे दी रिजी है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो है कि सरकार गांवाई हलकारी माली व्यवस्था ने और मजबूत बनावन सारू पशुपालन रा काम ने बढ़ावो दे रही है। इनमाए गोबर बायोगैस और जैविक खाद बनावन लेर दूध हुमणी चीजा ने और बेहतर बनार बाजार ताई पहुंच बनावन रे कोशिशा शामिल है। श्री शाह आज भोपाल में राखी जा गौ पालक सम्मेलन में बोल रहा है। वह कहो कि सहकारिता मंत्रालय बनिया पाछे सब बत्तो फायदो लेवन वाला में पशुपालक ही शामिल है। गृह मंत्री आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारा रो जिक्र करता थका कहो कि भारतीय न्याय संहिता पूरी तरह लागू भया पाछे भारत री आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सब नुवी बन जावेला।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह कहो कि भारतीय न्याय संहिता पूरी तरह लागू व्या पाछे FIR दर्ज करावन लेर सुप्रीम कोर्ट ताई मामला रो निपटारो 3 साल री मियाद माय करयो जा सकेला। भात भात री चुनौतियां रे बावजूद देश री माली व्यवस्था तेजी आगे बढ़ रही है और बैंकिंग हलको थरता सागे मजबूत बन रियो है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। ऐसा बैंकों की बैलेंस शीटों में महत्वपूर्ण सुधार और एक चुनौतीपूर्ण सफाई प्रक्रिया के बाद हुआ है। इससे उनकी विश्वसनीयता मजबूत हुई है। NPA में आई तेज गिरावट से बैंक संकट से निपटने की बजाय सुधारों को बढ़ाने की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। एजेंसी ने कहा है कि बैंकों के लिए कामकाजी माहौल अनुकूल बना रहेगा जिससे नीतिगत स्थिरता और घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। एजेंसी का कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति बैंकिंग सेक्टर के लिए सशक्त आधार तैयार कर रही है। साथ ही मूडीज ने दोहराया है सरकारी बैंकों को सरकार का समर्थन मिलता रहेगा जिससे वैश्विक जोखिमों के बावजूद भारत का बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित और स्थिर बना रहेगा।

0: न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
1: अरब मौसम प्रदेश में आसोज महीना में आई गर्मी रो असर महसूस करियो चाहियो है। मौसम विभाग रे मुजब राज्य रा आतुई हल्का माय गर्मी रो बत्तो असर है। श्रीगंगानगर और झुंझुनू जिला रा पिलानी समेत कई ठोणा पारो 40 डिग्री सेल्सियस रे आरसार चाल रियो है। दूजी कानी राज्य रा उगनी और लंकाऊ हल्का माय रात्रि भगत पारो 1-2 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। सीकर भीलवाड़ा उदयपुर और नागौर माय रात्रि भगत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड करियो चाहियो है। सिरोही जिला रा आबूराज माय कम से कम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस न पीछियो। इस आगे दिन माय तेज तावड़ा तो सुबह शाम कई हल्का माय हल्की ठंडक रो एहसास वेवन लग्यो है। मौसम केंद्र जयपुर रा वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा बतायो कि प्रदेश माय चौमासा री बिरखा अब बंद वेगी है।
2: जी आज प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। औसतन यह विदाई 30 सितंबर तक मानी जाती है, जो कि पिछले 30 सालों के अगर हम रिकॉर्ड के एवरेज तिथि के अनुसार देते हैं तो आज मानसून 3 दिन देरी के साथ में राजस्थान से विदा हो गया है। और
1: अरब खबर एशियाई खेलों जापान में चल रहा एशियाई खेलों का 14वें दिन आज भारत पुरुषों की क्रिकेटर हॉकी होड़ और कुश्ती में सोना का तमगा जीतिया। भारत की क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबला में पाकिस्तान ने 19 रन हरार सोना रो तमगो जीतियो। पुरुषों की हॉकी होड़ में ही भारत मलेशिया ने 5-1 शिकस्त देर सोना रो तमगो देश ने जितायो। पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती होड़ में अमन सहरावत उत्तर कोरिया रा चौंग सोंग हॉन ने हरार भारत ने सोनारी कामयाबी दिराई। इस आगे भारत सोनारा 21, चांदीरा 27 और कांसारा 37 तमगा जीत और पदक तालिका में चौथा नंबर माथे पूग क्यों है। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। प्रदेश में पंचायत चुनाव रो ऐलान, चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हुई, 4 दौर में वोट पड़ेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में नारी शक्ति सम्मेलन ने संबोधित कीना, कहो महिलाओं रो मान और मजबूती सभ्य समाज रे पिछाण। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो सरकार गांवाई हल्का माय माली व्यवस्था मजबूत बनावन सारो पशुपालन आधारित व्यवस्था विकसित कर रही है। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा बंद हुई, दिन रात्रा तापमान माय आंतरो बढ़ियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
6: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
5: वो कैसे?
6: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार

0: लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
1: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोतावां ने आशाधा भाई का घना घना राम राम और अनीता जी आपने भी हमारा घना घना राम राम सा।
3: राम राम आशा जी आपने भी और सुनवा वाला सभी श्रोतावां ने अनीता की घनी घनी राम राम सा।
2: और आज का किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आप यही करेला का आपनों भी जो आप यही सोचा छा भाई जो भी काश्तकार भाया किसान बहन भाई या जो भी खेती बाड़ी से जुड़े छे वे लोग यदि कार्यक्रम ने सुने तो जो आप बातचीत करा वहां को कोई न कोई कोई न कोई रूप में उन्हें फायदो जरूर मिले। आज थोड़ी सी चर्चा आप यही करेला ही कार्यक्रम के मायने कि देखो सा आपनों भी लक्ष्य यही छे और किसान भाई भी यही चाहे छे भाई जो भी खेती बाड़ी में मेहनत वे करे उत्पादन लेवे वहां को चोखो फायदो चोखी मानो वहां की मेहनत को फल जरूर मिले वहां की आमदनी बढ़े। इताई हमेशा ही जया कहता रहे कि छोटी छोटी बात ही जहां को ध्यान रखना चाहे और वहां को ध्यान रखना हुआ काम कर मोटा मोटा फायदा लेना चाहे। अब इतनी सारी बात कदे कहीं आप ले रही हवा चाह आज बात यही करेला कि अगर अपना काश्तकार वहां फसल चक्र ने अपनावे चाहे तो वहां ने बहुत सारा फायदा हुए चाहे और दो चार फायदा तो आप बने तैयार ही बैठे जो।
3: देखो सर किसान भाई अक्सर यही सोचे चाहे कि भाई जी फसल जी खेत में चौकी फसल हो रही है आप उनको ही हर साल क्यों न बोवा क्योंकि जब चौकी हो रही है तो आपने लगे कि नहीं बड़ी आमदनी भी हुई है आपने बढ़िया फसल हुई है तो चौको बड़ी आपने को मुनाफा हो लो। पर किसान भाई ने एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए जी भाई एक ही खेत में लगातार एक ही फसल लगातार बोबा से उमें पोषक तत्वों की कमी होती जावे छे और दूसरी बात के ऊ फसल से जुड़ा कीट रोग भी बढ़ता रहे छे तो इसलिए या सबको एक ही समाधान छे कि आपने किसान भाई फसल चक्र में अपनाओ। भाई फसल चक्र को यही मतलब छे भाई एक ही खेत में हर मौसम में एक ही फसल न बार नयरी नयरी फसलों ने योजनाबद्ध तरीका से अपना किसान भाई
2: और मोटा फायदा की बात करा तो देखो मोटो फायदो या कि खेत की जो माटी छे उनकी उर्वरा क्षमता अगर बेहतर छे तो उत्पादन हमेशा ही बेहतर हो लो। तो जिया की सामान्य फसल के बाद अगर आप दलहनी फसल लेवा दलहन की फसल के बाद फिर दूसरी फसल लेवा तो वह यूं कहें कि आप कोई दिन तो पांच पकवान दूसरा खा रहे चो कोई दिन मीठो खा रहे चो और कोई दिन नमकीन खा रहे चो तो आपको स्वाद और सेहत दोनों बनने दीजिए। रोज रोज मीठो खा रहे चो तो आपने शुगर हो जावेली रोज रोज खाटो खटाई खा रहे चो तो आपने एसिडिटी हो जावेली तो वही माटी का स्वास्थ्य ने बेहतर राखबा के लिए भी फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जहां बार आप भूले भाई एक फसल आप बोया चो उमा उनको कोई कीड़ा बीमारी चे उनके हिसाब से छिड़काव बुरकाव कर रहे चो बार बार फिर उन्हें बो रहे चो तो फिर उनकी वह जो क्षमता चे वह कम हो रही है। बदल बदल बोवेला तो नया नया कपड़ा पहरोला तो आप भी तो सुंदर लागोला ना वही चीज फसल पर भी होवे छे लागू कि आपने बार बार अपना खेत में फसल चक्र अपनानी चाहिए जी और बदल बदल बोनी चाहिए जी ताकि जो उर्वरक शक्ति है वह बढ़ती रहे कीट रोग चे वे कम हो वे खरपतवार चे वह को भी नियंत्रण हो जावे
3: जी और साथ ही साथ मिट्टी की जो संरचना चे उम भी जैविक तरीका से सुधार होगा। भाई फसल अवशेष न्यारा न्यारा जड़ प्रणाली मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखवा में मदद राखे छे और उत्पादन छे ने उम भी स्थिरता आवे छे। मौसम एक या कोई एक फसल में समस्या आवा से किसान की पूरी जो आर्थिक स्थिति छे वह एक ही फसल पर निर्भर रहे छे पर अगर वो नयरी नयरी फसल बोवे लो तो सभी चीजा में धीरे धीरे नयरी नयरी तरीका से सुधार आवे लो और वहां की गुणवत्ता भी बढ़ती जावेली।
2: और एक बात को ध्यान मैं दिलावो चाहूंगी अनीता जी बात पे कि देखो सा आपनो च राजस्थान प्रदेश ऊ राजस्थान प्रदेश में पानी की या सिंचाई की जो व्यवस्था छे काश्तकार भाई के लिए कई के बहुत बढ़िया छे कई के छे ही कोने वैसे मानसून के भरोसे ही खेती करे छे तो अगर आप जो काश्तकार भाई फसल चक्र ने अपनावे छे तो कई फसल ऐसी हो छे जिन्हें कम पानी की जरूरत हो छे कई फसल ऐसी हो छे जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत हो छे तो अगर एक एक क्रम में या ना अपनावेला तो या जो संतुलन छे ना वो बने रहे वो और अगर इस मान लो आपका पानी की व्यवस्था कम छे आप हर बार ज्यादा फसल जिन्हें पानी की जरूरत ज्यादा छे वह बोया जाओ ना तो उनकी आपूर्ति कोनो वेली तो उत्पादन घटे लो इतनी पानी का जो संसाधन छे वाकी स्थिति ने देखता हुए भी फसल चक्र ने अपना जो काश्तकार भाई छे वे चोखू उत्पादन ले ही सके छे।
3: और देखो सा सभी फसल चक्र जो सभी किसान भाइयों के लिए सभी खेतों के लिए एक जैसे कौन हो मिट्टी को प्रकार मिट्टी की जो सिंचाई कतरी जरूरत है जगह की सुविधा कसी छे बरसात होवे छे कम होवे छे ज्यादा होवे छे या मौसम के हिसाब से ही फसल को चुनाव करनी चाहिए।

0: तो जो किसान भाई छे वो सिर्फ जो फसल चक्र की योजना बनावे छे ना, तो वो सिर्फ या ना सोचे कि कसी फसल ज्यादा हो गई या कसी फसल लेनी चाहिए, बल्कि या भी सोचे कि भाई कसी फसल हमारा खेत के लिए, खेत की माटी के लिए सही और बेहतर हो गई, तो ये सब चीजा सोच रही वह फसल को चुनाव करे। और देखो सा एक साथ ही अब अपना कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ भी पधार गए छे, श्री राजवीर सिंह मीणा जी, ये आपने जानकारी देवला बागवानी में अगरवुड पेड़ों का महत्व के बारे में,
1: तो जानकारी यहाँ से ले लेना पड़ी छोटा सा अंतराल के बाद में।
2: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना।
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: किसान भाइयों राम राम, आज आप बात कर रहे हैं अगरवुड की खेती राजस्थान में कहीं की जा सके है, एक तो नयो विषय है और इस पर जानकारी ले बहुत जरूरी है क्योंकि पारंपरिक खेती से अलग एक नवाचार है अगरवुड की खेती। इस विषय माते जानकारी देवा खातिर कार्यक्रम में आया है राजवीर मीणा। सबसे पहले तो मीणा साहब कार्यक्रम में स्वागत है आपका, राम राम साहब।
5: राम राम साहब, राम राम साहब किसान भाइयों।
4: अगरवुड की खेती की बात कर रहे हैं, हाँ पहले तो नाम या तो नयो है कि समझ में कौन आ रहे हो और काई है, तो आप बताओ साहब के अगरवुड काई हो वह
5: नाम नयो को ने आप अब भूल रहे से इन्हें। अगरवुड एक भारत को पारंपरिक पेड़ है
4: जी,
5: जिन्हें आप समय के साथ भूल गा, लेकिन आज की डेट के माने अगरवुड ने आप अगर जो सही तरीका से समझा तो सोना सू भी महंगी खेती या अगरवुड की खेती है। अपन नॉर्मल सब मतलब हर घर में पूजा कर रहे हैं और रोज अगरबत्ती जलावा,
4: बिल्कुल साहब,
5: तो अगरबत्ती को नाम ही अगरवुड से पड़े हो।
4: अच्छा,
5: भी अगरबत्ती को नाम अगरवुड का पेड़ से ही पड़े हुआ है। तो अगरवुड के बारे में पूछ गया मैं बताया था अगरवुड छे कहीं
4: जी। अच्छा, तो यो ही पौधो है जिन्हें पुराना लोग ऊद को पौधो कहता
5: खेता।
4: अच्छा साहब, तो मैंने साहब यो बताओ कि और काई काई विशेषता है, आप यो तो बता दिया कि अगरबत्ती बने है इसु, और कोई विशेषता एक ही बताओ।
5: विशेषता की अगरबत्ती सु खत्म को नो है, एक ही विशेषता है इसु दुनिया को सबसे महंगो इत्र अगरवुड सु बने है।
4: अच्छा,
5: एको सबसे महंगो ऑयल अगरवुड सु बने है। एक जो वुडिंग में यहाँ पर आभूषण बनावा तो सोना से भी महंगा आभूषण अगरवुड की लकड़ी का ही बने।
4: अच्छा,
5: अत्रो इम्पोर्टेंट है अगरवुड।
4: और अगर राजस्थान की बात करी जावे, अठे को अगर काश्तकार अगरवुड लगाबो चाह्यो है तो कहीं संभावना है अगरवुड की अठे खेती करबा की?
5: देखो साहब किसान भाइयों, अगरवुड को बेहा मेन चलन अपने सूक्ष्म एरिया में हुआ है, जैसे आसाम
4: जी,
5: केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नमी वाली जगह, अधिक वर्षा वाली जगह, लेकिन अपने राजस्थान में भी आप इन्हें कर सका टेक्निकल तरीका से।
4: अच्छा,
5: इसके लिए सबसे ज्यादा आपने जो ध्यान रख वाली विषय है बा, एक तो पेड़ ने लगाता ही पानी को ध्यान, तो आप इन्हें ड्रिप पे कर सका खेती ने।
4: अच्छा,
5: दूसरो दो साल ये पेड़ ने आपा कोई पेड़ की छाया या बड़ा पेड़ पुराना पेड़ ला गया अपने सीम डोरी पे, तो बीजी छाया में आपा इन्हें लगावा, दो साल अगर जो पेड़ सरवाइव कर रही है तो फिर टेंशन को ने।
4: अच्छा,
5: फिर निका आराम हुई खेती ने बल्क में कर सका आपा। तो अगरवुड में अधिक ध्यान देवा की जरूरत को ना, लेकिन मैनुअल ध्यान से कि दो साल आपने एक मतलब पानी की मात्रा को ध्यान देना है और थोड़ा छाया को
4: नहीं, यहाँ पर टावरा को पहली सर्दी पहली बरसात को ध्यान रखा जाए अगरवुड में भी, तो जो शुरुआत का दो साल है ध्यान रखा की बात है। अच्छा मीणा साहब, अगर भारतीय बाजार की बात करें, कोई काश्तकार लगा लियो, सफल भी हो गया पौधा लागा बचगा, अब खेती भी कर ली साहब, खेत में अत्ता बड़ा पेड़ लागे ला तो जाहिर है कि खेत जो है आप रुक जावे लो, तो भारतीय बाजार में कई स्थिति है, मांग है ही की?
5: बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा सुधे मैडम, एक ही बंपर मांग है और दिन प्रतिदिन की मांग बढ़ रही है। हिंदुस्तान का मायने एक जो मार्केट है वो मूल मार्केट आपने आसाम में
4: जी,
5: मुंबई में

0: दिल्ली में, केरल में और सबसे नजदीक अपने राजस्थान के पड़े कन्नौज, यूपी उत्तर प्रदेश के मायने, और कन्नौज ने तो सुनिया भी होला कि इत्र की नगरी भी दूसरा नाम भी कहो जाओ है। तो सबसे बड़ी मंडी जब की बट है। अब रही बात कीमत की
1: जी,
0: तो मैं एक कीमत को आप गणित लगाऊ जना देख लो तो मैनुअल आप हल्की सु हल्की लकड़ी को भी भाव माना तो बिल्कुल 50,000 से स्टार्ट हुआ कि केजी के भाव में।
1: अच्छा,
0: 50,000 रुपया किलो। और अगर ग्रेड बढ़िया बढ़ती चल जाओ जाए तो बेस्ट ऑफ बेस्ट 7-8 लाख रुपया केजी की लकड़ी को भाव रहे
1: जी।
0: और आपने बाजार के मायने जहां अब तो बात करें आप अगर वुड की जो मेन लकड़ी से बिकी
1: जी,
0: अब देखा होगा भाई जो पूरा पेड़ जे लकड़ी तो बूम बहुत ज्यादा इन तो किलो का भाव निकल रही है,
1: हाँ।
0: कुंटल का भाव निकल रही है,
1: हाँ।
0: तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक सफेद जिन्हें आप बरूद बोला,
1: हाँ हाँ।
0: जो सफेद बरूद च नहीं गो,
1: हाँ।
0: भी कि आपने बाजार के माने जिनमें अगरबत्ती बना रहा चाहे जिनमें आप और कॉस्मेटिक का सामान बना रहा चाहे जिन लेडीज डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक का सामान बना हुआ बाट है 1500 रुपए किलो से लेर 20,000 रुपए किलो को भाव भी लकड़ी को रहे
1: बुरादा।
0: अच्छा,
1: और इको जी इत्र बनावे ताई जो इको तेल वेल काढ़ा, हाँ। भी को कहीं रहे
0: इको तेल को जो प्रोसीजर जे को तेल निकले पाचे भी की कीमत बाजार में बहुत अपर चे।
1: अच्छा,
0: जब भी तेल सुई और अनगिनत में बता भी बन चुकू अतरा प्रोडक्ट बने भी तेल में सु भी तेल को भाव 50 लाख रुपया लीटर, 40 लाख रुपया लीटर, 80 लाख रुपया लीटर, अलग अलग ग्रेड को तेल से
1: गुणवत्ता के हिसाब जी। तो तेल कहीं निकले इको कोई आसानी से निकल जावे कोई और
0: भी तेल ने आपा को निकाल सका डायरेक्ट एक पूरा प्रोसीजर रहे एक एक कंपनी लागे भी हिसाब सारो काम आगे आगे चले। आप तो किसान ने तो बस अतरी बतानी चाहिए ज्यादा बता बहुत बेकार जाए, किसान ने मोटा मोटी अतरो समझ ले किसान कि जी हाँ आपने आज वो खेत के माने लिप्टिस लगा दीजिए, सफेदा लगा दीजिए, अल्डू लगा दीजिए और भी तो पेड़ लगा रही है
1: जी।
0: बस बिना एक ब्रांड कोई पेड़ समझ लगा ले और एक देख रेख कर ले कर पाचे फिर एक पेड़ की जो मेन प्रोसीजर है पेड़ को मतलब आजकल सब थाने भी ध्यान से किसान ने भी ध्यान से कि आप फंगस ने खेत से बगा बैठे फंगीसाइड
1: जी रहा
0: पर ये पेड़ की कहानी उल्टी है।
1: अच्छा,
0: इस पेड़ में उल्टो फंगस गिरनी पड़े अपन है।
1: अच्छा,
0: इन्हें इंजेक्ट करना पड़े जे।
1: अच्छा,
0: 4-5 साल पाछे आप इन्हें इंजेक्ट करना या कोई बढ़िया जानकार से इंजेक्ट कराऊंगा। इंजेक्ट करा पाछे आर्टिफिशियल वुडिंग चालू हुआ जे।
1: अच्छा,
0: नेचुरल वुडिंग में तो बहुत टाइम लगे जे इनमें, लेकिन अब किसान पूरा खर्चो कर रही है अतरो टाइम भी लगा रही है तो बिगने अतरो टाइम छे बने तो बिने बीतानी आप इन्हें फंगस गेर और फिर तैयार करा।
1: अच्छा,
0: इन्हें इंजेक्ट करना पड़े और जो आपने ग्राइंडर बचे भी ग्राइंडर सु एक मायने छेद करना पड़े, छेद कर पाचे बस दवाई इंजेक्ट बचे का मायने और दवाई इंजेक्ट हुई आप पाचे फिर 2-3 साल 4 साल का मायने कंप्लीट हो जाए चाहिए।
1: अच्छा,
0: इन पेड़ का मायने समथिंग 30% से 25% 30% का समथिंग तो ऑयल निकले हो जाए और बाकी एक 40% वुडिंग क्वालिटी बन जाए।
1: अच्छा, तो
0: मीना साहब तो पेड़ की मैनुअल कीमत है पकड़ लो किसान ने तो 1 लाख सू और 3 लाख रुपए तक नहीं मिल रही खड़ा पेड़ की। पी आगे को प्रोसीजर जो पेड़ लेर जा रही आपने सू भी की कहानी चाहिए आगे।
1: अच्छा,
0: बहुत लंबो प्रोसीजर से
1: इन्हें काश्तकार ने तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक तो मिल जाए
0: आराम मिलना इस कम तो संभव नहीं होने।
1: अच्छा, तो फिर अगर 103 लाख रुपया एक पेड़ का मिल रहा है 10-12 पेड़ भी एक तो बिकी लागत निकल जावे
0: आराम से निकल जावे।
1: महंगो सौदो तो कौन पड़े
0: कोई महंगो सौदो कौन पड़े बस थोड़ा दिन को कष्ट को टाइम चे थोड़ा दिन टाबर से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो आर्थिक स्थिति में तो पूरा योगदान दे देवे। अच्छा मीना साहब, अगर आप रख रखाव की मौसम की बात करा तो की तरीका की तैयारी करनी चाहिए जर खेत की तैयारी आपने कहीं विशेष तरीका से करनी
0: कोई विशेष तैयारी होने एक बोई नॉर्मल प्रोसीजर जो यहाँ पर 2x2 को खाटो करा था कोई पेड़ नहीं लगा बाटा,
1: हाँ।
0: जो कोई आम को लगा रहा चाहे या कोई अमरूद को लगा 2x2 को खाटो करा था बिखाटा की पूरी माटी बाहर निकाल और गले गोबर को खाद
1: जी
0: SSP MOP पोटाश जिंक जो भी आप फर्टिलाइजर गेरा गेर और नॉर्मल पेड़ लगाना चाहे अपने

0: पेड़ लगाता टाइम आप आना एक क्वालिटी के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: अच्छा,
0: एक क्वालिटी को ध्यान न दिया आप जन आप चोट खा सके।
1: अच्छा, तो क्वालिटी को ध्यान रखने के लिए कौन सी बातें जहाँ पर एक काश्तकार ने गौर करना चाहिए?
0: तो मैं इसकी क्वालिटी 21 वेरायटी आती है इसकी।
1: अच्छा,
0: 21 किस्म कह सकते हैं।
1: हाँ।
0: पर सबसे बढ़िया जो है की वेरायटी है बिको नाम से आकालेरिया मालाकेंस।
1: अच्छा,
0: आकालेरिया
1: मालाकेंस
0: जी, जो आप इन्हें ट्राइकोटर्मा से भी फंगस घेर सकाएं की।
1: अच्छा,
0: बाकी और की स्पेशल देख रहे छह को ने सही तरीका से इंजेक्ट करना चाहिए, जो 405 साल को प्रोसेस 405 साल पाचे सही तरीका से इंजेक्ट करना चाहिए। इंजेक्ट करे पाचे आपने टेंशन खत्म दे।
1: तो मोटो मोटो ना एक लंबे समय अवधि के पाछे जा रही हो आपने मुनाफो देवे छे
0: 810 साल
1: जी
0: लास्ट से की 810 साल 810 साल के मायने या कंप्लीट तैयार हो जाए।
1: अच्छा, तो अगर उड़ के ताई अगर कोई लगाबो चाह रहे तो कोई विशेष मौसम में लगाना चाहिए?
0: एक मैनुअल मौसम तो छे मैम जी, हाँ जून जुलाई मैनुअल मौसम चाहिए, बाकी फरवरी के मायने भी इन्हें आप लगा सको।
1: और लगाबो अगर कोई चाह रहे हो है तो पौधा कट्ठा सुन ले रहा लो?
0: एक पौधा प्राइवेट नर्सरी में आसानी से कौन मिले या तो एक स्पेशल जहाँ अपने आसाम का मायने नर्सिया से और प्राइवेट नर्सिया में से ऑर्डर पे भी आप मंगा सका था।
1: अच्छा, और बीमारियां या कीड़ा ही में अगर लगता है तो बताओ कोई विशेष तैयारी करनी है बचाव के ताई संरक्षण के ताई?
0: इनमें कोई बीमारी को ना हो, इन्हें उल्टो बीमार करना पड़े पेड़ ने।
1: अच्छा,
0: इन बीमारी को ना हो, नॉर्मल छोटा पेड़ से नहीं है तो बिना दीवार तानी बस बचाव आपने करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो दीवार को ध्यान रखना
1: चाहिए। अच्छा साहब, और चालता चालता काश्तकार कहीं क्या पूछाओला साहब?
0: चालता चालता मतलब साहब आई गुमला किसान भाइयों, दुनिया किसान और जहाँ कह जाए भाई जो भी है जो किसान ने लूट खावा और किसान दिमाग लगाओ ने हर कहीं की बात मान ले जाए पर खुद को दिमाग लगा रहे अगर जो दुनिया की बात ना मान रहा अपना दिमाग सु और अपना खेत में अगर जो 10 पेड़ भी लगा लियो तो किसान कोई की बात समझ पागे आगे भी जरूरत को नहीं।
1: तो परंपरागत खेती सु अलग नवाचारी खेती की तरफ आपने चालनो है और नवाचारा ने अपनानो है। राजवीर मीणा साहब आप कार्यक्रम में आया, घनी चोखी जानकारी नई जानकारी दिया अगरवुड की खेती के मायने माने इसके लिए आपको घने मानू धन्यवाद सा।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहा
2: है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। तो पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: अरे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: अनीता जी, श्री राजवीर मीणा जी और चंचल बहन को दोनों को खूब खूब धन्यवाद, इतना महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दिलाया और उम्मीद है काश्तकार भाई के लिए उपयोगी भी रहेगी ये जानकारी। और धन्यवाद स्वरूप गीत याने भी सुनावा, आपा भी सुना और कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोता भी सुनेला।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अनीता जी, साबन मल सबल को गायो ही गीत के साथ ही अब आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणी को टाइम पूरा होतो जा रहे छे, तो कास्ट करवाया दिराव आज्ञा आशा ने
1: और अनीता ने
0: चालान करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना,
4: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम।

0: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
1: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
0: वो कैसे?
1: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना? कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
0: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित
5: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने आशा धवाई का घना घना राम राम और अनीता जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
6: आशा जी आपने भी राम राम और सुनवा वाला श्रोताओं ने अनीता को घनो घनो राम राम सा।
5: रामा श्यामा के बाद देखो सा थोड़ी सी बात करेला आज खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आई। भाई आपना जी का काश्तकार भाई छे, खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करे छे और करनो भी चाहे जी, क्योंकि चाहे व्यवसाय का रूप में ले लो, चाहे आपका घर का आर्थिक स्थिति ने मजबूत करवा के लिए ले लो, या यूं सोच लो भाई हाँ खेती बाड़ी के साथ साथ छोटो सा पशुपालन अगर कर ले वना, छोटा स्तर पर भी कर ले वना, तो घर की जो काफी सारी जरूरत है वे घनी सारी पूरी हो जावे ली। भाई आपने दूध मिल जावे लो, गोबर सा आप छोटो मोटो आपने थोड़ा बहुत खाद भी मिल जावे लो, और शुद्धता की बात करा तो शुद्ध चाहे दूध ले लो, चाहे घी ले लो, चाहे खाद ले लो, मिलवो बहुत ही मुश्किल है। पर बात यह आवे छे भाई पशुपालन कर तो आप लेवा, पर अगर कोई भी चूक हो जावे तो बड़ो भारी आर्थिक नुकसान हो सके छे। अगर बड़ा स्तर पर करा जद भी और छोटा स्तर पर करा जद भी। अब सवाल मन में यही आवे छे भाई काई आर्थिक नुकसान हो सके छे, तो सबसे पहले तो देखो अनीता जी यही आर्थिक नुकसान छे भाई, महंगा महंगा पशु आप खरीद लेवा
6: जी,
5: भाई आपने पालनी छे, चाहे एक दो आप घर के लिए वहीं खरीद लो, वहीं घर का आपने दीना के लिए उपयोग में आपने लेनी चाहिए, या बड़ा स्तर पर आप कोई डेयरी फार्म खोल रहे हो। लेकिन अगर वहां का स्वास्थ्य की या वहां की पशुशाला में जो वहां की देखरेख में थोड़ी सी कमी रह जावे ना, तो सीधो सीधो प्रभाव पड़े चाहे स्वास्थ्य और उत्पादन पर।
6: बिल्कुल, और देखो सर स्वास्थ्य पर अगर असर ही हो तो पशु पर सीधो असर

0: लो तो इले आपने पशुओं के स्वास्थ्य की बेहतरी पर सबसे ज्यादा अनमोटो ध्यान देने चाहिए। सबसे पहले तो पशुशाला चे उन्हें साफ सफाई रखा, गीली माटी अगर छे तो उन्हें हटार सूखी डाला और चारों मेर मौसम के हिसाब से भी उनकी व्यवस्था रखा। जो पानी पीबा की वहां की चाहे वो उन्हें भी साफ सुथरी रखा, टाइम टू टाइम उन्हें बदलता रहा, साफ सफाई करता रहा, चारा को भी विशेष तौर पर ध्यान रखा, गीलो सूखो चारो उन्हें टाइम टू टाइम देता रहा। यह सभी छोटी छोटी बातों को अगर आप समय समय पर ध्यान रखता रहे वाला ना तो आपने उत्पादन तो बेहतर मिले ही लो, साथ ही साथ आपने जो पशु है उनको भी स्वास्थ्य चोखो बने रहे लो।
1: और अनीता जी देखो एक सबसे मोटी बात तो जो आप बताई दी भाई, स्वास्थ्य पर अगर ध्यान दियो जावे लो तो उत्पादन अपने आप बेहतर होगा। उनके लिए जरूरी है कि एक तो आप संतुलित जो पशु आहार है ना उसको पशुओं का स्वास्थ्य ने कितो जोड़ जुड़ेड़ो चे वो और कितो सीधो सीधो प्रभाव डाले चे या चीज भी आपने ध्यान रखनी चाहिए जी। परंपरागत तरीका से जो पशुपालन करता आया चा उसे थोड़ा सो आपने अब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ थोड़ा सो आपने जानकारी आप इंटरनेट से ले लेवा या अपना आस पास पत्र पत्रिकाओं में भी कई बार पशुओं की देखो बहुत सारी खबरें भी आवे चे प्रकाशित हो गए तो आप ध्यान रखो सा की। और आजकल आप देखो छो की वे पुराना जो मतलब क्योंकि देसी तरीका के साथ साथ ही देसी नस्ल के साथ साथ ही हाइब्रिड नस्ल का भी जो पशु है वे भी किसान बहन भाई आपने पाले छे तो वहां की पूरी जानकारी पहली आप राखो सा कि क्या आपका जलवायु के हिसाब से वो पशु ना आप रख सको छो, गायों को खानो दानो छे, पशु को जो वजन हुए छे उनके हिसाब से ही पशुआ की जो चारा दाना की व्यवस्था छे ना वहां होनी चाहिए जी। अगर उमा कमती बेहतरी आप रखा चाहे तो सीधो सीधो प्रभाव पड़े छे। इतना कौन है कि आप दो टाइम को चारो डाल दिया और दो बार पानी पिला दिया आपको काम हो गो नहीं सा, पूरी जानकारी रखो कुर्सी नस्ल की आप पशुपालन चाहे गाय हो भैंस हो बकरी हो वो आप रख रहे हो तो उनका चारा दाना की व्यवस्था कहीं है। और एक बात को और विशेष यह ध्यान रखो कि टीकाकरण की भी पूरी जानकारी आपने रखनी चाहिए, नहीं तो छोटी सी बात को ध्यान न रख बासू बड़ो सो यानी मोटो सो नुकसान हो सके।
0: बिल्कुल टीकाकरण अगर आप समय समय पर पशुओं को करवाता रहेगा तो उस भी किसान जो आपके पशुओं की बेहतरी बनाए रख सके, क्योंकि ऐसे टीकाकरण न करवावा का चक्कर में कुछ बीमारियां ऐसी जिससे कि पशु की ऐसे ही मौत भी है जाओ चे तो इको सीधो असर आपने किसान भाई पे जाओ चे सीधो नुकसान उन्हें भुगतना पड़े।
1: और सब कुछ बातों को आप ध्यान रख रहे हो फिर भी लाग रहे छे कि पशु उदास सोच है या ठीक से चारो दानो खा रहे कौन है तो आपने लापरवाही बिल्कुल कौन करनी चाहिए। नजदीक को जो पशु चिकित्सालय चे उन्हें जार जो भी डॉक्टर साहब चे वहां दिखानी चाहिए वहां आपका पशु की स्थिति बतानी चाहिए। अगर संभव चे तो पशु ने ले जाओ, अगर संभव कौन है तो डॉक्टर साहब से निवेदन कर रहा तो वे स्वयं आओ चे या अस्पताल से कोई ने भी भेजे चे तो कहवा को मतलब यही है कि लापरवाही बिल्कुल कौन बरतनी, थोड़ा सो भी चढ़ाव उतार देखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जार पशुओं का में और आपका पशु के स्वास्थ्य की पूरी जांच करानी चाहिए ताकि आप मोटी हानि और मोटा आर्थिक नुकसान से बच सको। जब नुकसान और फायदा की बात आवे तो तुम्हारे मन में यही हो मन भी लागे कि अगर कार्यक्रम में भी ज्यादा आप बात करा मनोरंजन को ध्यान कौन रखा तो थोड़ा सो कास्ट कर पाया कि नाराजी की नुकसान आपने उठानी पड़ सके चे।
0: तो भाई किसान भाई नाराज कौन करा, आप मनोरंजन आपा भी करा किसान भाई ने भी सुनावा गीत।

0: रविवार शाम 7 बजे सुनिए क्रम भारती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर।
1: श्रोताओं गीत के साथ ही अब अपना कार्यक्रम में आ गया छे डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी जो अपने बतावला मशरूम की उन्नत खेती के बारे में, तो आओसा सुनाया जानकारी।
2: बिल्कुल
0: ट्रिब्यून पधार चुके हैं सत्यनारायण चौधरी जी, आप चीफ ट्रेनर है IHITC दुर्गापुरा जयपुर के मायने, और आज आप आसू जानकारी लेवला मशरूम उत्पादन के बारे में। तो सबसे पहले तो सत्यनारायण जी थाको स्टूडियो में गुणो गुणो स्वागत है, राम राम सा।
3: राम राम सा।
0: और जिया का आपनो विषय है मशरूम उत्पादन, तो सबसे पहले तो थासू ओई जानू चाहूंगा कि मशरूम काई हुए है।
3: देखिए सा, मशरूम का मतलब है कि एक फपूंद, या इंग्लिश में बोलते हैं तो फंगस
0: जी।
3: जैसे अपने गांव के अंदर जो है अचार डालते हैं, उसके अंदर तेल भी डाला जाता है, तेल का स्तर नीचे चला जाता है और वो अचार में जो कैरियां डाली थी वो ऊपर रह जाती है, तो उनके ऊपर एक सफेद सफेद सी ग्रोथ आ जाती है, वृद्धि आ जाती है
0: जी।
3: वो फंगस ही है। ये फंगस क्या है कि खुद खाना नहीं बनाती, क्योंकि इसमें पत्तियां वगैरह होती नहीं है, केवल एक धागा ही रहता है, उस धागे में इसकी जड़ें रहती है, वो ही सब कुछ करती है इसका काम। तो ये फफूंद वैसे तो गंदा है, वैसे बीमारियां फैलाता है, लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने इसके अच्छे गुणों को पकड़ करके अपने को कहा है कि आप इस मशरूम को उगाओ और ये जो मशरूम आपको जो है जैसे डायबिटीज से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा, किसी के कब्जी रोग है तो उससे बचाएगा
0: जी।
3: तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मशरूम एक फंगस या फफूंद है।
0: तो मशरूम की खेती करवा की कहीं आवश्यकता है, क्यों ये किसान भाई ने मशरूम की खेती करनी चाहिए?
3: अभी देखिए जी, क्या है कि टाइम आ रहा है कि जमीन कम पड़ती जा रही है, प्रति ही व्यक्ति जो है जमीन जोत का आकार जो कम होता जा रहा है, पानी की भी कमी होती जा रही है, और इस वातावरण का पता नहीं कब क्या हो जाए
0: जी।
3: फिर क्या है कि आजकल के जो युवा है वो खेती नहीं करना चाहते, उनको धूप लगती है, तो उनको हम जो उनकी खेती की पूर्ति करना चाहें, धूप से बचाना चाहें, तो ये इंडोर कल्टीवेशन में आता है। तो हम अपने घर के अंदर जो कमरे हैं उनके अंदर खेती कर सकते हैं, या खेत में जो है झोपड़ी सरकंडे की बनवा करके उसके अंदर खेती कर लें
0: जी।
3: तो वो बच्चे उसमें खेती कर लेंगे, अपने जो है आय का जरिया इसको बना लेंगे, और जो है इसमें जो अच्छे गुण है उनको अपने लोगों तक पहुंचा कर कुपोषण से भी उनको बचाएंगे। तो इन तीनों चीजों की वजह से पानी कम पड़ रहा है, जमीन कम होती जा रही है, वातावरण का कोई पता नहीं, तो प्रतिकूल दशाओं से बचते हुए थोड़ी सी जगह में थोड़े से पानी के अंदर, पानी चाहे खराब क्वालिटी का भी हो, हम मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं
0: जी। और आप बात करें अपने राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के मायने मशरूम की खेती कोई किसान भाई कर रहे हैं के बार?
3: हाँ जी, अलग अलग काश्तकार है। जैसे अपने सिक्कर की बात करें तो मोटाराम जी शर्मा करके नानी गांव से हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो है एक चौधरी साहब है अपने भंकरोटा साइड में, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे कई दूसरे और लोग भी है, उदयपुर वाला डिवीजन है उसमें भी कर रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग काश्तकार है। कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जो अपने जंगल के अंदर नेचुरली उग जाती है, जो खाने योग्य है उसको इकट्ठा करके बेच करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अपने राजस्थान के अंदर तीन प्रकार का मशरूम अपन जो है खेती में लेते हैं, उसमें पहला जैसे साल भर के लिए करना चाहते हैं तो वो ढींगरी मशरूम है, इंग्लिश में ओएस्टर बोला जाता है
0: जी।
3: और इनके भी वैज्ञानिक नाम होते हैं, तो प्लोरोटस सेटिनोप्लेट स्पीसी जिसको बोलते हैं वो इसका वैज्ञानिक नाम है, ये ले सकते हैं, पूरी साल भर कर सकते हैं। दूसरा मशरूम अपन जो है सर्दियों के अंदर लेना चाहते हैं तो उसमें बटन मशरूम है, और बटन मशरूम का नाम जैसे वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस बाइस्पोरस है। और ऐसे ही हम दोनों का टेस्ट गर्मी के टाइम में लेना चाहते हैं तो तीसरा मशरूम है जिसको दूध छाता बोला जाता है, सफेद कलर का ही होता है तीनों ही मशरूम। दूध छाता को हम साइंटिफिक नाम लेते हैं तो कैलोसाइबा इंडिका के नाम से जाना जाता है। तीनों को अलग अलग टाइम पर उगा करके अच्छा सा मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं, कुपोषण से भी बच सकते हैं।
0: कोई भी किसान भाई जब मशरूम की खेती करना चाहे तो बिन उगावा की कई विधि हुए, कौन कौन सी बातों को बिन ध्यान रखना चाहिए?
3: देखिए, यदि किसान कोई भी शुरुआत करता है मशरूम से, तो सबसे पहले उसको ढींगरी मशरूम पर जाना चाहिए
0: जी।
3: क्योंकि इस ढींगरी मशरूम को, जिसको इंग्लिश में ओएस्टर बोला जाता है, हम प्रायोगिक प्रैक्टिकल मशरूम बोलते हैं, और इसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक का एक ड्रम लेते हैं जिसमें 200 लीटर पानी आ जाए इस कैपेसिटी वाला,

0: और फिर जो है 20 किलो गेहूं का भूसा लेते हैं। हमने एक ड्रम लिया, उसमें 200 लीटर पानी आने वाले में 100 लीटर ही केवल पानी भरा, आधा खाली रखा आधा भर दिया, उसमें 20 किलो गेहूं का भूसा हमने डाला और फिर 3 दवाइयां ली। इस भूसे के अंदर हो सकता कोई बीमारी हो तो उससे बचने के लिए बाविस्टीन ले लिया, इसमें कोई कीड़ा हो उससे बचने के लिए इमिडाक्लोरपिड ले लिया, और इसको साफ सुथरा करना चाहते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड नाम की दवा जिसको फॉर्मलिन शॉर्ट में बोलते हैं वो हम कुछ निश्चित मात्रा में लेते हैं। जैसे 100 लीटर पानी के हिसाब से एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपन करें तो 5 ग्राम बाविस्टीन होगा, 25 ml अपना इमिडाक्लोरपिड होगा, 250 ml अपना फॉर्मल्डिहाइड होगा। वो एक बाल्टी में लेके पानी में घोल करके जो हमने पानी ड्रम में भर दिया था, 20 किलो भूसा भर दिया था उस ड्रम के ऊपर घुमाते हुए शाम के टाइम में ये काम करते हैं। दूसरे दिन जो है ये इस ड्रम को उस जगह पर जहां पर ये रखा हुआ था वहां पर एक ढलान वाली जगह बनाकर इसमें से भूसे को बाहर निकालते हैं, 1 घंटे में पानी निथर जाता है, फिर इस गीले भूसे को 6-6 किलो की ढेरियां बनाकर के बीज डाल करके थैलियां भर देते हैं, मशरूम उत्पादन करते हैं।
1: जी हाँ, कहते बात करिए कि कोई किसान भाई मशरूम उत्पादन लेना चाहे तो सबसे पहले भी ढेंगरी मशरूम लेनी चाहिए।
0: जी, ढेंगरी मशरूम से शुरुआत कर देना।
1: तो ढेंगरी मशरूम कोई किसान भाई उत्पादन लेवे तो बिन कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, बी के लिए तापमान क्या को होना चाहिए, हाँ, या और भी कोई बात हुआ है किसान भाई बताओ।
0: देखो, ढेंगरी मशरूम या कोई दूसरा मशरूम हो उसको शुरुआत करते हैं तो ध्यान ये रखे कि कहीं पर भी कंटामिनेशन नहीं आए, इसके लिए वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे।
1: जी,
0: जिस ड्रम में भर रहा है पानी उसके अंदर जो है साफ सुथरा हो, वो उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं हो, कोई गंदगी नहीं हो। जो भूसा ले रहा है उसको वो उपचारित करे, जिस टब से वो भूसे को तोल के डाल रहा है उस टब को भी जो है स्पीड से साफ करे, छोटा टब जिसमें वो बीज लेना चाहता है उसको भी जो है स्पीड से साफ करे, अपने हाथों को स्पीड से साफ करे। जिस प्लास्टिक की सीट के ऊपर 6-6 किलो की ढेरियां बनाना चाह रहा है उस प्लास्टिक की सीट को पहले जो है स्पीड के रुई का फोया बनाकर उससे साफ करे। ऐसे सारी चीजों का ध्यान रखते हुए वो काम करे तो उसके कंटामिनेशन के चांसेज ही नहीं रहेंगे। फिर जब वो 20 दिन का टाइम हो जाता है बैग के अंदर मशरूम आ जाता है और जब वो बैग को खोलता है तब वहां पर ध्यान ये रखे कि बैग को खोलते टाइम भी प्लास्टिक का सीट बिछा करके उसको स्पीड के भोए से साफ करके हाथ साफ करके फिर बैग को खोले और बैग को खोलने के बाद में अब रैक पर रख दे, पानी पिलाता रहे। अब एक दिक्कत हो सकती है कि ये भूसा जो था चारों तरफ से उस फंगस के माइसीलिया से उस जाल से पकड़ में आ गया था तो वहां पर चिकनाई आ जाती है तो पानी ठहरता नहीं है। किसानों का क्वेश्चन आता है, सर हमारे बैग में तो जो है एक में मशरूम नहीं आ रहा और दूसरों में जो मशरूम आ रहा है। तो किसान उठा करके देखे कि जो बैग हल्का है तो इसका मतलब वह अंदर पानी नहीं गया, तो एक टब लेवे और अपने बैग को उस टब में रख करके पानी को अंदर जाने दे, जैसे ही पानी जाएगा दूसरे नहीं तीसरे दिन तो बहुत शानदार मशरूम निकलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए काम करे, कहीं पर कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी।
1: और बात आप अगर सिंचाई के विषय में तो सिंचाई को कतो ध्यान रखना चाहिए, अगर ढिंगरी मशरूम कोई किसान भाई ले रखी है तो कद कद भी सिंचाई करनी चाहिए या सिंचाई के संदर्भ में और कई बातें जगह को किसान भाई ने ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ देखिए साहब, ऐसा है कि जो भी मशरूम प्रोडक्शन वो लेगा किसी भी प्रकार का, चाहे बटन ढींगरी दूध छता कोई भी लो, हमेशा वो सबसे पहले हार्वेस्टिंग करे। हार्वेस्टिंग के बाद में उस कमरे में झोंपड़ी में जो भी उसने बना रखा है जहां प्रोडक्शन ले रहा है उत्पादन कक्ष है उसकी साफ सफाई करे सही तरीके से।
1: जी,
0: और उसके बाद में सिंचाई करे। सिंचाई में यही ध्यान रखे कि फूट स्प्रे पंप उसके पास में होना चाहिए। कभी कभार किसान क्या करते हैं समझ नहीं पाते हैं और पाइप से पानी पिलाने लग जाते हैं, उसकी धार इतनी तेज प्रेशर से आती है कि भूसा बीज के साथ में ही उखड़ जाता है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए नोजल को ऊपर ही ऊपर वाले बैगों से स्टार्ट करे और घुमाते हुए ऊपर नीचे नोजल को घुमाते हुए वो नीचे तक लेकर के आए, क्योंकि इसमें सेल्फ में कल्टीवेशन होता है। यानी पहला रेक होगा तो उसमें नीचे एक सेल्फ होगा, वहां बैगों की लाइन होगी, फिर ऊपर बैगों की लाइन होगी, फिर बैगों की लाइन, फिर ऐसे 4 परत के अंदर जो है बैग अलग अलग जगह रखे जाएंगे। तो ऊपर से वो करता हुआ आए नीचे आए और लास्ट में पानी की बाल्टी भर के जो उत्पादन कक्ष है उसमें छोड़ देवे, तो इससे बहुत शानदार तो टेम्परेचर बनेगा, ह्यूमिडिटी बनेगी और अच्छा सा उत्पादन आएगा।
1: जी, और कत्ता टाइम के बाद मैंने मशरूम की खेती है जी किसान ने मिल जावे है।
0: जैसे ढींगरी मशरूम की अपन बात करें, दूध छाता की बात करें, तो किसान क्या है कि भूसे को उपचारित करता है, उपचारित करके फिर थैलियां भरता, तो थैलियां लगभग 20 दिन पर खोल दी जाती है, तो 20-22 दिन से जो है वहां से प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो जाता है।
1: जी,
0: वहां से लेकर के कंटिन्यू फिर वो 2-2.5 महीने तक लगातार चलेगा। और इसी प्रकार से यदि बटन मशरूम उगा रहा है

0: तो कंपोस्ट बनेगा, कंपोस्ट बनने में 27 दिन का टाइम लग जाएगा, लगभग एक महीना यहां निकल गया, फिर वो बिजाई करेगा तो लगभग 15-1 दिन के अंदर उसके वो जो है मशरूम की शुरुआत होगी, और वह केसिंग लेयर करेगा वो 4-5 दिन में, तब जाकर के मशरूम आना स्टार्ट होगा। तो ऐसे जो है तीनों मशरूम का थोड़ा सा अलग अलग आने का तरीका रहता है, लेकिन लगभग हम मान सकते हैं कि एक महीना से लेकर के लगभग 1.5 महीना तक जो मशरूम आना शुरू हो जाता है तीनों के अंदर ही।
1: जी रखा किसान भाई, मशरूम उगाणो चाहे खेती लेनो चाहे मशरूम की, तो सांसु बड़ी मांग समस्या आएगा कि बीज खटो खरीदे, तो बीज के संदर्भ में किसान भाई जानना चाहूंगा कि वन बढ़िया बीज खटे मिल सके है और खटू के खरीदर यार बढ़िया मशरूम की खेती ले सके है।
0: हाँ जी, देखिए बीज मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं, गेहूं या ज्वार के दानों के ऊपर कल्चर डाल करके बीज तैयार किया जाता है, और इसका ये स्पान जो बीज है वो होता है, किसान अपने यदि उदयपुर डिवीजन से है तो राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज है उसके अंदर अपना एक मशरूम यूनिट है वहां से ले सकते हैं, अपने सीकर झुंझुनू जयपुर टोंक अलवर ये इधर वाले जो लोग हैं तो अपने जयपुर दुर्गापुरा से बीज को खरीद सकते हैं, यदि और किसी प्राइवेट से लेना चाहते हैं तो उनके भी नंबर अपने पास में रहते हैं, जो भी कोई किसान इस टाइप की बात पूछता है तो आप या मेरे को कॉल कर सकता है, अपने इंस्टीट्यूट में फोन कर सकता है, उनको नंबर प्रोवाइड अपन करवा देंगे, सुबह किलो बीज उनको मिल जाएगा।
1: और कोई किसान भाई घर बीज तैयार करना चाहे तो वो भी संभव है सर?
0: हाँ ये भी संभव है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसमें कुछ औजारों की उपकरणों की जरूरत पड़ती है, उपकरण वर्ड बोलते हैं अपन, इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे ऑटोक्लेव हुआ, लेमिनार एयर फ्लो हुआ, बीओडी हुआ जिसको अपन फ्रीज बोल सकते हैं बीओडी को, इन चीजों की जरूरत पड़ती है, थोड़े ये महंगे पड़ते हैं तो किसान नहीं खरीदता, लेकिन मान लीजिए किसान को अवेलेबल हो जाते हैं तो कुछ नहीं, गेहूं या ज्वार के दाने हैं उनको आधा पकाया जाता है, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा मिलाया जाता है 2% के हिसाब से, फिर थैलियां या बोतलें भर दी जाती है, फिर जो कल्चर होता है उसको उसमें इनोकुलेट या निवेशित किया जाता है, फिर जो है लगभग 12-15 दिन के अंदर जो है वो बीज बन जाता है और उसको बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि 1 किलो बीज है तो वो 4 किलो बीज के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी 1 किलो बीज का मतलब 1 किलो गेहूं है, 4 किलो गेहूं में कन्वर्ट किया जा सकता है बीज बना करके, तो ये भी एक मुनाफे का सौदा है, बीज भी लोग बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं।
1: जी तो किसान भाई उर्वेणा एहा सत्यनारायण चौधरी जी चीफ ट्रेनर IHITC दुर्गापुरा जयपुर से स्टूडियो में पधारिया और आज अपन जानकारी दी मशरूम उत्पादन के विषय में थे स्टूडियो में पधारिया और मगा किसान भाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, इसके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद।
2: तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: प्रभु भाई आपको भी घना घना धन्यवाद, इतनी चोखी जानकारी आप विशेषज्ञ से दिलवाया जी। और देखो सा अब धन्यवाद स्वरूप सुन लेवा एक लोगी
5: आओ सा सगड़ा ही मिलर सुना।

0: अनीता जी ममता सिंह का गाया ये गीत के साथ ही अब स्टूडियो की घड़ी कह रही छे कि आज को जी को कार्यक्रम छे खेती बाड़ी को टाइम पूरा होते जा रहे छे तो श्रोतावा दे रहा आज्ञा आशा ने
1: और अनीता ने
0: चालार करा राम राम सा।

के साथ मैं सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अगर तुम न होते। आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, किशोर कुमार का गाया हुआ। श्रोताओं, अगला गीत अमर प्रेम से सुनी, आवाज एक बार फिर से किशोर कुमार की।

लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत आपने सुना मौसम फिल्म से। श्रोताओं, फिल्म संगीत का यह प्रोग्राम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। आइए अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, आवाज मोहम्मद रफी की।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत आनंद आश्रम फिल्म से। और अब प्रोग्राम के आखिर में सुनिए नागिन फिल्म का ये गीत जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 8:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन, इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उसके बाद समाचार संध्या न्यूज 8:09 उर्दू में समाचार, और फिर 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने। श्रोताओं, आप सुन रहे थे नागिन फिल्म का ये गीत। आवाजें थी महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की थी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत भी श्रोता और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई किया। कुश्ती में अमन सहरावत ने स्वर्ण, अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक देश के नाम किए। गोल्फ में प्रणवी ने भारत को दिलाया ऐतिहासिक स्वर्ण, महिला टीम ने जीता रजत पदक। तीरंदाजी में कुमकुम मोहत ने रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नीरज ने व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार जीता स्वर्ण पदक, फाइनल में पाकिस्तान को हराया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में जारी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां भारतीय एथलीटों ने अलग अलग खेल में अच्छा प्रदर्शन कर देश को आगे बढ़ाया है और देश का मान भी बढ़ाया है। एशियाई खेलों में आज भारत ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का। सबसे पहले आज बात की जाएगी हॉकी पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में मलेशिया के खिलाफ 5-1 से जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक का टिकट भी अपने नाम कर लिया है। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आ गया है प्रभु। पहली बार हुआ है कि मेन और वुमेन दोनों हॉकी टीम्स ने एक साथ गोल्ड मेडल जीते हों। लॉस एंजलिस वालों, स्वागत की

0: फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा। 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि 14वें मिनट में मलेशिया के शैली सिल्वरियस ने फील्ड गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। 23वें मिनट में जुगराज सिंह ने बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर के जरिए भारत को 2-1 से आगे कर दिया। हाफ टाइम के बाद 42वें मिनट में हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक को शानदार तरीके से गोल में तब्दील किया। इसके बाद 54वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने एक फील्ड गोल दागा और 57वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने अपना दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर से करते हुए मलेशिया की उम्मीदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार अपना स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया है। इससे पहले हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2022 का गोल्ड भी अपने नाम किया था। यह एशियन गेम्स के अलग अलग संस्करणों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कुल 5वां स्वर्ण पदक है। भारत ने 1966, 1998, 2014, 2022 और 2026 में खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स कैन के लिए अक्षित वैद्यान।
1: पांच एक से ये जीत दर्शाती है कि भारत ने सिर्फ ये मुकाबला जीता नहीं है बल्कि डोमिनेट करके भी खेला है।

0: अगर हॉकी की बात की जाए तो महिला टीम ने भी भारत को स्वर्ण पदक इससे पहले दिलाया था और आज पुरुष हॉकी टीम ने भी देश के नाम एक और पदक किया। हॉकी से चलते हैं कुश्ती की ओर, जहां भारतीय रेसलर ने अलग अलग स्पर्धाओं में देश के नाम कई पदक किए हैं। एशियन गेम्स में भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने स्वर्ण, अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक देश के नाम किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: भारत का एक गोल्ड मेडल कुश्ती में आ चुका है।

0: अमन ने रोमांचक फाइनल मैच में वर्ल्ड चैंपियन चोंगसोंग को 11-7 से हराया। अमन का एशियन गेम्स में ये लगातार दूसरा पदक है। पिछले एशियन गेम्स में अमन ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इस प्रतियोगिता में ये भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले सुजीत कलकल ने फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में अमन को साउथ कोरियाई पहलवान चोंगसोंग से कड़ी टक्कर मिली। अमन ने इंजरी ब्रेक के बाद अपनी बढ़त को 6-1 कर लिया। मैच के आखिरी मिनट में अमन ने एक बार फिर मुकाबले का रुख पलटा और शानदार दांव लगाते हुए चोंगसोंग के खिलाफ अहम बढ़त बना ली। अमन ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को अपने दांव से पहले पूरी तरह लॉक किया और फिर उन्हें पलटने के साथ ही 4 पॉइंट्स हासिल किए। अमन का ये दांव निर्णायक साबित हुआ और वो फाइनल मुकाबले को 11-7 से अपने नाम करने में सफल रहे। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम रेसलिंग इवेंट में रजत पदक जीता। उन्हें जापान की कियोका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में अंतिम पंघाल की धीमी शुरुआत का फायदा उठाकर कियोका ने शुरुआती बढ़त बना ली। पहले पीरियड के खत्म होने तक कियोका ने अपनी बढ़त 2-0 कर ली। अंतिम पंघाल ने मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने कियोका को पैर से नीचे गिराकर 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। हालांकि जापानी रेसलर ने तेजी से भारतीय खिलाड़ी को मैच से बाहर धकेल दिया। अंतिम ने फैसले को चुनौती दी लेकिन उनका रिव्यू सफल नहीं रहा। कियोका ने अंतिम के पैर पर हमला करके अपनी बढ़त 9-1 कर ली और स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर लिया। उधर पुरुषों की 86 किलोग्राम कैटेगरी में दीपक ने कांस्य पदक जीता। एक कड़े और कम स्कोर वाले मुकाबले में संयमित प्रदर्शन करते हुए अपने मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा। दीपक ने शुरुआती दौर में 2 पॉइंट्स बनाए और दूसरे दौर में 1 पॉइंट गंवाने के बावजूद अच्छा बचाव करते हुए जीत हासिल की और देश को एक और पदक दिलाया। विशाल शर्मा स्पोर्ट्स के।
1: तो कुश्ती में भारत ने तीनों ही पदक देश के नाम किए। अमन ने जहां स्वर्ण जीता, अंतिम ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर भारत का झंडा शान से लहराया है। और अब चलते हैं गोल्फ की ओर। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। 4 दिन तक चले इवेंट में प्रणवी व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सुनते हैं प्रणवी के प्रदर्शन पर ये खास रिपोर्ट।
2: There's the touch and it goes. She gets it. Pranavi Sharath-Urs, even par on the day, 15 under. She finishes overall India's first gold medal winner in golf.
3: Pranavi ne event ke aakhri din even power 70 ka score kiya aur kul 15 under 265 ke score ke saath swarn padak jeeta. Pranavi ne mahila team ko 14 under 546 ke score ke saath rajat padak dilane mein bhi aham bhumika nibhai. Team ki Yin Ruoning aur Singapore ki Shannon Tan ne sanyukt roop se रजत पदक जीता। प्रणवी आखिरी दिन 10 से 3 स्ट्रोक की बढ़त के साथ उतरी थी। प्रणवी ने 6th, 10th और 13th होल पर 3 बर्डी के साथ वापसी की और बढ़त बना ली। आखिर में 18th होल पर इवन पावर स्कोर करके उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 अंडर 246 का स्कोर बनाया। इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने एशियन गेम्स के महिला टीम इवेंट में रजत पदक जीता। खास बात ये है कि महिला टीम स्पर्धा में एशियन गेम्स इतिहास का ये भारत का पहला पदक है। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैंप।
1: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। बेहतरीन प्रदर्शन किया है प्रणवी ने और आज एक और पदक देश को दिलाया। बाकी खिलाड़ियों ने कैसा किया गोल्फ में प्रदर्शन?
4: प्रदर्शन की बात करें अगर प्रशांत, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है प्रणवी उर्स ने और टीम इवेंट में भी भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो अदिति अशोक 14वें स्थान पर रही। उन्होंने आखिरी दिन 3 अंडर 67 का स्कोर बनाया और टूर्नामेंट का समापन 2 ओवर 282 के कुल स्कोर के साथ किया। वहीं दीक्षा डागर संयुक्त 23वें स्थान पर रही। उन्होंने 4th दिन 7 ओवर पार का स्कोर बनाया और उनका कुल स्कोर 12

0: निर्भर रहा।
1: जी, इन खिलाड़ियों से पदक नहीं आ सका, लेकिन प्रणवी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है गोल्फ में। और अब बात करते तीरंदाजी पर। कुमकुम मोहत ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कुमकुम ने शूट ऑफ में येजिन ओह को हराकर एशियन खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उधर नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में धीरज मोहम्मद देवरा को हराकर कांस्य पदक जीता। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: सत्रह वर्षीय कुमकुम ने फाइनल में 5-5 से बराबरी के बाद 6-5 से जीत हासिल की। इस जीत से भारत को लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम के लिए इंडिविजुअल कोटा भी मिला, जिसमें कुमकुम और ओह दोनों ने अपने अपने देशों के लिए एक एक कोटा हासिल किया। फाइनल में कुमकुम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। ओह ने पहला सेट 29-27 से जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली, जबकि दूसरा सेट 29-29 पर खत्म हुआ, जिससे साउथ कोरियन खिलाड़ी 3-1 से आगे हो गई। भारतीय खिलाड़ी ने तीसरे सेट में जोरदार वापसी करते हुए लगातार 3 परफेक्ट शॉट्स के साथ 30 अंक हासिल किए और मैच 3-3 से बराबर कर दिया। ओह ने चौथा सेट अपने नाम किया। हालांकि कुमकुम ने पांचवें सेट में धैर्य रखते हुए एक के बाद एक परफेक्ट शॉट्स लगाकर 30 अंक बना लिए, जिससे फाइनल शूटआउट में चला गया। इसके बाद कुमकुम ने डिसाइडर में अपना धैर्य बनाए रखा और परफेक्ट शॉट लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उधर नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक जीता। 5 सेट तक चले मुकाबले में नीरज ने धीरज को 6-4 से हराया। ब्रॉन्ज मेडल मैच में नीरज ने पहला सेट 29-26 के स्कोर से जीता, जबकि दूसरे सेट में 27-28 से और तीसरे सेट में 28-29 से हार का सामना करना पड़ा। धीरज इस समय 4-2 से आगे थे और उन्हें सिर्फ एक सेट जीतने की जरूरत थी, लेकिन नीरज ने चौथा सेट शानदार तरीके से खेला और 3 बार 10 का स्कोर करके स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया। धीरज ने आखिरी सेट की शुरुआत 8 के स्कोर के साथ की, जबकि नीरज ने 10 का स्कोर किया। धीरज ने सुधार करते हुए 2 बार 10 का स्कोर किया और आखिरी सेट में कुल 28 पॉइंट बनाए। नीरज को ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए 19 अंकों की जरूरत थी। उन्होंने अपने आखिरी 2 तीरों पर 9 और 10 का स्कोर करके कांस्य पदक अपने नाम किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: बेहतरीन प्रदर्शन रहा कुमकुम का हो या नीरज का, आइए सुनते हैं कुमकुम मोहत ने इस शानदार प्रदर्शन पर क्या कुछ कहा।
3: बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेडल जीता है मैंने आज, और जो सोचा था वही हुआ है। ये सपना था एक, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट सी द रिजल्ट, जस्ट डू योर हार्ड वर्क।
1: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम 192 रन ही बना सकी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: अंकों गए हैं और ये मैच भारत ने जीत लिया, और इसी के साथ यहां आ गया एक और गोल्ड मेडल। भारत ने ये मुकाबला जीत के एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। यहाँ
5: भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की शुरुआत खास नहीं रही, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं संजू सैमसंग सिर्फ 2 रन ही बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर 21 और ईशान किशन 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि अभिषेक ने एक छोर पर टिककर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 61 रन की शानदार पारी खेली। वहीं उपकप्तान तिलक वर्मा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए नाबाद 51 रन बनाए। तिलक ने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 62 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारतीय टीम को 200 रनों का आंकड़ा पार कराया। 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। साहिबजादा 10 और उस्मान खान सिर्फ 3 रन बना सके। 39 रन के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही पाकिस्तानी पारी को हसन नवाज और शैम अयूब ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। हसन नवाज ने 96 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: आइए सुनते हैं ईशान किशन ने पदक जीतने के बाद क्या कहा।
6: When we got here, Olympics was not there for us. We were not supposed to play in the Olympics, but now that we know that we will get an opportunity to play there, I mean, we are very excited. Any of us would want to have a medal from Olympics. Very nice.

0: give our best. I think all the batters, especially Abhi and Tilak, Dubey, chipping in, Ayer Bhai doing that partnership, everything, like everyone was doing their best, and I think the result got in our side in the end. It's a big thing, Asian Games, you are the best side in Asia, so it's a big thing for us.
1: उधर न्यू चंडीगढ़ में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 25वें ओवर में दो विकेट पर 173 रन बना लिए हैं। इससे पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल ने नाबाद 129 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन की पारी खेली। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.eir@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोज और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
3: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY.
4: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
3: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
2: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
5: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
2: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने

0: के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
3: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल है। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
4: यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
3: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद

0: भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
1: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
0: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मित के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मित की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मित हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
2: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
4: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंगाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहन और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

अभी आपने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को फिल्म बदलते रिश्ते में सुना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था बोल अनजान के।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, अब दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है।

निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता फिल्मी दुनिया और दर्शकों के बीच जाने जाते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने वाले के रूप में।

जेपी दत्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसीलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, एलओसी और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10 बजे ही आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स।
1: खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके मैच की मीमांसा निघा से।
2: इंडिया कम्प्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट इंडिया पोस्टेड एन इम्पोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप हिज हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's chase got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
1: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं आक्रमण से भरपूर। टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था वो। पहले क्वार्टर की शुरुआत सही तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी जैक फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल लिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी

0: राहत की सांस मिली, क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही च्वाइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की, लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो चार पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई, गेंद के साथ बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया, लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपनी लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: प्रणवी अर्श क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति और दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी अर्श गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी अर्श हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Zingyi in the semi-finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the Games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। डाउन पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगा

0: कर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानो को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोऊ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदलकर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें हांगझोऊ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजीनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6ठे स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की, उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थीं। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इंडियन वुमेन डिफीटेड सिंगापुर फॉर द 5th to 8th प्लेसिंग 22-5। इंडिया वन द फर्स्ट हाफ कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली बाय डिफीटिंग सिंगापुर 17-5 एंड ऑल्सो ओन्ड द सेकंड हाफ बाय कम्प्लीटली डिमोलिशिंग सिंगापुर 5-0 thereby winning the match in straight games 2-0. द इंडियन वुमेन्स मैच इन रग्बी सेवन्स फॉर द 5th-6th प्लेसिंग लेटर हैपेंड विद कजाकिस्तान इन विच कजाकिस्तान easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0. And finally, the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो, ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनेला 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड India's campaign in the sport ended with this loss.
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी, जानते हैं मेघा से।
4: इन सेलिंग 16-year-old माही वर्मा फिनिश 6 ओवरऑल इन द गर्ल्स डिंगी इवेंट एज अ कॉम्पिटिशन कंक्लूडेड टुडे। माही कंप्लीटेड द 12 रेस ओपनिंग सीरीज विद 75 टोटल पॉइंट्स एंड 57 नेट पॉइंट्स। शी फिनिश्ड 8th इन ओपनिंग सीरीज रेस 12।

0: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
1: Courtesy of a late surge that saw them add 9 medals including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table followed by host Japan and South Korea.
0: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना निगाह से।
1: Beyond the medals and the final standings, one of the biggest positives for India at these Asian Games has been the emergence of a new generation. Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than one in every four Indian debutant has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Thariyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kg category. Jemina's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10 meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75 kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years. And the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
0: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी दो स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली शूटर नीरु ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हम कर रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में। इंदिवर के बोल है बप्पी लहरे का संगीत। फिल्म है मुद्दत।

संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे मुक्ति फिल्म से। मुकेश की आवाज़ ही, अरुण बख्शी की बोल, संगीत राहुल देव बर्मन का।

नास्तिक फिल्म से अभी आपने गीत सुना था, आशा भोसले की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अगला गीत आप सुनेंगे कन्यादान फिल्म से, रफी साहब की आवाज में नीरज के बोल है, संगीत शंकर जय किशन का।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे यादों की बारात फिल्म से, आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, संगीत RD बर्मन का।

0: गाते गुनगुनाते हुए फिल्म संगीत का सफर यहीं थमता है। अंतिम गीत आपने सुना था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक

0: सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर वन ऑफ FY20।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारे आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन 5:53 पर फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभरात्रि।